ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबू चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून 2026। सुबह के 5:53 और 45 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आइए आप जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आपसे कुछ ही पलों में 6 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।

6:05 पर समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात का, लेकर हाजिर रहेंगे गौतम कौर। 7:00 हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। 7:05 पर मुनीश चौधरी लेकर आपके साथ रहेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 8:00 का समय आपके साथ होंगे गौतम कौर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 9:00 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल की तराने गाने नए पुराने मुनीश चौधरी के साथ। 10:00 हिंदी में समाचार।

सुबह 10:05 पर प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक के साथ आपके साथ रहेंगी ज्योति। 11 बजे का समय हिंदी समाचार का, 11:05 पर प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके साथ रहेंगी प्रियंका। 12 बजे का समय रहेगा हिंदी समाचार का, 12:05 पर वेस्टर्न म्यूजिक ज्योति के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउलाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना

0: को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमरीका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। एक सुकून की तलाश में जाने कितनी बेचैनियां पाल ली, और लोग कहते हैं हम बड़े हो गए, हमने जिंदगी संभाल ली। मैं तो कहूंगा कि दिलों के संसार में हम सच्चे ही अच्छे हैं, और हमें बच्चा ही रहने दो, जिंदगी हम बच्चे ही अच्छे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है। सुप्रभात, सुन रहे हैं आप।

कहते हैं कि गुजरता वक्त है और खर्च हम हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि खर्चा है तभी तो चर्चा है। और अगर आज आप खुद को खर्च करेंगे तभी तो लोग आपको सर्च करेंगे, है ना। जो लोग रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही तो सपनों की चिंगारियों को हवा देते हैं। सुप्रभात 102.6 एफएम सुन रहे हैं आप आरजे गौतम के साथ। एक कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। कहते हैं पंजाबी में कि तुनका तुनका करके गुड्डी चढ़ दी जाती है, मतलब प्रयास करते रहिए आप, सफलता से पहले ढेर सारी असफलता आपका इंतजार करेगी। एक मजदूर कई घंटों तक पत्थर पर हथौड़ा मारता रहता था, लेकिन पत्थर फिर भी नहीं टूटा। लेकिन बार बार बार बार प्रयास करने पर जब वो लगातार उसने हार नहीं मानी ना, तो

भागों में बट गए। वास्तव में सिर्फ वो आखिरी चोट उसके हिसाब से रही होगी, बल्कि मैं आपको बता दूं कि उससे पहले कि जो सभी प्रयास थे उनका योगदान ही है कि जब उसे सफलता मिली। और इसे सीख ये मिलती है कि हर छोटा प्रयास महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। सफलता अक्सर लगातार मेहनत का परिणाम ही होती है, तो बस मेहनत करते रहिए। मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी तो होए सोए जो राम रच रखा है ना।

Well, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से और हमारे चेहरे पर रौनक आ जाती है, पता है कैसे? आपके आ जाने से। 102.6 FM, दिल से दिल तक, और दिल से दिल तक का ही सफर है, और मैं कहता हूं ये सफर कभी खत्म ना हो। ना तो कारवा की तलाश है, ना ही आगे, आपको बताइए, ना ही हम सफर की तलाश है, लेकिन अगर तलाश है तो वो खुद को पाने की तलाश है। सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अक्सर हम बातें जरूर करते हैं, लेकिन कुछ समय जब अपने साथ आप व्यतीत करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कितनी काबिलियत आप में है। इफ यू हैविंग अ ड्रीम, जस्ट गो फॉर इट, नो मैटर हाउ स्मॉल हाउ टॉल इट इज। सपने तो बड़े ही दिखने चाहिए। एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के

बीच पला और बड़ा हुआ। वो खुद को भेड़ ही समझता था। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उसे नदी में उसका चेहरा दिखाया और बताया कि वो भी शेर है। तब उसने पहली बार दहाड़ लगाई, बड़े बड़े पहाड़। और जब गूंज उठती है शेर की दहाड़, तो फिर उनको भी झुकना पड़ता है। सीख क्या मिलती है कि अपनी असली क्षमता को पहचानना सफलता की पहली सीढ़ी है ना। वो जरूरी है कि आप कैपेबल हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन तो बाद में आएगा, लेकिन अपनी शक्तियों को समझना ये सबसे पहला आपका काम होना चाहिए। पहले हमारी शक्तियां आपको एंटरटेन करना। सुप्रभात, जाग जाइए।

कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है और वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की। लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, दिखला दे तो जिंदा है ना, और वो डायलॉग है ना कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो जरूरी है कि आप अपने साथ समय व्यतीत जरूर करें और समझें।

परेशानियों से भाग जाना आसान होता है, हर पहल एक नया इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। बात को याद रखिएगा।

वेल, अक्सर लोग कहते हैं कि आरजू झूठ है, फरेब है, और आरजू का फरेब खाना नहीं है ना। और खुश जो रहना हो जिंदगी में, अगर दिल कभी किसी से लगाना नहीं। अक्सर ऐसा बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि जीवन में अगर कुछ गलत हो गया ना हमारे साथ, तो फिर वो चीज अगर हमें मिली नहीं जो हम चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं रिबेलियन हो जाते हैं। वही मैं बताना चाहूंगा एक कहानी के माध्यम से, कि एक लड़का एक दिन पतंग उड़ा रहा था। तेज हवा के कारण पतंग ऊपर उड़ती जा रही थी और उसने सोचा कि हवा उसकी दुश्मन है, लेकिन उसके दादा ने कहा यही हवा उसे ऊपर ले जा रही है। यानी कि प्यार, अफेक्शन, ये लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने हैं तभी तो सपने हैं, और वो सपनों को साकार करना अपनों के साथ वो अलग ही लेवल का डॉक्यूमेंट देता है आपको।

कुछ इस तरह से मैंने अपने जीवन को आसान कर दिया, खुद से मैंने माफी मांग ली और औरों को मैंने माफ कर दिया। फॉरगिवनेस, ये तो लाइफ में होनी चाहिए आपके। और जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है और फिर गलती का एहसास होने पर माफी मांगता है तो क्रोध आना तो लाजमी है। लेकिन मैं अगर कहूं कि गुस्सा ना करें, उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए। इससे हमारी जो ऊर्जा तो बचेगी ही, उसे भविष्य को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए। बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो ना केवल खुद आगे बढ़ें बल्कि आपको भी आगे बढ़ने के लिए मजबूर करें। जैसे देखो, हम भी मॉर्निंग में आ जाते हैं ना आपके साथ, एकदम हाजिर हो जाते हैं नहा धोके, वैसे आपको भी कोशिश करनी है। वेक अप इन द मॉर्निंग एंड बी समवन एल्स एज एन आर्टिस्ट। और हम सब कलाकार ही तो हैं, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, हर कोई अपना किरदार निभा रहा। और जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मशा। वेल, 6:30 हो गए हैं और 102.6 FM दिल से दिल तक आप सुन रहे हैं आरजे गौतम के साथ।

दिल की पुकार तो आपने भी सुन ली होगी, इसलिए तो हाजिर हो चुका हूं मैं एंड सुप्रभात। और इसी के साथ कहना चाहूंगा कि वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, कि वक्त से लड़के जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तरकीब बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। वेल, तस्वीर हो गया हूं तस्वीर देख के, और हैरान है दिल यार की तकदीर देखकर। नहीं, ऐसा नहीं होता, जिसको जो भी मिला है ना कहीं उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है।

खुद से बन रहे हैं जनाब, इसलिए समय लग रहा है हमें, जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली। और कुछ कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए, कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए यही तो सबसे बड़ी जंग है, क्या कि मैथमेटिक्स में अपना हाथ थोड़ा सा तंग है। सबसे बड़ी लड़ाई कैसे होगी पढ़ाई, तो ये कहानी उस पढ़ाई और लड़ाई के ऊपर ही। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये बूंद बूंद से कैसे घड़ा भरता है। एक छात्र रोज केवल 20 मिनट पढ़ाई करता था, उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब समय व्यतीत होता गया वही छात्र सबसे अच्छे अंक लेकर आया, क्योंकि उसने छोटी छोटी कोशिशें लगातार जारी रखी, लगातार वो काम करते रहा, लगातार वो प्रयास करते रहा। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले जनाब, मंजिल लगे आकर गले। 102.6 FM, दिल से दिल तक, सुप्रभात।

समय किसी के लिए रुकता नहीं, चलता ही जाता है, और जो करे अपेक्षा इसकी, पता ही आपको, रोता है और पछताता है। और मैं ये कहना चाहूंगा, समय का सदुपयोग तो आपको करना ही चाहिए। समय हो गया 6:50 और सुप्रभात, सुन रहे हैं आरजे गौतम के साथ। आप छोटी छोटी कोशिशों से ही आप अग्रसर लाइफ में होते हैं, और अक्सर कोशिश कीजिए कि पेशेंस आप रखें। लाइफ में संयम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि अगर दूर तक जाना है, दूर की सोच भी आपको रखनी पड़ेगी, और सोच विचार वो ऐसा होना चाहिए सुबह सुबह कि जो आपने सपना देखा है ना, उसे वाकई में सच करने के लिए आप सोना ही छोड़ दे, जाग जाइए।

देख लिए, अब सच करने का समय आ चुका है। जाकिर खान की लाइनें हैं कि हम भूख के सताए हुए बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे और जब घर से निकले हैं तो इतिहास रच कर ही जाएंगे। लेकिन उसके लिए घर से निकलना पड़ता है और खासकर अगर एक्सरसाइज वगैरह कर लें तो और भी बढ़िया है। और पंजाबी में तो स्टेप देखिए काफी सिंपल है, बल्ब उतारो थल्ले रखो, बल्ब उतारो थल्ले रखो, कर लो। मेरा जाने का समय हो गया, मैं नहीं रहूंगा और अब मुनीश गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

तो दोस्तों, जरूरी तो नहीं है कि हमारी शुरुआत हमेशा ही अच्छी हो, लेकिन दम होना चाहिए ना कि खराब शुरुआत को भी एक अच्छी एंडिंग दे दें। आफ्टर ऑल हम सुपरमैन तो नहीं, हम इंसान ही हैं, है ना। कितना

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जौली और आज अगर दिल्ली और इसके आसपास के वेदर के बारे में जानना चाहेंगे तो फिलहाल 27 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर है और देखा जाए तो अच्छी खासी हवा चल रही है बाहर, मौसम सुहाना है और जब मौसम सुहाना हो तो गीत सुहाने क्यों ना हो, व्हाई नॉट इश्का।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। निरंतर विस्तार और विकास की इस यात्रा में 1990 के दशक तक आकाशवाणी ने देश के कोने कोने में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा दी थी। 2 मार्च 1990 को आकाशवाणी ने अपनी सफलता का एक ऐतिहासिक शतक पूरा किया, जब आंध्र प्रदेश के वारंगल में इसका 100वां स्टेशन स्थापित किया गया। महज 3 वर्षों के भीतर 1993 में आकाशवाणी ने ओडिशा के बिरहामपुर में अपना 150वां स्टेशन भी स्थापित कर लिया। ये उपलब्धि देश में रेडियो प्रसारण के तेजी से फैलते नेटवर्क का प्रतीक थी, जिसने आकाशवाणी को हर कोने तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाई। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुन रहे हैं आप? बादलों की गड़गड़ाहट उसका इंतजार कर रहे हैं क्या? नौतपा चल रहा है, लेकिन उसके बीच में भी जब दिल्ली के इलाके में और उसके आसपास के इलाकों में अगर बारिश की वो बौछारें आ गई, वो मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, वो टपटपाती बूंदे, नेचुरल ब्यूटी, उसका लुत्फ उठाना भूलिएगा नहीं। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुन रहे हैं आप।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मनीष जॉली और जानते हैं कि साल 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ, यानी 29वां राज्य बना, द 29th स्टेट ऑफ आवर ग्रेट कंट्री। और तब 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे और इन डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर तेलंगाना का निर्माण हुआ साल 2014 में। और भी ढेर सारी बातें करेंगे आज के इस खास उपलक्ष्य में, यानी 2 जून 2026 को हम बात करेंगे कि 2 जून को क्या क्या खास हुआ, किन महान हस्तियों का जन्म हुआ और आज का दिन और खास क्यों है।

0: सो गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप, और मैं आपसे कह रहा था कि आज का दिन जो खास है, खास क्यों है, तो कुछ महान हस्तियां हैं, उनका जन्मदिन है, और उन महान हस्तियों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, जिनमें से एक थे वो जनाब जिन्होंने जो महाभारत सीरियल आया दूरदर्शन में, वहां पे श्री कृष्ण का किरदार निभाया, नितेश भारद्वाज जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: वाह, सरसों का ऐसा स्वादिष्ट साग तो मैंने कभी खाया ही नहीं था, और फिर ये मक्के की रोटी, काकेश्री ये सब खाकर मैं धन्य हो गया।
2: सुन रही हो, तुम्हारे पकाए साग को खाकर कौन धन्य हो रहा है?
1: सच कह रहा हूँ काकाश्री, राजभवन के पकवान खा खा कर मन उब गया था। अब कभी हस्तिनापुर आना हुआ तो आप ही का अतिथि बनूंगा।
2: तब तो इस घर के भाग ही खुलेंगे वासुदेव।
3: अपना ये वचन भूल तो नहीं जाइएगा?
2: इन्हें भूलना ही तो नहीं आता भाग्यवान।
0: समझ गए ना किसकी बात कर रहे हैं, महाभारत का वो सीरियल जो हिट रहा, और एक दशक रहा जब हर संडे को महाभारत देखने के लिए, उससे पहले रामायण देखने के लिए, लोग दूरदर्शन के टेलीविजन सेट्स पर बिल्कुल चिपक जाते थे। लगभग कर्फ्यू लग जाता था सड़कों पे, क्योंकि सब लोग टेलीविजन के सामने होते थे। नितेश भारद्वाज जी, एक बहुत अच्छा किरदार उन्होंने निभाया उस पूरे सीरियल में, और आज भी उनकी भाषा की बहुत लोग तारीफ करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक और एक्ट्रेस की जिनका आज जन्मदिन है, और वो हैं सोनाक्षी सिन्हा, जिनका जन्म हुआ मुंबई में। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी हैं, और सबसे बड़ी बात आप भी जानते हैं कि जो एक्शन ड्रामा फिल्म थी दबंग, उसमें अपना डेब्यू किया और फिल्म फेयर अवार्ड जीता फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस। सोनाक्षी सिन्हा को आज के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं।
5: थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहा, मेरा नाम है मुनीष जॉली। शुरुआत अच्छी हो ना हो, लेकिन कंप्लीशन जो एंडिंग है ना, वो सुपर होनी चाहिए।

0: तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, जल्दी एनसीआर सुन रहे हैं आप। और आज जिन हस्तियों का जन्मदिन है उनमें से एक भारत के महान फिल्म कंपोजर, सिंगर, स्क्रीन राइटर, एक्टर, कंपोजर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इलैया राजा जी की बात मैं कर रहा हूं, जिनका जन्म हुआ था 2 जून 1943 में, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन म्यूजिक कंपोजर्स। और उनको क्रेडिट दिया जाता है वेस्टर्न म्यूजिक की जो सेंसिबिलिटीज हैं उनको इंडियन म्यूजिकल मेन स्ट्रीम में लाने की। वर्ल्ड ओवर उन्होंने लगभग 7,000 सॉन्ग्स जो हैं वो कंपोज किए और लगभग 1,000 से ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया, 20,000 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स उन्होंने किए। आज उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ मणि रत्नम जी का आज जन्मदिन है, 1956 में उनका मदुरई तमिलनाडु में जन्म हुआ। ऑफकोर्स उनकी बात करना जैसे कहते हैं ना कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, और सबसे बड़ी बात ये कि पद्मश्री से वो सम्मानित किए गए, नेशनल अवार्ड्स उन्होंने ढेर सारे जीते, इन सब बातों से हम लोग वाकिफ हैं। लेकिन एक ऐसा टॉपिक जिसको लेने से वो कभी चूके नहीं, मणि रत्नम जी की जब हम बात करते हैं तो टेररिज्म से रिलेटेड जब भी कोई मुद्दा आया तो उन्होंने फिल्में बनाई, पीछे नहीं हटे। सबसे पहले रोजा की बात कर लेते हैं।
1: मुझे मार नहीं सकते तुम। लाइट, अब मैं जा रहा हूं, जा रहा है तुम्हें कर लो।

0: चीजें हकीकत के तौर पर दिखाई गई थी।
1: धर्म ईश्वर के पास जाने का एक मार्ग है, ईश्वर के पास जाते हैं दोनों।
2: तो फिर ये आपस में क्यों लड़ते हैं?
1: ये तो नहीं जानता राजा।
0: और भले ही दिल से उस मूवी को कैसे भूल सकते हैं हम, बॉम्बे के बाद

0: नाम मत बताइएगा, मेरा नाम है मकांत वर्मा, ऑल इंडिया रेडियो। आप सिर्फ ये बताइए आप पैदा कहाँ हुई या फिर कोई रिश्तेदार का नाम, माँ जी का नाम बता दीजिए। घर में कोई कुत्ता होगा, जॉनी, टिमी, रोस, इसको कहिए ना, यही कह दीजिए कि मैं चुप हो जाऊँ, यू नो, जस्ट शराब, जस्ट शराब। आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी, मेरा मतलब जान तारे ले आऊँ, किला फतेह कर लूँ, ला सकता हूँ, या
1: मणिरत्नम जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

सो गुड मॉर्निंग, दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप। और जिन और हस्तियों का जन्मदिन है आज, वो हैं नंदन नीलेकानी जी। 2 जून 1955 में उनका जन्म हुआ। UIDAI के चेयरमैन, यानी आधार कार्ड की जो शुरुआत हुई थी उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। एंड ऑफ कोर्स ही वाज द चेयरमैन ऑफ UIDAI, जिसको हम जानते हैं, और हम यूनिक ID अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक चेयरमैन जिसने एक ख्वाब देखा, पूरा किया, और आज आधार कार्ड आपकी और हमारी जिंदगी में कितना लाभदायक हो गया है आप जानते हैं। डोला बैनर्जी आचर हैं, आज उनका जन्मदिन है। ललिता बाबर एशियन चैंपियन रह चुकी हैं 3000 मीटर की स्टीपल चेज इवेंट में, उनका जन्मदिन है। क्रिकेटर HS शरत का आज जन्मदिन है। लेकिन एक महान हस्ती जो आज ही के दिन कुछ साल पहले, यानी 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए, उन्हें कहा जाता था कि दैट ही इज वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स फिल्म मेकर्स ऑफ हिंदी सिनेमा। मैं बात कर रहा हूँ राज कपूर साहब की। उनका जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1924 को, लेकिन 2 जून 1988 को 63 साल की उम्र में दिल के दौरे पड़ने से उनकी

0: मृत्यु हो गई। उनका जन्म हुआ था पेशावर में और उसके बाद वो आए बॉम्बे में, सेटल हुए, फिल्मों में शौक था। 10 साल की उम्र में पहली बार 1935 में हिंदी फिल्म इनकलाब में उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद 1947 में रोमांटिक ड्रामा नीलकमल, बेगम पारा, मधुबाला, ये सारी चीज़ें चलती रहीं, फिल्म की यात्रा चलती रही। और हम जितनी भी उनकी बात कर लें उतना कम है, क्योंकि जिसको हम द शोमैन ऑफ द इंडियन मूवी के नाम से जानते हैं और जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया हिंदी फिल्म्स में बतौर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, काबिले तारीफ है। और उस दौर में जब ब्लैक एंड वाइट मूवीज का दौर था, तब का दौर हम कैसे भूल सकते हैं।
1: एक जमाने से कहा,
0: एंड ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं राज कपूर साहब की, तो हम इतिहास के कुछ पन्ने पलटते भी हैं।
2: क्या तुम्हें इसका भी डर नहीं लगा?
3: डर तो था शेर सिंह जी, मगर दुनिया में एक चीज शेर बबर से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है, और वो है गरीबी और भूख।
4: तुम एक दिल हो या एक आदमी?
5: आदमी ही तो दिल है डॉक्टर साहब, आदमी में दिल होता है, दिल में आदमी।
6: इस दुनिया में जीने का अधिकार तो उनको है जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने वापस नहीं किए। ये दुनिया दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की।
7: हम जैसे लोग पैसे के बगैर कर ही कह सकते। इस दुनिया में तो सांस लेने के लिए भी पैसा चाहिए।
8: व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ तिजोरी में उतना ही ज्यादा रुपया। मैं तो इस बड़े झूठ के मैदान का एक बहुत छोटा सा खिलाड़ी हूं।
0: कहते हैं कि राज कपूर साहब जब एक्टिंग करते थे और उनकी जब फिल्मों में जब ऐसी भूमिका होती जहाँ उन्हें गाने गाने होते थे, मुकेश साहब की आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल फिट बैठती थी। मन्ना डे साहब उनके मेजर प्लेबैक सिंगर्स थे मुकेश साहब के साथ। और सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय फिल्म का एक फ्यूजन उन्होंने किया बाहर के देशों के साथ, जिसमें सोवियत यूनियन था, चाइना, तुर्की, अफगानिस्तान और जगह जगह यूरोप के जो देश हैं उनके लोकेशंस ढूंढकर वहां पे शूटिंग करके भारतीय ऑडियंस को एक प्यारा सा नजारा वो देते रहे अपनी फिल्मों में।
9: सॉन्ग्स फर्स्ट ओरिजिनेट इन मी,
10: माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द म्यूजिक इन फिल्म इज दिस, आई डोंट से दैट आई कंपोज म्यूजिक, आई कंडक्ट इट. I get my music done the way I would visualize it.

राज कपूर साहब में क्लास थी कि वो किसी भी एक्टर से उसका बेस्ट निकाल सकते थे, ऐसा लोग कहते हैं। बहुत सारी किताबों में हमने पढ़ा दैट जब हम उनको कहते हैं द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ बॉलीवुड, तो वो जानते थे कि किसके अंदर क्या खासियत छिपी हुई है, और ये बात वो औरों के लिए नहीं अपने लिए भी जानते थे। जैसा उस गीत में हमने सुना था ना कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज 16 आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

कहते हैं कि भारत की लेखिका महाश्वेता देवी ने 2006 में फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में अपनी स्पीच के दौरान यही लिरिक्स दोहराई थी और यही लिरिक्स यूज की गई थी 20th सेंचुरी स्टूडियोज की फिल्म डेडपूल में, जो 2016 में रिलीज हुई थी, जिसमें रायन रेनल्स थे।

राज कपूर साहब, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, 11 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 21 नॉमिनेशंस। भारतीय सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया 1971 में। दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया 1987 में। कहते हैं कि राज कपूर साहब की फिल्म में वायलेंस ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी, बिकॉज ही बिलीव्ड इन लव एंड स्प्रेडिंग लव।

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। राज कपूर साहब की डेथ एनिवर्सरी और उसके उपलक्ष में हमने छोटा सा सेगमेंट पेश किया। हम आकाशवाणी रेनबो हैं। आकाशवाणी 90 साल पूरे कर चुका है और 1936 में वो जो सफर शुरू हुआ था, जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं हमारे सबके अंदर अलग अलग भाव आते हैं आकाशवाणी के लिए। मेरे अंदर एक भाव आता है 1936, क्या पता पिछले जन्म में भी आकाशवाणी ने हमें अपने मधुर संगीत से, अपने कार्यक्रमों के द्वारा हमारी जिंदगी में आकर रंग बिखेर दिए हो और जिंदगी को और सुहाना बना दिया हो। शायद हमें याद ना हो, आकाशवाणी को तो याद है ना।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मेरा नाम है मुनीश जौली। आशा करता हूं कि आज का गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आपको पसंद आया होगा। ये दूसरा जो फेज है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का शुरू होगा और बहुत जल्द आप उसे सुनेंगे। हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं एंड ऑफ कोर्स हमारी जिंदगी कभी रुकती नहीं है। आप भी कभी रुकिएगा नहीं, कोई भी परिस्थिति आए मुस्कुराते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। गौतम गौड़ आएंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को एक नई कड़ी लेकर, बस सबसे कुछ ही देर में।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं ऐ मुश्किलों, देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल, गुड मॉर्निंग। दिल्ली एनसीआर लेकर आरजे गौतम आ चुका है स्टूडियो में, एंड वही कहूंगा गुड मॉर्निंग। और ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, अरे सुबह सुबह वड़ा पाव की बातें कहां से आ गई। फिटनेस फ्रीक बनना है तो थोड़ा सा फिट रहना पड़ेगा आपको, स्वाद अनुसार नहीं सेहत अनुसार खाएं, बाकी मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, डट कर खड़े रहिए।

0: खुद से मिलने के लिए तो यही खोज है, नहीं तो परेशानी तो हर रोज है ना। और इन्हीं गम की घटनाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर 102.6 एफएम, दिल से दिल तक। और याद दिला रहा हूं आपको कि सूरज का बढ़ता रहेगा ताप, लेकिन आपको करना है एक ही जाप, एक ही जाप। क्या? अगर लिखनी है कोई बड़ी कहानी तो बस पीते रहिए पानी, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, है ना। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। और
1: डील बोले तो
2: हार्ट हार्ट
3: हमारा यार, सौदा सौदा।
2: ओहो,
4: दोनों डील करा सील,
2: टाइट टाइट, वेरी टाइट।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

कल पहले सन्नाटा था, अब शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ ये बताऊंगा मैं आपको बाद में ना। वैसे शोर और रोर और जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। आरसीबी फैंस कमाल कर देता, इंतजार लंबा था ना, बैक टू बैक दूसरी ट्रॉफी है।

वेल ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्पाइडरमैन का डायलॉग है ना, लेकिन मैं तो सुपरमैन का फैन हूँ, और मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन। और सुपरमैन का क्या डायलॉग है कि आपको अगर अपनी लिमिट पता करनी है ना, तो बस उसे पुश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, स्ट्रेचिंग होती रहनी चाहिए ना। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आरजे गौतम के साथ 8:20 हो चुके हैं और हम बात कर रहे थे ना कि पहले सन्नाटा था और फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मैटर बड़े होते हैं, विराट कोहली वहाँ पर खड़े होते हैं। 18 साल, कब आओगे, आ चुकी है सेकंड बार ट्रॉफी, और 18 साल तक ट्रॉफी का इंतजार रहा, फिर लगातार दो बड़े खिताब। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल में अपनी कहानी ही बदल दी। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना, वो जोर चारों तरफ से, और शोर भी आरसीबी के फैंस का हमेशा रहता है, लेकिन आरसीबी की सफलता की बड़ी वजह यह रही कि टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रही थी। बल्लेबाजी में विराट कोहली, रजत और देवदत्त पडिक्कल ने खासा रन बनाए, बहुत अच्छे तरीके से धुआंधार पारी भी खेली, और बड़ी बड़ी मीनार सोने की दिनार दूर से चमकती, और ऐसे खिलाड़ी तो चमकते ही दूर से। वहीं भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, कमाल,

आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप, और कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि पेड़ लगाइए, पेड़ ये घाव नहीं देते छाव देते हैं। लेकिन इसी के साथ ही अपने आप को हाइड्रेटेड आपको रखना है, और अत्यधिक गर्मी से होने वाली परेशानी अगर कहीं भी नज़र आती है, जैसे चक्कर आना या ज़्यादा थकान लगे, तो फिर अपने बॉस को जो है ब्लॉक नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, बिल्कुल भी इन परिस्थितियों को नज़रअंदाज ना करें। यदि आपके आसपास किसी व्यक्ति को अचानक बेहोशी जैसा लगे, कमजोरी महसूस करे, या फिर उसे ऐसा लगे कि वो सही फील नहीं कर रहा, तो उसे तुरंत किसी ठंडी और छायादार जगह पर ले जाएं, उसे पानी या अन्य तरल पदार्थ दें, और आप भी सेवन करते रहिए। झुकझुक जीजिए जिए और माफ कीजिए झुकझुक जियो, और जितना हो सके पानी पियो।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ख्याल क्या आता है कि अंत में आप किसी के लिए ना मेमोरी रह जाएंगे, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप वो अच्छी मुलाकात के साथ किसी से भी मिले। डाउन टू अर्थ रहना बहुत जरूरी है, और गर्मी जब ज्यादा हो गई है तो फिर। लेकिन एक बात कही जाती है कि मेरी जमीन तुमसे गहरी रही है, वक्त आने दो आसमान भी तुमसे ऊंचा रहेगा। वाह वाह वाह, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे ना, ये आप मुझसे कहना चाहते हैं। हर रोज जीतेंगे।

बेहतर से बेहतर की तलाश है और बेहतरीन बनाने की खुद को ये तलाश है। वेल, विदेश की बात नहीं करेंगे, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने महिला यात्रियों के सफर को सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं आपको बताते चलूं कि DTC द्वारा लॉन्च किए गए पिंक सहेली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी कि NCMC की संख्या लॉन्चिंग के महज 90 दिनों के भीतर 10 लाख के पार पहुंच गई है और देश के सार्वजनिक परिवहन इतिहास में इसे डिजिटल मोबिलिटी समाधान का सबसे तेज और बड़े पैमाने पर किया गया रोल आउट भी माना जा रहा है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: ये हसी वादियां ये खुला।
1: अरे यार मुझे, आई एम नॉट अ गुड सिंगर, लेकिन फिर भी ना ये जवानी है दीवानी और बनी का वो डायलॉग याद आ जाता है ना कि मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ लेकिन रुकना नहीं चाहता। बात तो सही है, रुकना तो है ही नहीं, थमना तो है ही नहीं और थकना भी नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि हल्का सा मौसम अच्छा होता और हम कोशिश करते हैं चले जाएँ पहाड़ पर। वेल, कोशिश कीजिए आने वाले दिनों में जितना हो सके 12 से 4 आप बाहर ना निकलें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, एक्सरसाइजेस करते रहें और मतलब ठंडा ठंडा, मतलब यही कहूँगा कि कूल चिलैक्स रखिए अपने दिमाग को भी कहीं ना कहीं, और कोशिश कीजिए कि कोशिश ये करें आपके खुद तो फिट रहें लेकिन जितने भी लोग आपसे भी टकराते हैं ना उन्हें भी कीजिए, कहिए है ना कि आप भी फिट रह सकते।
2: आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

वेल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, ये हमारा दिल ही तो है जो आपके दिल में एक मुकाम देखता है। दिल से दिल तक का ये सफर 102.6 FM, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और सेटबैक से ज्यादा चर्चे कमबैक के होते हैं, पता नहीं हमारा कमबैक कब होगा। वेल, मैं आपको बता देता हूं कि सेरेना विलियम्स करीब 4 साल बाद प्रोफेशनल टेनिस में वापसी कर रही है और 44 साल की उम्र में 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीत चुकी है। सेरेना ने लंदन में होने वाले क्वींस क्लब ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट में डबल्स खेलने के लिए वाइल्ड कार्ड स्वीकार किया है। ऐसी वाइल्ड कार्ड एंट्री एक दिन देखना मेरी भी हुई कहीं ना कहीं, है ना। वेल, अगर आप एंट्री करने के लिए कहीं तैयार हैं तो पेशेंस के साथ जाइए। और बदतमीजी एक बीमारी है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल, कंट्रोल उदय, कंट्रोल, पेशेंस।

देखे थे जो सपने आज उनके पास हूँ, आंखों में चमक है और पहले थे आंसू, बाकी सब वही है, ज्यादा कुछ नहीं बदला, बस पहले मैं आम था और आज थोड़ा खास हूँ। स्पेशल बनना पड़ता है आपको अपनी नजरों में सबसे पहले, है ना। वेल, पता नहीं लगता समय कब बीत जाता है आपके साथ। वेल, अब मुझे जाना पड़ेगा बिकॉज आपका फेवरेट शो दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर मुनीश होंगे आपके साथ। जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो उर्फ आरजे गौतम इज साइनिंग आउट, लेकिन हाँ, आप जुड़े रहिए, मैं साइन आउट कर रहा हूं, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 102.6 FM, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और ये प्रोग्राम है दिल के तराने गाने नए पुराने। समझ गए ना, नए और पुराने गीतों का फ्यूजन है दिल के तराने गाने नए पुराने। मैं हूं आपका दोस्त मनीष जाली।

तिल के तराने गाने नए पुराने। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर। मेरा नाम है मुनीश जौली। टफ स्ट्रॉन्ग ऐसी चाहते हैं ना कि हमारे देश की लेडीज हों। चिन्मयी श्रीपदा उन्हीं में से एक हैं। अगर वो अपने हस्बैंड अपने फैमिली को गार्ड शील्ड करने के लिए आगे आती हैं, आउटस्पोकन है और सोशल मीडिया में भी अपनी जो धाकड़ आवाज़ के अलावा अपने जो इम्प्रेशंस हैं, कन्फेशंस हैं, वो लोगों तक पहुंचाने में पीछे नहीं हटती। उन्हीं की आवाज़ में प्यारा सा गीत।

दिल के तराने गाने नए पुराने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। मेरा नाम है मनीष जॉली। चिन्मय श्रीपदा की आवाज में ये गीत हमने सुना। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था उन्हीं के हस्बैंड राहुल रविंद्रन ने, और मजे की बात यह है कि उन्होंने सोशल मीडिया में एक टाइम पर लिखा था कि बहुत पार्शियलिटी कई बार हो जाती है सिंगर्स के साथ और उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, इसलिए डाउन साउथ गई और वहीं पर राहुल रविंद्रन, जिनसे उनकी शादी हुई, उन्हीं की फिल्म में गीत गाए। शी इज अ ग्रेट सिंगर, इजंट इट। किसी ने मुझसे पूछा कि कोई काम ढूंढ रहे हैं, कोई काम मिल सकता है? फिर दूसरे ने कहा कोई काम मिल सकता है। ये सुन सुन के मैंने उनसे कहा, ऐसा करो कि खुद काम देने वाले बन जाओ, काम मांगने वाले नहीं।

9:15 आप आकाशवाणी रेनबो पर। अब हिस्ट्री में थोड़े से पन्ने पलटते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हुए जाते हैं। 1965 में एक फिल्म बनी थी जहां पर लोगों ने कहा ये एक रोमांटिक ड्रामा है, एक बहुत अच्छी फिल्म जिसके बारे में टाइटल अगर कहें तो वो था थोड़ा सा इंग्लिश। ज्वेलरी की बात हो और फिर ज्वेल थीफ की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि इस फिल्म में देवानंद साहब ने किरदार निभाया और वो किरदार बहुत ही रंग लेकर आया। लेकिन उस फिल्म के साथ साथ जहां देवानंद साहब हैं और प्राण साहब उनके बड़े भाई हैं, प्रेमनाथ जी हैं, और उस फिल्म के गाने सुपर हिट हुए, तो 1965 की एक फिल्म और वहां हम चलते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, आगे बढ़ते हैं।

ऑलराइट, दिल के तराने, गाने नए पुराने, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। और अब चलते हैं 2011 की तरफ, जहां आइकॉन एक बहुत ही ग्रेट सिंगर के रूप में उभर रहे थे विश्व भर में। और शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरीके से उन्होंने उन्हें यूएस से फ्लाई करवा के मुंबई बुलाया रिकॉर्डिंग के लिए, कुछ गीत गाने के लिए। कौन सी फिल्म थी वो, ये गीत सुनिए फिर बताते हैं।

कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। फिल्म का नाम रा 1 और इस फिल्म में बचाने कौन आया? G1। लेकिन ये गीत गया था एकॉन ने, हमसिक अय्यर उनके साथ थी। साल 2025 में आ जाते हैं और सुनते हैं विकास मान की आवाज में ये गीत।

सच मानिए तो आप जैसा भी हमें कोई नहीं मिला, अभी से नहीं 90 सालों से। आकाशवाणी अपने 90 साल पूरे करने जा रहा है। 1936 में जो सफर शुरू हुआ, आजादी के पहले और आजादी के बाद, ये साथ छोड़ा नहीं आकाशवाणी ने। और आज हम यहां गर्व से कह सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं और आप सुन रहे हैं इस समय आकाशवाणी रेनबो।

दिल के तराने गाने नए पुराने, तो इतिहास के पन्ने पलटते हुए लेजेंडरी मन्ना डे और महेंद्र कपूर साहब की आवाज में ये गीत सुनते हैं। ये पुरानी फिल्म थी, फिल्म का नाम दादी माँ। ये फिल्म हम सभी की माओ को समर्पित है। सुनिए इसके बोल एंड बी विद अस।

आकाशवाणी रेनबो, धरती गगन हर जगह हम हैं। विश्वास नहीं होता तो अगली बार जब एयर ट्रैवल करें तो आपके मोबाइल पे जो रेडियो है उसे ऑन कर लीजिएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी लगाइएगा, हम आकाश में भी सुनते हैं। ये गाना समर्पित कर रहा हूँ इंडियन एयरफोर्स को।

You know, just getting reminded of the year this movie was released, Dil to Pagal Hai. तो ये जो गीत इतना पॉपुलर हुआ कि हर गली नुक्कड़ में कोई ना कोई गाते हुए मिल जाता था. तो हमारे दोस्त एक बारी साथ जा रहे थे, वो कह रहे ये गाना जहां जाओ यही गाना सुनने को मिल रहा, दिल तो पागल है. तो कोई गा रहा था, सारी सारी रात जगाता है वही. गुस्से में आके उन्होंने कह दिया तो सो जाया करो. फिर एक ये गाना और एक ओए ओए, इट बिकेम वेरी पॉपुलर. बट मेलोडी का जो जो रंग है ना, वो अलग ही है. वो गीत जो उन सांसों के साथ धीरे धीरे आपकी रूह तक जाए, गीत वही है ना. श्रेया घोषाल को सुनते हैं, जावेद अली को, दिल के तराने, गाने नए पुराने. ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आप.

सो दैट्स इट, दिल के तराने, गाने नए पुराने। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज्योति अलावत अगला प्रोग्राम लेकर आ रही है वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम, वो ही जो बहुत मशहूर था और है और रहेगा, प्ले इट कूल। मैं मुनीश जौली आप सभी लोगों से इजाजत ले रहा हूँ। नमस्कार, हैव अ ग्रेट डे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्रा ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकवादियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान शेरोवाली कल लगातार 10वें दिन भी जारी रहा। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम घने जंगलों में आतंकियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए अभियान चला रही है। व्हाइट नाइट कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने कल नियंत्रण रेखा से जुड़े अग्रिम क्षेत्रों का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था तथा सेना की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों और पुनर्मूल्यांकन विद्यार्थियों

को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना राज्य गठन दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में तेलंगाना वासियों की प्रगति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली सांस्कृतिक साहस दृढ़ संकल्प तथा संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने तेलंगाना वासियों के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। और खेलों में 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। इस समूह में पेरिस 2024 ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में 2022 के रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और 2022 के दोहरे पदक विजेता जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Dear listeners, you are tuned into Akashvani FM Rainbow. We're heading in for a short little break, but stay with us because there's lots more on the other side. Stay with us.
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार में पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और

संघर्ष का प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज इटली के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी और भी मजबूत होती रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि यदि इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 322 अंक गिरकर 73,945 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक लुढ़ककर 23,229 पर कारोबार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी। आपके साथ मैं प्रियंका मामगन और हमारे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स प्रोग्राम। 11:05 और पूरे 48 सेकंड हो चुके हैं और ऐसे में बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि प्रोग्राम कौन सा है। सबको पहले से ही पता चल जाता है कि कौन सा प्रोग्राम आने वाला है और क्या कुछ बातें होने वाली हैं। जी हाँ, अब रहेगा फिल्म जगत की बातों का साथ आपके साथ। कहे तो 24 कैरेट एंटरटेनमेंट अब होगा आपके साथ।

यस डार्लिंग, बातों की शुरुआत की जाए फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज इम्तियाज अली के साथ, तो वो एक प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ वो अभिनेता भी हैं और लेखक भी हैं। हर किरदार वो बहुत ही अच्छे तरीके से निभाते हैं और वो जब कहानियों को बड़े पर्दे पर लेकर आते हैं तो वाकई उनकी कहानियाँ बहुत कुछ कहती हुई नज़र आती हैं और किरदारों कि जो पकड़ उनके पास है ना, वो शायद ही किसी और के पास हो, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से किरदारों के अंदर की भावनाओं को भी व्यक्त करने में माहिर हैं। अगर उनके करियर की बात की जाए तो साल 2005 में उन्होंने फिल्म सोचा ना था से बतौर डायरेक्टर अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। इसी के साथ उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जब वी मेट आई साल 2007 में, जो बहुत बड़ी सफलता लेकर आई थी उनके लिए, और इस फिल्म ने उन्हें एक ऐसी पहचान दिलाई कि वो आज भी जब कहीं जाते हैं तो सब यही कहते हैं कि आपकी जब वी मेट फिल्म देखी थी और आज तक वैसी फिल्म हमने दोबारा से नहीं देखी है, प्लीज़ वैसी ही फिल्म बनाइए। जी हाँ जनाब, उन्होंने कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, लव आजकल, रॉकस्टार, हाईवे, तमाशा, जब हैरी मेट सेजल, अमर सिंह चमकीला, और अब वो लेकर आ रहे हैं मैं वापस आऊँगा। वो कहीं नहीं गए थे, वो फिल्म लेकर आ रहे हैं मैं वापस आऊँगा। और ये फिल्म एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें सिर्फ रोमांस या इमोशंस ही नहीं दिखेंगे बल्कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मैं वापस आऊँगा फिल्म रिलीज हो रही है 12 जून को सिनेमा घरों में। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं जो निभाएंगे वो हैं दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शर्वरी बाग। और इसी के साथ ये फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं 1947 के आसपास के भारत और उस टाइम पे जो माइग्रेशन हुआ था, जो बंटवारा हुआ था, जो बिछड़ने का दर्द था, जो भावनात्मक यात्रा रही थी, जो यादें थी उस दौर की, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर बड़े पर्दे पर लेकर आएंगी मैं वापस आऊँगा। जी हाँ, इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊँगा 2026 को रिलीज़ हो रही है। मंथ है जून और डेट है 12, यानी कि 12 जून को रिलीज़ हो रही है और सुपर एक्साइटेड है क्योंकि जब भी इम्तियाज अली कोई नई फिल्म लेकर आते हैं, कुछ सब्जेक्ट लेकर आते हैं, तो बहुत कुछ देखने को और महसूस करने को मिलता है।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाश वाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: फिल्म जगत की बातों के साथ आपके साथ और अब साथ आपके साथ उस क्वेश्चन का जिसका आंसर देकर आप बनेंगे बॉलीवुड सरताज। अभी हमने एक बात की, एक फिल्म की बात की जो कि 12 जून को रिलीज हो रही है, जिसका नाम है मैं वापस आऊंगा। आपको इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम हमें लिख भेजना है 9868107070 पर। मैं वापस आऊंगा फिल्म 12 जून को सिनेमा हॉल्स में रिलीज हो रही है। आपको इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम हमें लिख भेजना है 9868107070 पर।
1: बुढ़े हो गए पर दिल अब भी जवां है, आंखों से सुख लेते हैं, बड़े शैतान हैं।

साल 2011 और साल 2011 में सलमान खान और असिन की ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हुई थी रेडी। जी हाँ जनाब, एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे और कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। और रेडी फिल्म को डायरेक्ट किया था अनीस बज़मी साहब ने। और इस फिल्म में कॉमेडी थी, एक्शन था और चार्ट बस्टर्स गाने थे जो बहुत पॉपुलर हुए थे। और आज भी जब ये गाने बजते हैं तो मन करता है कि स्टेप उठा के डांस कर ही लिया जाए। जी हाँ जनाब, रेडी फिल्म को 15 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष में जो रेडी की टीम है उन्होंने सोशल मीडिया में कई सारे इस फिल्म से रिलेटेड पोस्ट डाली, शेयर की अपने फैंस के साथ। और इस बात को जानकर फैंस बहुत ही एक्साइटेड हुए कि रेडी फिल्म को 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जबकि फैंस का ये कहना है कि बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इस फिल्म ने 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे लगता है जैसे 4-5 महीने पहले ही ये फिल्म रिलीज़ हुई हो और इस फिल्म को दोबारा देखने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं फैंस जो अनीस बज़मी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से आप इस फिल्म को री रिलीज़ कीजिए। कहाँ, सिनेमा हॉल्स में। जी हाँ, और रेडी फिल्म में सलमान खान प्रेम की भूमिका में नज़र आए थे तो असिन संजना की भूमिका में नज़र आई थी। और कई सारे इसमें कलाकार थे जो दिग्गज थे और बहुत ही एक्टिंग के महारथी माने जाते हैं। इसमें परेश रावल, महेश मांजरेकर, मनोज जोशी, शरद सक्सेना और आर्य बब्बर भी शामिल थे। और अब ये फिल्म 15 साल पूरे कंप्लीट कर चुकी है और हम सभी सिनेमा फैंस यही चाहते हैं कि इस फिल्म को दोबारा से सिनेमा हॉल्स में री रिलीज़ किया जाए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: लम्हा दर लम्हा वक्त आगे बढ़ रहा है, जिंदगी आगे बढ़ रही है। जिंदगी को देखा जाए तो जिंदगी के दो शाश्वत सत्य जीवन और मृत्यु। जीवन एक नए सफर की शुरुआत है तो मृत्यु उस सफर के संपन्न होने की निशानी। भारतीय फिल्म जगत की मशहूर पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी ने 31 मई 2026 को अपने इस जीवन के सफर को संपन्न करते हुए इस संसार से विदा ली।

महान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी ने मुंबई के लोखंडवाला में अपने आवास में 31 मई को लगभग रात 8 बजे इस संसार से विदा ली। उनकी विदाई पर शब्द थम गए हैं और सुर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर सुमन कल्याणपुर जी को पुकार रहे हैं।

को ढाका में हुआ। बचपन से ही उन्हें गाने का शौक था। उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और स्टेज पर गाना शुरू किया, जहां उनकी आवाज को सराहना मिली और अवसर भी मिले। 1953 में उन्होंने मराठी फिल्म शुक्रांची चांदनी में गाने का अवसर मिला और उन्होंने गाना गाया, और फिर 1954 में उन्होंने हिंदी फिल्म मंगू के लिए लोरी रिकॉर्ड की, और फिर गायकी का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा।

सुमन कल्याणपुर जी ने 6 से ज्यादा दशकों तक अपनी आवाज से कई हजारों गानों को सुरमय बनाया और संगीत की विरासत को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, असमिया, बंगाली, राजस्थानी, कन्नड़, भोजपुरी समेत

सुमन कल्याणपुर जी का संगीत जगत में प्रभाव हमेशा बना रहा। उनकी आवाज की पवित्रता और भावना सीधे सुनने वालों के दिलों को छूती थी। उनकी सुरीली, रूहानी और भावुक आवाज श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उन्होंने राजकुमार, ब्रह्मचारी, दिल ही तो है, जब जब फूल खिले, साथी, रेशम की डोरी और इसकी के साथ दिल एक मंदिर जैसी खूबसूरत फिल्मों में उनके गानों में अपनी आवाज थी।

सुमन कल्याणपुर, जिन्होंने पार्श्व गायकी के क्षेत्र में विदेशों में संगीत के कार्यक्रमों में भाग लेते हुए पहली बार इस तरीके के कार्यक्रमों की शुरुआत की और एक नए युग की शुरुआत के साथ आगे बढ़ी। पद्मभूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुरी जी की आवाज़ हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। संगीत के प्रति उनका समर्पण और सुरों की साध आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।

आकाशवाणी परिवार और आकाशवाणी परिवार के समस्त श्रोतागण, स्वर मल्लिका, स्वर गायिका, पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो आपके साथ मैं प्रियंका मामगन और हमारे साथ बॉलीवुड की खबरों का साथ। एक फिल्म है जिसका सीक्वल रिलीज हो रहा है 19 जून को। जी हाँ, 19 जून को रिलीज हो रहा है कॉकटेल 2 फिल्म। ये सीक्वल है, सीक्वल रिलीज हो रहा है। ये फिल्म आई थी 2012 में, कॉकटेल जो सुपर डुपर हिट रही थी उसी का सीक्वल लेकर आ रहे हैं अब मेकर्स, जो कि रिलीज होगा सिनेमा हॉल्स में 19 जून को। तो बिल्कुल मत भूलिएगा एंटरटेन करना अपने आप को बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब मेंटल हेल्थ की बात आती है ना तो फिल्में बहुत बड़ा किरदार रोल प्ले करती हैं हमें हेल्दी रखने में, हमें एंटरटेन करने में। और एंटरटेन करने के साथ साथ हम बनाते हैं बॉलीवुड सरताज अपने एक उस लिसनर को जिन्होंने दिया हो बिल्कुल सही जवाब। तो आज हमने कोशिश की पुणे की निकिता पारेकर को अपना बॉलीवुड सरताज बनाने की। कॉल की गई, निकिता आपका कॉल नहीं लग रहा था, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप बनिए हमारे आज की बॉलीवुड सरताज। इसी के साथ साथ बहुत सारे लिसनर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं और उनका नाम लेना तो बिल्कुल बनता है, लाजमी है। मोहम्मद फुरकान कान से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऋषि कटारिया पवन कटारिया पंजाब से, शालू दिल्ली से, हैरी सिद्धू बठिंडा से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, शुक्लाल कूच बेहर वेस्ट बंगाल से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मुश कुमार दिल्ली से सही जवाब, राजेश शर्मा खयाला से सही जवाब, इरशद अशरफी नागौर राजस्थान से सही जवाब, चितरंजन सक्सेना नोएडा से सही जवाब, विजय कुमार कामंत दिल्ली से सही जवाब दे रहे हैं। निकिता पारेकर आप हमारी बॉलीवुड सरताज बजे, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाइयां। सुमन शर्मा दिल्ली से, ईशा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से, पूजा एन कोमल दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से सही जवाब दे रहे हैं, दानिश कतौली से, मोहम्मद कासिम बिजनौर से, मोहम्मद इम्तियाज दिल्ली से, सलीम मलिक मेरठ से, तरुण कोहली मेरठ से, दिनेश दिल्ली से, बसंत तोमर मेरठ से और हरीश गौड़ मेरठ से बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और आज हमने पूछा था कि मैं वापस आऊँगा फिल्म 12 जून को रिलीज हो रही है, उनके डायरेक्टर कौन हैं, तो इम्तियाज अली हैं जो इस फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं और अब उनका बेबी, ये जो बेबी फिल्म है, क्योंकि हर डायरेक्टर के लिए उसका उसकी जो फिल्म होती है उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो एक बेबी की तरह होता है। और इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊँगा रिलीज़ हो रही है कब, 12 जून को सिनेमा हॉल्स में। इसी के साथ अब क्या कहा जाए, क्योंकि वक्त कुछ कहने की इजाज़त नहीं दे रहा है, कह रहा है कि टाटा बाय बाय करिए और फिर जी हाँ 12 बजे मिलेंगे। और इसके साथ ही मैं प्रियंका मामगन लेती हूँ, अगला प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का है, ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत एंड डांसिंग नंबर्स इस फिल्म इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि जल्द ही होगी आपसे मुलाकात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुँचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं। अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5

0: न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट

का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में। हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है। जी हाँ जनाब, हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है, अट्रैक्टिव दिखना चाहता है। वहीं जब हम किसी से पूछते हैं कि खूबसूरत कौन है, तो इसका जवाब हर इंसान के साथ बदलता जाता है। कहावत भी है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। हर इंसान और हर दौर के साथ खूबसूरती के पैमाने बदलते जाते हैं। वहीं देखा जाए तो पतली काया, चेहरा, बदन और दुबले पतले बने रहने का दौर हमेशा लोगों की चाहत रहता है, और हर इंसान खूबसूरत दिखना चाहता है कि वो पतला दिखे, चेहरा दिखे। दुबले पतले होने के साथ साथ वो अट्रैक्टिव लगता है, उसका ऐसा मानना है। लेकिन वहीं देखा जाए तो आजकल के सिनेरियो में, आजकल के वक्त में हर इंसान, अधिकतर इंसान मोटापे से परेशान है, ओबेसिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, और इस मोटापे और ओबेसिटी से छुटकारा पाने के लिए सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। लेकिन ये मोटापा है कि ज़िंदगी से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है, कहाँ पर हम मोटापे को, ओबेसिटी को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है, कहाँ पर हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कैसे हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है जिससे कि हम मोटापे से दूर होते हुए स्वास्थ्य को पा सकें, हेल्दी रह सकें। और आज इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए रेनबो हेल्पलाइन में हम टॉपिक लेकर आए हैं ओबेसिटी, मोटापा, द वेलनेस वेव ओबेसिटी। और हमारे साथ है हमारे आज के एक्सपर्ट रेखा पाल शाह, डाइटिशियन है आप और एम्स से संबंधित हैं, दिल्ली एम्स से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका।
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार। मोटापा, आप बहुत बिल्कुल सही पोस्चर में हैं, बिल्कुल चेहरा बदन है आपका, पतले हैं जितना आपको होना चाहिए, लेकिन अधिकतर आप जब देखते हैं, एम्स में भी आते होंगे कई सारे केसेस, या आप बाहर भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि आजकल मोटापे से बहुत सारे लोग परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक को ही समझना चाहेंगे कि ये मोटापा है क्या, और आसान शब्दों में मोटापे को कैसे समझा जा सकता है।
2: देखिए, अगर हम आसान शब्दों में एक मोटापे को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हमें हर इंसान की एक लंबाई के अकॉर्डिंगली उसका जो वज़न होना चाहिए, और हर इंसान की अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम उस बॉडी की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एक्युमुलेट इकट्ठा होने लगता है, और वो धीमे धीमे करके कुछ समय के बाद एक मोटावे के रूप में आपको दिखने लगता है। आपके कपड़े थोड़े से टाइट होने लगेंगे, फिर आपको फील होगा नहीं, मेरी जीन्स टाइट हो रही है, मेरे कपड़े हो रहे हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि अब आपको मोटापा हो गया है।
1: जी बिल्कुल। हाँ। जब वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तब हमारी नजर उस पर पड़ती है।
2: Exactly.
1: लेकिन इसकी शुरुआत पहले से ही हो चुकी,
2: इसकी शुरुआत पहले से हो चुकी होती है। हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चे पढ़ने में बिजी हैं, हम थोड़ा सा, हमारी थोड़ी सी इग्नोरेंस रहती है, हम ध्यान ही नहीं रख पाते हैं कि हमें कोई अलर्ट करने वाला नहीं होता है कि हाँ हमें मोटापा आ रहा है। वो हमारा, जब हमारे फ्रेंड सर्किल में या आपके आसपास वाले लोग टोकते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि हाँ अब आपको अलार्म सिचुएशन आ गई है, अब आपको अपने बॉडी पे ध्यान रखने की जरूरत है।
1: जी हाँ, आपकी लाइफ में भी ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मोटापे को समझें, ओबेसिटी से दूर रहें। लेकिन कैसे दूर रहें, यही सब जानने के लिए आप सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, क्योंकि आज का विषय है मोटापा, ओबेसिटी। आपके पास भी कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें, 9868107070, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप अपने क्वेश्चन लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं, 9868107070।

0: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम और आज हम विषय लेकर आए हैं ओबेसिटी। जी हाँ, मोटापे से अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। एक बार मोटापा जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो उसे जिंदगी से बाहर निकालने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि कई बार तो हम हताश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद ये मोटापा जो एक बार आ चुका है उसको हम जिंदगी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन हम कई सारी चीज़ों में, अपनी आदतों में, अपने खान पान में और अपनी दिनचर्या में बदलाव करके ओबेसिटी से, मोटापे से निजात पा सकते हैं। और आज हमारे साथ हैं डाइटिशियन रेखा पाल शाह और आज वो बहुत सारी खास बातें आपके साथ करने वाली हैं जिससे कि हम इस मोटापे को अपनी ज़िंदगी से दूर भगा सकें। जी रेखा जी, एक पहला मैसेज जो आया है वो अम्बाला से राधिका का आया है। राधिका कहती है कि उन्होंने प्रेगनेंसी के बाद बहुत वेट गेन कर लिया है और अब उनका बेटा 3.5 साल का है, लेकिन ये जो वेट गेन किया है वो वापस जा ही नहीं रहा है। उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया है लेकिन फिर भी मोटापा वहीं का वहीं है।
1: देखिए, आपने प्रेगनेंसी के टाइम में वेट गेन किया है, ठीक है, उस टाइम हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा वेट गेन हो रहा है। वो लाइफ का एक ऐसा मोमेंट होता है, सिर्फ हमें उसी मोमेंट में खुशी होती है जब

0: वेट बढ़ रहा होता है, बाकी टाइम में अगर हमारा वेट बढ़ रहा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक
1: जी
0: है।
1: जी बिल्कुल
0: उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए प्रेगनेंसी होने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि हम बिजी हो जाते हैं बच्चे के साथ, ये बहुत सारे आपके मेंटली और दूसरे तरह के बॉडी में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे, ठीक है, आप तो पहले तो अगर अब बच्चा आपका 3.5 साल का हो गया है, अगर बच्चा जैसे छोटा था उसी टाइम से आपको ये कोशिश में लग जाना चाहिए था, जैसे आपको बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाना चाहिए था, वो एक वेट रिडक्शन में बहुत हेल्प करता है। दूसरा, आपको जो एक्सरसाइज करनी चाहिए थी अपनी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके, आप किस तरह की एक्सरसाइज और खान पान में क्या क्या ध्यान रखना है, ताकि बच्चे को अगर ब्रेस्ट फूड की तरह जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो प्रॉपर मिलता रहे। तो बेसिकली अगर आप अच्छे से डाइट फॉलो करोगे अपनी डाइट में, अब 3.5 साल का बच्चा हो गया तो आई होप आपने अभी ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर दिया होगा, तो आप प्रॉपर अगर डाइट फॉलो करेंगे अपनी डाइट में, फाइबर इंटेक बढ़ाएंगे, फैट कम लेंगे, ठीक है, आप डबल टोन दूध जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली आपको फैट कंटेंट कम करना है, एक्सरसाइज करनी है और फाइबर इंटेक बढ़ाना है,
1: जी
0: इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें, और डिपेंड करते हैं आपकी कोई हेल्थ कंडीशन ना हो, कोई आपको को मॉर्बिड प्रॉब्लम डिजीज ना हो, ये भी डेफिनेटली डिपेंड करता है,
1: जी
0: क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद प्रेगनेंसी में काफी लोगों को गेस्टेशनल डायबिटीज या दूसरी तरह के हो जाते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: हाँ जी
0: हाँ, तो ये आपको प्रॉपर आपके रिपोर्ट्स देख के एक आपको सुपरविजन में एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनवाना पड़ेगा अपने किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके, उसके बाद ही आपका सही डायरेक्शन में। और जो आपने बात की है जिम जा रहे हो फिर भी कम नहीं हो रहा, देखिए जिम जाना इज नॉट अ सॉल्यूशन कि
1: अच्छा।
0: हम जिम चले गए और हमारा वेट सडनली डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है अगर आप जिम जा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में फिर भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। सिर्फ जिम जाना से नहीं आपका वेट कम होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको तो थोड़ी सी एक्सरसाइज के तौर पे आप जिम जा रहे हो,
1: बिल्कुल
0: अपने खाने में मॉडिफाई करिए, फैट कम लीजिए, जो भी प्रोटीन ले रहे हैं आप अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लीजिए, फाइबर इंटेक बढ़ाइए अपनी डाइट में, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें लेके आपकी हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर, हाँ, आपकी न्यूट्रिशनिस्ट जो भी अगर आप उनसे कंसल्ट लेके करके डाइट चार्ट बनवा सकते हो तो बिल्कुल वेट रिड्यूस होगा।
1: बिल्कुल, मनीष का मैसेज आया, वो कहते हैं कि क्या चावल और रोटी को कम कर दे खाने से तो मोटापे से बचा जा सकता है?
0: नहीं, ऐसा नहीं है, चावल है रोटी, ये ऐसा लोग सोचते कि चावल और रोटी कम करने से वजन कम होता है, किसी हद तक देखियो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे हम रोटी लेते हैं जनरली आजकल हम गेहूं की रोटी यूज करते हैं सारे लोग, हमें उसको मॉडिफाई करना है, हम उसमें बाजरा, जौ, रागी, ऐसे कुछ कुछ आटे, मल्टीग्रेन आटा जो हम कहते हैं, अब वो देखिए मार्केट से जो मल्टीग्रेन आटा आता है पता नहीं उसमें क्या क्या मिक्सचर है, बट आप नॉर्मल अगर गेहूं का आटा यूज करते हैं उसको मॉडिफाई करना है, अगर आप 3 भाग गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं तो 1 भाग बाजरा ले आए आप 1 महीने, फिर नेक्स्ट मंथ जौ ले आए, फिर रागी ले, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ आपको क्या बेसिकली रिफाइंड रिफाइंड फ्लोर अपनी डाइट से हटाना है, रिफाइंड जिसमें फाइबर चोकर जो बोलते हैं वो नहीं है उसको ऐड करना है, ठीक है, प्लस आप चावल की बात करते हैं, व्हाइट राइस ठीक है, अगर अब कोई होता है कि नहीं मुझे व्हाइट राइस ही चाहिए, सफ़ेद चावल ही चाहिए, उसकी जगह से हम ब्राउन राइस या फिर ब्लैक आजकल चावल आ गया वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें फाइबर होता है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छी होती है, और किसी को चावल ही लेना है सफ़ेद राइस तो हम उसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई इन द सेंस उसको हम उसमें वेजिटेबल्स का ऐड करनी है, ताकि राइस की क्वांटिटी कम हो जाएगी, वेजिटेबल्स के थ्रू फाइबर आपकी बॉडी में चला जाएगा और उसको जो क्रेविंग हो रही है या सेटिस्फेक्शन है वो भी मिल जाएगा। तो हमें बेसिकली अगर मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो ये बॉडी को प्यार से हमें वेट रिड्यूस करना है, ऐसा दुश्मन कितनी तरह बिहेव करना है कि लाइक आपने अपनी डाइट में से सारी चीजें हटाते गए तो आपको हर चीज की क्रेविंग ज्यादा होगी,
1: ज्यादा होती
0: हाँ।
1: है बिल्कुल, जो चीज
0: हाँ।
1: हम नहीं खा रहे होते हैं उसी को लगता है कि ये खाने का मन कर रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। राजेश कुमार चौहान जलंधर से लिखते हैं कि देरी से भोजन करने से क्या मोटापा बढ़ सकता है और क्या मोटापा डायबिटीज का भी कारण बन सकता है, और दूध की भी उन्होंने बात की है कि रात को दूध पीने से मोटापा बढ़ सकता है क्या?
0: नहीं, पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन लेती हूँ कि इन्होंने बोला है दूध पीने से मोटापा बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत गलत बात है, दूध पीने से मोटापा नहीं मिलता है, ये आपको चूज करना है आप किस तरह का दूध ले रहे हैं, ठीक है। आप फुल क्रीम दूध होता है, टोंड होता है, डबल टोंड होता है, वो डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप में आ रहे हैं, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वजन किस किस कैटेगरी में है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल है, सब कुछ है, तो दूध पीने से वजन बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दूध हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उसमें कैल्शियम होता है जो हमारी बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।

0: दूध आप लीजिए, बट आपका जो दूध का चयन होना चाहिए वो डबल टोन दूध या फैट फ्री दूध कहते हैं, जिसमें फैट नहीं होना चाहिए। बाकी प्रोटीन हमें दूध से मिलेगा, कैल्शियम दूध से मिलेगा और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हमें दूध से मिलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपका तो ये पहला ये हो गया दूध वाला। दूसरा आपने क्या पूछा था?
1: जी उन्होंने कहा था कि मोटापा डायबिटीज का कारण बन सकता है क्या?
0: बिल्कुल, मोटापा डायबिटीज का ही कारण है। आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपने बहुत सुना होगा, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये सारी चीजें हमारे मोटापे की वजह से हो रही है। बिकॉज हम अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन हमें करना है, डाइटरी मॉडिफिकेशन करने हैं, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वो हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मोटापा आता है। और मोटापा की वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आजकल बहुत कॉमन हो रही है। तो हमें डेफिनेटली अपने मोटापे को, अपने वजन को कंट्रोल करने की जरूरत है।
1: जी बिल्कुल। तीसरा उन्होंने कहा था कि अगर देर से भोजन करते हैं रात को तो क्या इससे भी मोटापा बढ़ता है और क्यों बढ़ता है?
0: बिल्कुल, देखिए मैं इसमें अब पुराने जमाने की जो बात कही गई हुई है मैं थोड़ा सा उसको लाना चाहूंगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। आजकल आप देख रहे होंगे ओबेसिटी बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है हमारे देश में, और आप देखिए हर कोई, हर दूसरा बंदा ओबेसिटी से परेशान है। ठीक है, आजकल बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत दिखी जा रही है। बिकॉज पहले के टाइम हम जल्दी उठते थे, जल्दी सोते थे। आजकल क्या है, हर कोई बिजी है लाइफ में। आजकल क्या नाम है, हम महिलाएं भी कामकाजी हो गई हैं, तो थोड़ा सा हमें भी अपने काम को निपटाने में और इसमें लगता है। तो बेसिकली मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी, और ये फैक्ट है कि रात में आप देर से खाते हो, ठीक है, उससे मोटापा बढ़ता है। तो आपको ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर की मैं बात करती हूँ, तो देखिए ब्रेकफास्ट आपको थोड़ा सा हैवी चाहिए, ठीक है, हैवी जस्ट लाइक अ किंग, राजा महाराजा की तरह खाना,
1: ओके,
0: बिल्कुल हेल्दी। आपको अपने दिन की स्टार्ट जो शुरुआत करनी है बहुत अच्छी करनी है। जो लंच होना चाहिए दैट शुड बी अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, और डिनर होना चाहिए जो एकदम गरीब इंसान की तरह, जिसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता उसकी तरह हल्का फुल्का होना चाहिए उस। लेकिन आप देखो आजकल हमारा जस्ट अपोजिट जा रहा है, ठीक है, ब्रेकफास्ट हम भागते हैं ऑफिस के लिए, टाइम नहीं है, लंच भी ऑफिस में कुछ मिला मिला, नहीं तो कोई किसी का कुछ पार्टी है या कुछ भी, या स्नैक्स ले लिया कुछ नहीं ला पाए,
1: फिर तो ले लिया,
0: फिर डार में रात में हम वी आर जस्ट लाइक अ किंग, हम एकदम राजा की तरह खाते हैं, उसमें रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ होता है। दैट इज द रीजन कि ओबेसिटी बहुत कम हो रहा है। आई नो इट्स डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हाँ हम अगर प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं।
1: मैनेज किया जा सकता है, हर चीज़ को मैनेज किया जा सकता है, और अपने आप को टाइम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि बस हमारे, पहले तो हमें पता नहीं चलता कि मोटापा कैसे धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है। जब हम मोटे हो जाते हैं तो उसके बाद चाहते हैं कि बहुत जल्दी से हम इस वेट को रिड्यूस कर दें, जिंदगी से भगा दें,
0: और इवन हम ये कोशिश करते हैं कि बस हम आज जिम गए या आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की
1: शुरू,
0: और फिर हमारे 10 दिन में वी शुड, हमें एकदम स्लिम एंड ट्रिम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं पॉसिबल है, आपका वेट गेन होने में भी टाइम लगा है और वेट रिडक्शन में भी टाइम लगेगा।
1: जी बिल्कुल। पैंथर तोमर दिल्ली से लिखते हैं कि क्या मोटापा हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी हो सकता है, और कई लोग मोटापे की सर्जरी करा रहे हैं, ये कितनी सही है और कितनी गलत है?
0: देखिए मोटापा बिल्कुल हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से हो सकता है। जैसे मोस्टली हमने फीमेल्स में देखा है पीसीओडी होती है, उनके पीरियड्स एबनॉर्मल होते हैं, उसकी वजह से भी थायराइड प्रॉब्लम्स हैं कितने लोगों को, ये बिल्कुल फैक्ट है कि उसकी वजह से हो सकता है, बट उसको हम प्रॉपर मेडिसिन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से प्लस डाइट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आप सर्जरी की बात कर रहे हैं आजकल मोटापे के लिए कर रहे हैं, हाँ सर्जरी हो रही है, बट उस सर्जरी के भी बाद में भी आपको अपनी डाइट में कंट्रोल करने की जरूरत है। और सर्जरी के सक्सेसफुल रेट हैं, बट वो प्रॉपर आपकी एडवाइस न्यूट्रिशनिस्ट होंगे, आपकी डॉक्टर्स होंगे, प्रॉपर आपको एक निगरानी में ही सर्जरी होगी
1: जी।
0: तो ये पूरी टीम है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी का बीएमआई कितना है, हर कोई सर्जरी नहीं करा सकता, बीएमआई के ऊपर डिपेंड करता है कि 35 के अबव होगी बीएमआई तभी होगी सर्जरी। दिस अ टीम बेसिकली, पहले तो हम डाइट से रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वी आर अ टीम, हम उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ किसकी सर्जरी पॉसिबल है किसकी नहीं है।
1: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है ऋतु का, दो मैसेज मैं एक साथ लेना चाहूंगी, दोनों ही गर्ल्स हैं, और प्रेगनेंसी के बाद के जो वेट गेन किया जाता है और उससे पहले प्री एंड पोस्ट, उसके बारे में जानना चाहती हैं। एक तो आया है फरहाना का मैसेज आया, वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी में कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उन्होंने अपनी डिलीवरी की हुई अभी उनकी, और वो कहती हैं कि उनका वजन

0: तो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ था और उनका जो बेबी हुआ उसका वज़न बहुत कम था, तो डॉक्टर ने एक बात उनसे कही कि आपने वो वाला खाना खाया जिससे आपका वज़न बढ़ा लेकिन वो खाना बच्चे को नहीं लगा। तो वो कहती हैं वो बात इन्हें समझ नहीं आई। एक तो ये वो बात समझना चाहती है, ये बात समझने के बाद मैं दूसरा मैसेज फिर नेहा का है उस तरफ आगे बढ़ती।
1: देखिए डॉक्टर ने उनको बोला आपने वो खाना लिया जो आपको लगा बच्चे को नहीं लगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब ऐसे बेसिकली देखिए जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं एक्स वाई जेड कोई भी लेडी हमें ना सबसे पहले देखिए हमारा ऑलरेडी अपना बॉडी का एक वेट होता है और हमारे अंदर जो एक बेबी ग्रो कर रहा होता है उसको बेसिकली कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो डाइनोटिसनेस को पता है। अब जब भी प्रेग्नेंट होते हैं 3 trimester होते हैं, 1st 3 months, next 3 months और 9 महीने के, तो आपको हर trimester पे जाके जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी होती है उसी टाइम अगर आपको कंसल्ट किया, आपने मुझे नहीं पता आपने किसी से कंसल्ट किया था कि नहीं किया था, अगर आपने उस टाइम किसी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किया होगा तो डेफिनेटली आपने उसको आपको उस टाइम हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए थी, लो फैट डाइट लेनी चाहिए थी, प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए थी, कैलोरीज होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फैट लेना चाहिए था, वो प्रॉपर आपके हाइट वेट के अकॉर्डिंगली प्लान करके देते कि जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है उसके अलावा जो बेबी के लिए जो बेसिकली मेन न्यूट्रिएंट्स जो बेबी के लिए रिक्वायरमेंट है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मे बी आपने उस टाइम कुछ गलतियां की हुई हो।
0: हाँ, उनका मैसेज आया है, उन्होंने कहा उन्होंने घी मक्खन ये सब चीजें बहुत ज्यादा खाई।
1: ये थोड़ा सा मिथ भी है कि लास्ट के जो डिलीवरी के लास्ट के 2 months तक या 1 महीने तक दूध में वो भी आप जो दूध यूज कर रहे हो फुल क्रीम दूध यूज करते हो और उसमें घी डाल के खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये ऐसा मिथ है बट ऐसा होता नहीं है। वो जो फैट है जो आप इस टाइम ले रहे हो वो पूरा फैट आपकी बॉडी में ही लगता है, बेबी में नहीं जाता है और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक मिथ है और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, 1 gram फैट से हमें 9 kilocalories मिलती है।
0: 9 kilocalories
1: आप ये सोचिए कि कितना एक्स्ट्रा है। तो आपने जो भी लिया वो आपकी बॉडी को मिला, यही एक रीजन है कि आपका मतलब आपने उसके बाद वर्कआउट नहीं कर पाया क्योंकि आप उस टाइम उस स्टेज में नहीं होते, यो आपको सिर्फ अपने बेबी दिखता है, आपको सिर्फ बच्चा ही दिखता है।
0: हाँ जी,
1: उस टाइम हम फीमेल्स अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचती हैं और जब हम सोचना स्टार्ट करते हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ओबेसिटी के बारे में बताया तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है। तो डेफिनेटली अभी भी आपको हारने की जरूरत नहीं है, आप ये मत सोचिए कि वेट कभी कम नहीं होगा। आप प्रॉपर मॉर्निंग ब्रिस्क वॉक स्टार्ट करिए, एक अच्छा सा डाइट प्लान बनवाइए, ठीक है। अभी किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है और वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंगली हम कैलोरीज डिसाइड करेंगे आपको कितनी कैलोरीज देनी है। जनरल टिप्स वो मैं आपको दे सकती हूँ बट वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेंगे।
0: नेहा का भी एक ऐसा ही मैसेज आया है, नेहा सिंह हैं ये और ये लिखती हैं कि हाउ टू रिड्यूस वेट आफ्टर डिलीवरी और पोस्ट प्रेगनेंसी, किस तरीके से वेट को रिड्यूस किया जाए।
1: मैं सिर्फ इसमें
0: ये डाइट चार्ट के बारे में भी कह रही हैं कि डाइट चार्ट कुछ आप हमें बता दीजिए जिसको हम फॉलो करें।
1: आप बेसिकली देखिए हमारे किचन में ही सब कुछ है, ठीक है। हमें कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करनी है अपने, हमें पहले किचन में से रिफाइंड फ्लोर जो हम कहते हैं उसे हटाना है। रिफाइंड फ्लोर की बात करते हैं तो मैदा या मैदा से बनी हुई चीजें हटा देनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें जहाँ हम आटा यूज़ करते हैं, मैंने अभी बताया उसमें मिलेट्स ऐड करने हैं, बाजरा, जौ, रागी, इस तरह से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आपको ऑयल का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, ऑयल जो तेल का कॉम्बिनेशन कहते हैं। जनरली हम ऑयल जो यूज़ करते हैं सरसों का तेल, राइस ब्रान, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है।
0: एक आप यहाँ पे ऑयल का कॉम्बिनेशन कह रहे हैं, इसका मतलब क्या रहता है?
1: ऑयल का कॉम्बिनेशन होता है कि देखिए हमारी बॉडी को फैट की जरूरत होती है, ठीक है, बट जो हम फैट ले रहे हैं उसमें हमें अच्छी क्वालिटी का फैट लेना है, इट मीन असेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए 3:1 में होना चाहिए। तो जनरली हम मैंने अपने पेशेंट्स के में भी देखा है कि हम जो काउंसलिंग करते हैं मोस्टली लोग होते हैं सरसों का तेल यूज करते हैं, देसी घी यूज कर रहे हैं। तो जनरली अगर आप ऑयल का चयन करते हैं तो आपको अपने घर में आप जैसे आपने 2 तरह के ऑयल यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आपने सरसों का तेल यूज किया है तो रात में आप राइस ब्रांड यूज कर सकते हैं और इसको हर महीने चेंज करते रहिए। जैसे फ्रेश कर सोयाबीन कर लीजिए और फिर ऑलिव ऑयल है, हर महीने चेंज करते रहिए, उसी तरह से एसेंशियल फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। थर्ड थिंग इज दैट आपको ये ध्यान रखना है आप जो भी मतलब घर में जो दूध आ रहा है, ठीक है, मिल्क आ रहा है, कोशिश करिए वो फैट फ्री दूध यूज करिए, फैट फ्री जिसमें फैट कम हो, बिकॉज आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैट इतना एक्यूमुलेट हो चुका है कि आपको एक्स्ट्रा फैट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है।

0: आपको जो चाहिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट बॉडी के जो अदर न्यूट्रिएंट्स की चाहिए वो मिल जाएगी अगर आप बैलेंस डाइट लोगे, हेल्दी बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट लेना है विद हाई फाइबर।
1: जी बिल्कुल, एक इम्तियाज का मैसेज मैं लेना चाहूँगी, उसके बाद हम म्यूजिकल ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद इम्तियाज दिल्ली से लिखते हैं कि उनकी उम्र 40 है लेकिन वेट जो है वो 90 के आसपास है और जो उनकी हाइट है वो 5'7" है। उनका दर्जी का काम है, वो एम्ब्रॉयड्री करते हैं और अधिकतर समय उन्हें बैठ के ही काम करना पड़ता है, तो ऐसे में वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते और बैठे रहने से उनका मोटापा बढ़ रहा है, तो वो जानना चाहते हैं कि इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं।
0: देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँ, मैं समझ सकते हो आपकी जो प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है, उनकी सिटिंग जॉब है, वो नहीं कर पाते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, आप जब अपने दिन की शुरुआत करते हैं लाइक स्टार्टिंग में दिन में जब आप करते हैं तो आप सुबह 6-7 बजे से तो दर्ज आप सिलाई नहीं करने लगते होंगे, तो आप उस टाइम थोड़ा सा कोशिश करिए अपने लिए टाइम निकालिए, बिकॉज आपकी अगर बॉडी नहीं साथ देगी तो आप अपना जो आपका काम है उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप आधे आधे घंटे वॉक करिए या उसका आपका टारगेट होना चाहिए 45 मिनट, धीमे धीमे स्टार्ट करिए। प्लस बैठे बैठे आप ना आपका आप ये सोचिए आपका मुंह चलते रहना चाहिए, लाइक अभी आपने सलाद ले लिया एक प्लेट, ठीक है, उसके बाद आप छाछ पी सकते हैं, ठीक है, उसके बाद एक लापसी करके एक होता है ड्रिंक, राजस्थान में काफी फेमस है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, उसमें जौ का भी बनता है, उसमें दलिया का भी बनता है, वो आप पियेंगे। एक्चुअली इन सारी चीजों में बीच बीच में आप भुने चने ले सकते हैं,
1: उसमें बिल्कुल फैट नहीं होता, ये सारी
0: उसमें भुने चने छिलके वाले लेने हैं, उसमें फाइबर होगा, तो क्या होगा आपकी बॉडी ना, आप जब ये हेल्दी आइटम खाओगे तो आपकी बॉडी ना आपके बैठे बैठे भी वर्कआउट अंदर चलता रहेगा, उसको डाइजेस्ट करने में ना बॉडी को काम करना पड़ेगा, आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगे। जर्नी मैंने देखा है, मतलब मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ कि लोग चाय ले लेते हैं उसमें बिस्किट डिप कर लिया, भुजिया ले लिया छोटे वाले पैकेट, प्लीज ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं, वो आपके वजन बढ़ाने में मदद करेंगी, तो ये सारी चीजें नहीं लेनी है। जो मैंने आपको बताया आप वॉक करिए, रिफाइंड फ्लोर बिस्किट नमकीन भुजिया, और बहुत खाने का दिल है तो आप मुरमुरा भी बना के, जैसे घर में हेल्दी मुरमुरा बना के रख सकते हैं, उसमें मूंगफली भुना चना, हेल्दी सीड्स भी आप कैरी कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा मार्केट में हेल्दी सीड्स के बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप उसको कैरी करिए, उसको खाइए, इस तरह से आप वजन कम कर सकते हैं।
1: जी हाँ जनाब, बात हो रही है वजन कम करने की, मोटापे की, ओबेसिटी की, ये एक ऐसी कहें तो बीमारी का ही रूप ले चुकी है और कहीं ना कहीं अधिकतर हर एज के इंसान जो है, उम्र के बच्चा है, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक भी ओबेसिटी से कहीं ना कहीं परेशान दिखाई देते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप करें 9868107070 पर।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो, रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की। हमारे साथ हैं रेखा पॉल शाह, डाइटिशियन एम्स दिल्ली से, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास जो हमें अपनी बातें तो नहीं करने देंगे, लेकिन हम ज़रूर आपके क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो मैसेज आया है वो दिल्ली से आया है, वो कहते हैं कि क्या नींद के ना आने से भी मोटापा बढ़ता है?
4: देखिए, नींद ना आना मोटापा से बहुत ज़्यादा तो नहीं कोरिलेट है। बेसिकली आप देखिए कि एक नॉर्मल हम एग्जांपल देते हैं कि कल आपके बच्चे का कोई फंक्शन है या कल एग्ज़ाम है, आप ओबेसिटी नहीं है तो आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। बट हाँ, अगर आप इसको, अगर आप नींद, प्रॉपर नींद लेना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा आप योगा करके, एक्सरसाइज करके, वॉक करके और हेल्दी ईटिंग हैबिट, जैसे उस आप रात में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाएं, तला भुना वाला खाना नहीं खाएं, तो थोड़ी सी हेल्प हो सकती है आपको नींद आने में, ठीक है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, जब ऐसा कुछ हो उस दिन आप डिनर में थोड़ा हल्का खाना खाएं, डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा, आप थोड़ा सा खाना खाने के बाद कभी भी तुरंत बेड पे नहीं जाना है, आपको 15 से 20 मिनट नॉर्मल वॉक करनी है, ये ब्रिस्क वॉक नहीं।

0: है, फ्रेश एयर में कोशिश करिए। अगर नहीं है तो आप अपने घर में भी थोड़ा सा टहल सकते हैं, ये ऐसी सिचुएशन है।
1: जी
0: बट हाँ,
1: बिल्कुल
0: आप अपनी डाइट बहुत ज़्यादा ऑयली वाली नहीं रखिए, जिसमें पराठा हो गया, आप ऑयली चीज़ें बेसिकली अवॉइड करिए नाइट
1: जी,
0: में।
1: राइट में। हितेंद्र दास आसाम से लिखते हैं कि बहुत बहुत वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे
0: थैंक
1: हैं।
0: यू,
1: और वो कह
0: बहुत
1: रहे हैं
0: बहुत
1: कि
0: धन्यवाद
1: जी, वो
0: आपका।
1: कह रहे हैं कि आप इतने अच्छे से टॉपिक को कैरी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो भी बात कही जा रही है वो समझ आ रही है।
0: थैंक यू,
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र दास जी आपका। आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, और जो बातें कही जा रही हैं उनको समझते हुए आगे भी बढ़ रहे
0: अब मुझे
1: हैं।
0: भी मोटिवेशन मिल रहा है।
1: जी बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश से एक मैसेज आया है, ये है नैनी तारिंग, वो लिखते हैं कि नमस्कार, सबसे पहले तो FM रेनबो और आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बधाइयों का। साथ ही वो आज के टॉपिक से रिलेटेड जो उन्होंने बात की है, वो कह रही हैं कि आज ओबेसिटी पर डिस्कशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। आयरोनिकली जहाँ बहुत से लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, ये जो नैनी है वो वेट गेन करना चाहती है, और उसका उन्होंने रीज़न बताया है। वो कहती हैं कि वो अरुणाचल प्रदेश से है और अरुणाचल में जो खाना खाया जाता है वो बॉयल्ड फूड खाया जाता है ज़्यादातर, तो वो कहती हैं कि इस वजह से हम लोग पतले रहते हैं और दुबले पतले होते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि क्या अगर अलग अलग रीज़न में जो फूड हैबिट्स होती हैं उनकी वजह से भी लोगों का मोटापा बढ़ता है, जैसे कोई अगर किसी और क्षेत्र में रहता है या कोई पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, पंजाब में है, जैसे पंजाब में पूरी छोले भटूरे परांठे बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इस वजह से क्या ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ ज़्यादा
0: नहीं,
1: मोटापा
0: जैसे
1: हो?
0: कि आपने बताया आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ बॉइल्ड फूड खाया जाता है। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ कि लाइक आप लोग बॉइल्ड चिकन लेते हैं या फिश लेते हैं, और देखिए क्षेत्र के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है। अब दिल्ली में या बाकी किसी पंजाब या दूसरे क्षेत्रों में हम बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला, उसमें मसाले डाल के बिल्कुल एकदम ऑयल वाला अच्छा वाला लेते हैं। तो देखिए, आपने अगर बॉइल्ड चिकन लिया, आपको लीन प्रोटीन मिला, मतलब सिर्फ आपने क्वालिटी प्रोटीन लिया। हमने यहाँ प्रोटीन तो लिया, साथ में एक्स्ट्रा कैलोरीज भी ली, क्योंकि ऑयल से हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल गई। शायद उस कैलोरीज की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें टेस्ट चाहिए।
1: बिल्कुल
0: आपका टेस्ट वैसे ही बचपन से डेवलप हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको। और मैं तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं तो लोगों को कहती हूँ आपको बॉयल या रोस्टेड फूड लेना है वेट रिडक्शन के लिए। और ऐसा आपको लग रहा है कि आपका वेट कम है, मे बी आपका हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट परफेक्ट हो।
1: हाँ जी
0: हाँ, ये अभी आपकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली वो इवेलुएट करना पड़ेगा। और अच्छा लगा कि चलिए आप वेट गेन करना चाह रही हैं, मे बी आपका वेट, आपकी एज कितनी,
1: जी उन्होंने
0: एज
1: एज
0: नहीं बताई
1: हाँ
0: आपने,
1: जी नहीं
0: तो
1: लिखी
0: उसके
1: है।
0: लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए आप, वो ऑटोमेटिकली एज के साथ आपका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है। बट हाँ, कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है अगर आप वेट गेन करना चाहते हो।
1: जी बिल्कुल। सरिता का मैसेज आया है दिल्ली से, वो कहती हैं कि वो खाना कम खाती हैं लेकिन उनका वजन बढ़ रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है?
0: देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब मैं हवा भी मतलब लेती हूँ तो
1: जी
0: मेरा
1: पानी
0: वेट
1: पीते हैं तो वो लग
0: पानी भी
1: जाता
0: पीते
1: है।
0: हैं तो वेट बढ़ जाता है दूसरे का। देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए, एक तो रीज़न ये कि आपको जब भी वेट रिडक्शन करना हो, कभी भी प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खाना कम खाना मत करिए। ये सोचना कि डाइटिंग या हम खाना कम खाएंगे तो हमारा वेट रिड्यूस होगा, बिल्कुल गलत है। आपको मैं एक बस छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे हमारा मोबाइल होता है, ठीक है, आजकल मोबाइल एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को भी पता है, इसलिए मैं सिर्फ मोबाइल का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, बट
1: जी
0: इसके
1: जी
0: बिना हमारा
1: प्लीज।
0: काम भी नहीं चलता, ठीक है। तो जैसे हमारे मोबाइल में बैटरी कम होती है तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि आपका मोबाइल पूछता है कि आप बैटरी सेवर मोड में जाना चाहते हो, तो आपकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी मोबाइल की, जो एप्स हैं कुछ फालतू वाले एप्स वो चल उसको स्टॉप कर देगा एंड ऑल। वैसे ही हमारी बॉडी है, जो हम खाना खाना कम कर देते हैं तो हमारी बॉडी ना सर्वाइवल स्टेज में चली जाती है। वो सोचती है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, अब हमें खाना कम मिल रहा है, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, कम से कम एनर्जी यूज़ करती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है,
1: जी
0: और हम जो भी खाते हैं बॉडी उसे एज अ फैट के रूप में स्टोर करने लगती है।
1: ओके
0: ये रीज़न है, हमें लगता है हम तो खाना खा नहीं रहे, लेकिन अपने आप क्या क्या मेटाबॉलिज्म आपने कम कर दिया, और क्या नाम है, आपने जो भी खा रहे हो फैट के रूप में स्टोर हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपका वेट बढ़ेगा।
1: जी
0: आपको सही रास्ता चुनना है।

0: कि गलत रास्ता।
1: जी बिल्कुल, अमित का मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनमें पेट का जो हिस्सा है
0: हाँ
1: वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट है, और साथ ही वो कहते हैं कि क्या हड्डियों बोन्स की वजह से भी वेट ज़्यादा हो जाता है।
0: नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो पहले मैं आपको दूसरा वाला जवाब देती हूँ, हड्डियों की वजह से वेट ज्यादा होता है। देखिए, बॉडी में जो हर किसी की बॉडी में जो बोन का वेट होता है, जनरली लोग कहते हैं बोन वेट ज्यादा है, ये
1: हाँ
0: सिर्फ अपने को सेटिस्फाई करने के
1: दिल को
0: लिए कहते हैं,
1: समझाने के
0: कि
1: लिए ख्याल
0: समझाने के लिए कहते हैं कि नहीं, मैं ओवरवेट नहीं हूँ, मेरा सिर्फ बोन वेट ज़्यादा। 15 से 16% ही आपका वेट होता है हड्डियों का।
1: जी
0: उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा आपकी कैलोरीज ले रहे हो, फैट ले रहे हो, वो एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी वजह से आपका वेट ज़्यादा हो रहा है। ये जो कहते हैं गलत है,
1: जी
0: ठीक है। और पहला क्या क्वेश्चन था
1: जी
0: आपका?
1: उनका बॉडी स्ट्रक्चर
0: हाँ
1: जो है
0: हाँ
1: उसमें पेट में उनका बहुत
0: हाँ
1: ज्यादा फैट
0: ठीक
1: है, वो
0: है।
1: कम नहीं हो रहा
0: हाँ,
1: है।
0: एक्चुअली क्या होता है, देखिए हमारा एप्पल एंड पियर शेप, दो तरह की ओबेसिटी देखी जाती है। जो जब हम एक्स्ट्रा फूड लेते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे, और वो हमारा बर्न आउट नहीं हो रहा है, तो जो जेंट्स हैं बेसिकली मेल्स में पियर शेप, सॉरी एप्पल शेप बनता है, ठीक है। और जो फीमेल्स में एप्पल एंड पियर दोनों शेप देखा गया है।
1: जी
0: तो जो मेल्स में देखा गया, आपने जो बोला पेट पे एक्यूमुलेट हो रहा है उसको, इट मीन्स दिस इज अ ओबेसिटी, आपको वेट रिडक्शन की जरूरत है, आपको टमी से रिलेटेड एक्सरसाइज करनी है जो बैली फैट को कम करे, डाइट्री मॉडिफिकेशन करना है, एक्सरसाइज करनी है, और ये छोटी छोटी बातों को ध्यान करके आप उसे कम कर सकते हैं। बट ये नहीं है कि बिल्कुल कम नहीं होगा। अगर आप डाइट्री मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने कुछ हेल्दी टिप्स दी हुई हैं आपको, वो फॉलो करिए, प्रॉपर अपनी हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली एक डाइट चार्ट बनवाइए कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी है। अब देखिए हर किसी की हाइट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट अलग होती है, किसी को 1200 किलो कैलोरीज की, किसी को 1400, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और कोई कोई कोमॉर्बिड डिजीज तो नहीं है, वो भी डेफिनेटली मैटर करता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल। अक्सर आजकल जो देखा जा रहा है सोशल मीडिया में, जितनी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, कई बार लोग क्या करते हैं कि आप बार बार कह रहे हैं कि डाइटिशियन से, अपनी डाइटिशियन से एक डाइट चार्ट बनवाइए। इवन आप भी जो सलाह दे रहे हैं वो एक मॉडिफाई वे में आगे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान का एक बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग
0: बिल्कुल
1: होता है। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो वहाँ इतने सारे डाइट चार्ट्स रहते हैं, इतनी सारी डाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है, क्या उन्हें हमें ग्रैब करना चाहिए, क्या हमें उनको फॉलो करते हुए अपनी डाइट में चेंजेस करने चाहिए?
0: देखिए, जनरल हेल्दी टिप्स की बात करती हूँ तो ठीक है, ठीक है। लाइक आपको वाटर इंटेक अच्छा रखना है, अपना सैलड इंटेक अच्छा करना है, रिफाइंड फ्लोर जो है उसको रिप्लेस करने हैं, दिस इज अ हेल्दी टिप्स, दैट इज ओके। लेकिन आजकल देखिए आप, आजकल जो टीनेज बच्चे हैं या फिर आप और भी केसेस देख लिए, चाइल्डहुड ओबेसिटी, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं। तो विदाउट एडवाइस, विदाउट एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट एडवाइस के, मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आपको कुछ भी फॉलो करना चाहिए,
1: नहीं करना
0: बिल्कुल
1: चाहिए,
0: नहीं करना चाहिए।
1: डाइटिशियन से जरूर सलाह
0: हाँ
1: लेनी
0: बिल्कुल,
1: चाहिए।
0: हेल्दी टिप्स लेने में वो तो आप देखिए, आप पार्क में जाएंगे तो आपको 2-3 लोग, तो इवन मेरे को ही, मैं अपनी सोसाइटी में जाती हूँ, मेरे किसी को पता नहीं कि आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट, तो मुझे ही 3-4 हेल्दी टिप्स मिल जाती है।
1: हाँ
0: बट
1: जी,
0: वो कितनी ट्रस्ट वर्दी है
1: हाँ ये भी
0: ये
1: बहुत
0: डिपेंड
1: जरूरी
0: करता है।
1: है।
0: कितने लोग कहते हैं कि रात में फ्रूट्स नहीं खाना है, सैलेड नहीं खाना है, बट देर इज नो साइंटिफिक रीजन। हम तो कहते हैं आपको रात में आप फ्रूट्स भी खाइए, कर्ड भी खाइए। कितने लोग कहते हैं रात में दही खाने से, योगर्ट लेने से आपको जुकाम हो जाएगा,
1: जी बिल्कुल,
0: जी, बट ये ऐसा नहीं है। बल्कि आपको इसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक, गट फ्रेंडली बैक्टीरिया जो कहते हैं, वो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और आप देख रहे हैं अभी जो मौसम चल रहा है इसके अकॉर्डिंगली, तो अगर हमें किसी को दूध सूट नहीं करता है, लोग कहते हैं एसिडिटी हो रही है,
1: जी
0: तो आप दूध को रिप्लेस करके आपकी जितनी क्वांटिटी रिकमेंडेड है उसको दही लस्सी छाछ के फॉर्म में ले सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। आज मैसेज इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि कहीं पर भी मुझे मौका नहीं मिल रहा है कि मैं म्यूज़िकल ब्रेक लूँ या फिर एड ब्रेक लूँ, प्रोमोस ब्रेक लूँ, लेकिन अब मुझे लेना होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर बात करेंगे ओबेसिटी की, मोटापे की, कैसे आप इसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकते हैं।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक आकाशवाणी रेनबो, आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन। हमारे साथ हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर डाइटिशियन रेखा पॉल शॉ। आप एम्स में डाइटिशियन के तौर पर कार्यरत हैं और आपके कई सारे सवाल हैं जो एक्सपर्ट तक पहुंच रहे हैं और आप उनके आंसर्स पा रहे हैं। हमारे 9868107070 व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमारे तक अपने सवाल पहुँचा रहे हैं। और एक सवाल आया है, वो कहते हैं कि वो जिम जाते हैं, एक तो प्रोटीन पाउडर के बारे में वो जानना चाहते हैं कितना हेल्दी है और इससे कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, साथ ही वो कहते हैं कि वेट लॉस सप्लीमेंट्स भी आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में आ रहे हैं, तो इनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए।
8: देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप जिम जा रहे हैं या फिर कुछ वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट पाउडर यूज कर रहे हैं तो कितना ट्रस्टवर्दी है पहले तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है। आजकल आप किसी भी जिम में चले जाइए, आपको सप्लीमेंट पाउडर रिकमेंडेशन जिम इंस्ट्रक्टर दे देगा। क्या वो एक क्वालिफाइड है आपको कोई भी सप्लीमेंट पाउडर रिकमेंड करने के लिए? आप कुछ भी खा रहे हैं, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या स्टेरॉइड्स हैं, उसके के ऊपर क्या साइंटिफिक कोई स्टडी हुई है नहीं है, तो इससे बेहतर है, मैं तो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप नेचुरल चीज़ों पर जाओ, जो नेचुरल चीज़ें हैं नेचुरल तरीके से हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। और वो सप्लीमेंट पाउडर में भी आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, अल्टीमेटली वो प्रोटीन आपको अपने आपको लेना है अपनी बॉडी में, आप उस प्रोटीन को ना लेके नेचुरल प्रोटीन ले लीजिए अपनी डाइट में, लाइक सोयाबीन की बड़ियाँ प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, अंडा है और भी दूसरी चीज़ें हैं प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं, हाँ ठीक है, उसको यूज़ करिए बिकॉज उसमें स्टेरॉइड्स हैं और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं और आपके ब्लड पैरामीटर्स उस जिम इंस्ट्रक्टर को नहीं पता है, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं पता है, तो यू शुड गो ऑन द नेचुरल थिंग्स।
7: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है, ये है सरस्वती का, वो लिखती हैं कि मोटापे से घुटनों का दर्द क्या हो सकता है, मोटापा इसका कारण हो
8: बिल्कुल
7: सकता है?
8: जैसे जैसे आपका मोटापा बढ़ता है, देखिए हमारा बॉडी का पूरा वजन घुटनों पे ही पड़ता है, तो बिल्कुल आपका वजन, आप जब भी अगर मोटापा हो रहा है आप किसी क्या नाम है ऑर्थो को दिखाएंगे डॉक्टर को, तो सबसे पहले आपको वजन कम करने के लिए ही बोलेगा
7: जी।
8: और डेफिनेटली आप इसको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, किसी आपका पूरा वजन घुटनों पे ऊपर है, आप मोटे हो गए तो उस पर ओवरलोड होगा ही, तो बिल्कुल आपका वजन की वजह से घुटनों में दर्द हो सकता है।
7: जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया, वो कहती हैं कि उनका बेटा जब उस 1.5 साल का है, जब वो पैदा हुआ था वो उसी टाइम से उसका वेट ज़्यादा था लेकिन अभी भी उसका वेट बढ़ता ही जा रहा है, इतने छोटे बच्चे को ना डाइटिंग करवा मतलब
8: बिल्कुल
7: कुछ नहीं करवा सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए भी नहीं कह सकते हैं, उसके डाइट प्लान किस तरीके से करें कि वो हेल्दी भी रहे और उसका वेट भी कम होता रहे?
8: देखिए उसके लिए तो आपको सही बताऊं कि अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए पूरा हमें देखना पड़ेगा, आप

0: बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या दे रहा हूँ। आजकल मार्केट में बहुत सारे पाउडर अवेलेबल हैं, रेडी टू ईट। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आपको, अब मुझे नहीं पता आप उसको घर का बना हुआ अच्छी चीज दे रहे हैं या मार्केट से जो सप्लीमेंट्स आजकल बच्चों के लिए अवेलेबल हैं उसको दे रहे हैं, वो भी एक रीजन होता है। उसके लिए मुझे आपसे पूरा पर्सनल बात करके ही मैं बता पाऊंगी उसका रीजन क्या है। बट हाँ, आप कोशिश ये करिए, अगर आपके आसपास या कहीं पे कोई भी है तो आप एक अच्छे से बच्चे को कैसे आहार की जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग आप नेचुरल घर की बनी चीजों को, जैसे रागी, मैं बस दो तीन चीजें बोलूंगी, जैसे आप रागी दे सकते हैं बच्चे को। अब डेढ़ साल का हो गया है, अब डेढ़ साल का बच्चा सब कुछ खाने लायक हो जाता है, आप अपने साथ उसको बैठ के खिला सकते हैं। आप जैसे उसको जो नॉर्मल आप खाना खा रहे हैं वो दीजिए, लेकिन फिर भी फ्रूट्स दीजिए उसको बच्चे को, सूप बना के दे सकते हैं, रागी को दे सकते हैं किसी भी फॉर्म में, वो आप देख लीजिए कैसे देना है, डिपेंड करता है क्योंकि डेढ़ साल का बच्चा है।
1: जी बिल्कुल। आजकल क्या होता है कि मम्मी लोग बिस्किट खा रही होती हैं या फिर पिज्जा खा रही होती है, वही पीस वो बच्चे को भी पकड़ा देती है।
0: देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, आजकल ओबेसिटी का बहुत बड़ा रीजन है, हम ना जंक फूड्स की तरफ तो ज्यादा ही हो गए हैं। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि जंक फूड्स को अवॉइड करिए और हम जो खाएंगे वही बच्चा देखेगा। जनरली हम मार्केट जाते हैं या कहीं जाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं, ठीक है, इंस्टेंट ऑफ टेकिंग कोल्ड ड्रिंक, हम छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, जो हम पियेंगे वही बच्चा डिमांड करेगा और उसका वैसा ही टेस्ट डेवलप हो जाएगा।
1: बिल्कुल। और अब वक्त कह रहा है कि हमें चलना होगा, तो आप चलते चलते लिसनर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी, ये हमारी बॉडी को ना, हमें इसको थोड़ा सा एक दोस्त बना के इसका वेट रिडक्शन करना चाहिए, ठीक है। इसके को टॉर्चर नहीं करना कि आज हमें ये नहीं खाना। अगर आपका कुछ खाने का दिल कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ले लीजिए जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। और प्लस आप अपनी डाइट में फाइबर इनटेक बढ़ाइए, वाटर इनटेक 10 से 15 ग्लास पानी डेली पीना है, हेल्दी ऑप्शन चुनिए, लाइक क्या नाम है, होल फूड सुनिए। होल फूड का मतलब है उसमें फाइबर इनटेक फाइबर हो, ठीक है, जैसे आप दालें यूज करते हैं तो हाँ होल, उसमें हस छिलका जो बोलते हैं वो होना चाहिए, ठीक है, रिफाइंड फ्लोर नहीं यूज करना है, और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपनाइए ताकि बच्चे भी देख के वही चीजों एक्सेप्ट करें। थोड़ा सा खाइए, बार बार खाइए, बट मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि अभी समोसा खा लिया थोड़ी देर बाद कचौड़ी खा ली, नहीं, हेल्दी ऑप्शन चुनने, बिस्किट नमकीन ये सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना
1: है। बिल्कुल, मोटापा आ भी जाए तो परेशान नहीं होना है, बल्कि सिस्टमैटिकली उसको रिड्यूस करने के लिए उन एफर्ट्स को करना है, जिससे कि
0: रास्ता मुश्किल नहीं है।
1: हाँ जी,
0: ठीक है, हम धीमे धीमे चलेंगे और फाइनली हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। जो आप इजी रास्ता अपनाओगे वेट रिडक्शन के लिए, वो कभी भी सस्टेन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा, और सफर अभी बहुत दूर है, तो हमें धीमे धीमे करके और डेफिनेटली हो जाएगा। यू शुड बी पॉजिटिव।
1: जी बिल्कुल, इसी के साथ हमें चलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम शुरू हो चुका है आशियाना, और आज का आशियाना है विमेन स्पेशल। और विमेन स्पेशल में क्या होगी बात, हमारी घर की महिलाओं की बात, हमारी वर्किंग महिलाओं की बात। इन सारी बातों के साथ आज का ये पूरा घंटा है समर्पित हमारी विमेन के लिए। मैं हूं बबीता रावत, आपके साथ। सुनते रहिए मेरे साथ आशियाना प्रोग्राम।

हंसना हंसाना और खुशियां मनाना हर किसी की ज़रूरत है, और खुशियां तभी आती है जब हमारे घर की महिलाएं खुश रहें। और महिलाओं के बारे में कहें तो महिलाएं जो परिवार की धुरी होती हैं, बेटी, पत्नी, माँ, बहू, घर के जिनके अलग अलग रोल हैं घर में, और इनके बगैर घर घर जैसा नहीं लगता है ना। परिवार को सहेजने और संवारने में इनकी लाइफ चली जाती है, लेकिन घर को मैनेज करने के चक्कर में अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस करना महिलाओं को थोड़ा सा चैलेंजिंग तो लगता है, लेकिन क्या करें, महिलाएं हैं, कर ही लेंगी। और प्रॉब्लम का हर सलूशन इनके पास है। खास तौर से कुछ चीज़ें हैं जो मैनेज करने में इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो क्या होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस। जी हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा है कि हमारे इमोशन की तरह आता जाता रहता है, और ये कैसे बैलेंस करना है आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। सुनते रहिए मेरे साथ आशियाना, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है आशियाना, मैं हूँ बबीता रावत, आपके साथ बात हो रही है

बदलते लाइफस्टाइल और कामों के चक्कर में ज्यादातर विमेन्स को कई फिजिकल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, और ऐसे में अपनी सेहत को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे जतन भी करने पड़ते हैं, लेकिन जिसे वो इग्नोर कर देती हैं। और इस इग्नोरेंस को क्या कहते हैं? जी हाँ, इस इग्नोरेंस को ये कहते हैं कि कभी कभी वो बीमार पड़ जाती हैं और फिर घर की पूरी व्यवस्था डगमगाने लगती है। तो ये व्यवस्था डगमगाए नहीं और अपनी सेहत का आप अच्छे से ध्यान रखें, इसी बारे में बात हो रही है। सुनते रहिए मेरे साथ आशियाना, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: AIR at 90. ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। विमेन स्पेशल है आज का प्रोग्राम, और जब बात आती है विमेन की तो हार्मोन बैलेंस की इस वक्त समस्या बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, इम्बैलेंस होते रहते हैं, हार्मोन मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं उसके पीछे। लेकिन अब बात क्या है कि हार्मोन बैलेंस कब माने जाते हैं? भाई, एक छोटी सी मात्रा होती है हार्मोन की जो ब्लड में बहती है और बॉडी के साथ साथ उसे अफेक्ट करती है। और अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी में हमारे ब्लड में बैलेंस है हार्मोन्स, तो भाई बिल्कुल सही, हम बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, हमारे इमोशंस बैलेंस रहेंगे, हमारा मूड बैलेंस रहेगा। लेकिन कहीं ऊपर नीचे कोई चीज़ हो गई तो फिर मेटाबॉलिज्म को चलाने में जो ये मदद करते हैं ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है। व्यवहार में आपकी जैसे कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनको थोड़ा सा ये चेंज करना शुरू कर देता है। शरीर में होने वाली एक्टिविटी और डेवलपमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। लेकिन अब ये बात है कि हम इसे कैसे बैलेंस करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से हार्मोन्स हैं जो इम्बैलेंस हो रहे हैं। और क्यों भाई, गड़बड़ लाइफस्टाइल और दिनचर्या क्या है, कैसी है, ये सारी चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही हैं। चलिए, इसे बैलेंस कैसे करेंगे और नेचुरल तरीके से कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और भी जानकारी है हमारे पास, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

कभी कभी ना अपने आप से ही ये जो भरे हुए नैना होते हैं बहने लगते हैं, और ये सब कब होता है? कोई रीजन नहीं होता, बस अपने इमोशंस अपने आप ही छलकने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने का ये एक कारण, यानी कि ये कारण भी दिखाई देता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा तनाव में रहना, समय से टाइम से खाना ना खाना, एक्सरसाइज से थोड़ा सा जी चुराना, लाइक फिजिकल एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर भागना, और स्क्रीन टाइम ज़्यादा होना, ये सारे कारण हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो रहा है आपका, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? वैसे बताते चले, कुछ कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कई चीज़ों से कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो ग्रोथ हार्मोन थायरॉक्सिन होता है जो थायराइड को बैलेंस करता है, और इंसुलिन हार्मोन होता है जो शुगर बैलेंस करता है, और कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को बैलेंस करता है। और आप देखिए, कोई भी काम करना होगा आपको तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, एकाग्र रहना पड़ेगा। और ऐसे में क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे में यही कर सकते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम आज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, बिना स्क्रीन के तो आप खाना भी नहीं खाते। तो एक छोटा सा काम ये कर सकते

सकते हैं कि एक घंटा जो आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दे रहे हैं उसे स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रखिए, चाहे वो मोबाइल हो या फिर टीवी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा ठहराव आएगा, थोड़ी सी चीज़ें बैलेंस होंगी और कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स भी थोड़े से खुश होने लग जाएंगे और वो भी कोशिश करेंगे कि हम बैलेंस हो जाते हैं। चलिए, और भी चीज़ें हैं जो आप करें तो 100% इसका नतीजा निकलेगा ही निकलेगा। अभी ये गाना आप सभी लोगों के लिए है।

जी हाँ, ज़रूरी है अपनी लाइफ को अगर आपको बैलेंस करना है तो अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा, और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। लाइफस्टाइल अच्छी अपनाने के लिए अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, उस समय के साथ साथ आपको चलना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा भाई, कोई हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है या चार पाँच घंटे वर्कआउट नहीं करना है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं आप वो कर सकते हैं। नेचुरल एंडोर्फिन, एक अगर आपको नेचुरली एंडोर्फिन को हार्मोन को बढ़ाना है, ये हार्मोन खुशी देता है, और खुशी देने

बात की जाती है, तो भाई आप क्या कर सकते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए, फील गुड करवाने के लिए? ये कैसे कर सकते हैं भाई? बैलेंस करने के लिए कोई भी स्पोर्ट्स या फिर कोई भी एक्टिविटी ऐसी अपनाएं जो आपको अच्छी लगती है स्पोर्ट्स में, या फिर स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। जब से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो गई हैं तब से लोगों ने लिफ्ट के अलावा, शायद मुझे लगता है, स्टेयर्स का इस्तेमाल करना थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है। लेकिन जो लोग अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं वो कोशिश ये करते हैं कि स्टेयर्स को चढ़ें। और वेट लिफ्टिंग भी एक बहुत अच्छा सोर्स है अगर आपको एंडोर्फिन अपना बढ़ाना है। इसके अलावा डांस और म्यूज़िक किसे नहीं पसंद है। डांस और म्यूज़िक पर थिरकना, चाहे आपको आता हो डांस करना या नहीं आता हो, या फिर सिंगिंग करना। जी हाँ, सिंगिंग करना भी एक बहुत अच्छी कला है, आप उसे भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मार्शल आर्ट के शौकीन हैं तो इसे भी कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपका नेचुरली एंडोर्फिन बढ़ेगा, आपका बैलेंस होगा। स्ट्रेच करिए अपनी बॉडी को और पुल अप्स कीजिए। ये सारी चीज़ें करेंगे तो ज़रूर से कामयाबी आपको मिलेगी और नेचुरली एंडोर्फिन बैलेंस होगा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

जब भी कभी हम एक पार्टी में जाते हैं ना, तो हम कई ऐसे लोग खुश से चेहरों को देखते हैं, और उनको देखने के बाद हमें ये लगता है कि काश काश ऐसा खुश सा चेहरा, ऐसी खूबसूरत सी जो जवानी है वो हमारे पास वापस लौट आए। और ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी को देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन अब ये उनसे कभी उनका सीक्रेट नहीं पूछते कि आपके अंदर वो कौन सा सीक्रेट है जिसकी वजह से आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, आप फिट दिखाई दे रहे हैं, एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रूर पूछिए, और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी एक अच्छी लाइफस्टाइल ही उनका सीक्रेट होगा। और जब हार्मोन्स की बात की जाती है, तो भाई हमारी लाइफ में हार्मोन का क्या रोल है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इंसुलिन हार्मोन शुगर बैलेंस करता है, कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है और ये आपको स्वस्थ रखता है और बिल्कुल जमा बना कर रखता है। एस्ट्रोजन महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बर्थ, सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मीनोपॉज के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वहीं टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन की ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैसे बहुत से ऐसे हार्मोन होते हैं जो हम कोशिश कर सकते हैं कि बैलेंस हो जाए। और नेचुरली कैसे बैलेंस हो, जैसे अगर बात कहें तो सेक्रेटोनिन एक हार्मोन होता है जो आपको एकाग्र और शांत बनाकर रखता है, और इसे आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। कई बार होता ना, हम गड़बड़ाहट कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो हड़बड़ाहट होती है वो हमारे साथ अक्सर होने लग जाती है। तो जो ये बैलेंस की बात कर रहे हैं हम, सेक्रेटोनिन हार्मोन है वो बैलेंस नहीं होता, तो अक्सर हमारी एकाग्रता में थोड़ी सी कमी, हम अशांत से होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करें, सिंपल सी चीज़ है, कैंपिंग करें, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि तबला हो गया, ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया, या फिर कैशियो होगा, या गिटार हो गया, इनको प्ले करना सीखिए। जी हाँ, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना, बचपन में आपका एक ख्वाब होता है कि काश मैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता, तो क्यों ना आप इस अपने ख्वाब को पूरा कीजिए और अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल करके इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना सीखिए। वहीं कभी मौका मिले तो, दिल्ली में तो समुद्र नहीं है, लेकिन हाँ, समुद्र के किनारे लहरों के पास बैठकर, या तो मैं ये कहूँ कि नदी के किनारे लहरों के पास बैठकर अपने पैरों को उसमें डुबाइए और आनंद लीजिए उन आती जाती पानी की बूंदों को। जी हाँ, पानी के लहरों को आप जब एहसास करेंगे तो कहीं कहीं आपका जो सेक्रेटोनिन हार्मोन है उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। पेड़ पर चढ़ो, बचपन में बहुत चढ़े हैं हम पेड़, लेकिन जब हमारी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है तो हम सोचते हैं अरे कौन चढ़े पेड़ में, पेड़ में चढ़ना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। हाँ, बचपन में हमने अमरूद और बहुत सारे फल तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ करके उन्हें तोड़ा है, लेकिन आज भी आप ये कर सकते हैं, और ये करेंगे तो आपका जो बैलेंस है हार्मोन का वो ज़रूर बनेगा। वहीं एक बहुत छोटी सी चीज़ है, सूर्यास्त को देखना। जी हाँ, सूर्यास्त को जब आप देखते हैं ना, तो उससे भी हार्मोन्स कुछ बैलेंस होते हैं। रात में खुले आसमान में तारों को निहारना, इससे भी आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो स्विमिंग करके भी, जी हाँ, तैर करके भी अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर आप स्विमिंग करें तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, एक फिज़िकल एक्सरसाइज, और साथ ही साथ हार्मोन बैलेंस का काम भी करेगा। सुनते रहिए मेरे साथ आशियाना, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है आशियाना वुमेन स्पेशल है प्रोग्राम, और मैं हूं बबिता रावत आपके साथ। हार्मोन बैलेंस करने की बात की जा रही है, नेचुरली हम इन्हें कैसे बैलेंस कर सकते हैं। वैसे नेचुरली जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताए हैं बहुत इजी प्रोसेस है, आपकी मन में अगर निष्ठा हो तो आप वो सारे काम कर सकते हैं जो अभी तक मैंने बताए हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और अगर आप इन्हें करते हैं तो निश्चित तौर

पर आप खुश भी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, मूड भी अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। वैसे ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है, या भावनाएं जो होती हैं जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। और जब बात की जाती है लव हार्मोन की, तो इस ऑक्सीटोसिन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? स्पेशल वन को के लिए अपने खाना बनाइए, ठीक है। खाना बनाने की कला महिलाएं तो बहुत माहिर होती हैं इसमें, लेकिन किसी अपने खास के लिए अगर आप खाना बनाते हैं और मन से बनाते हैं, तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बैलेंस होता है। कुछ लिखने की हैबिट डालिए, जी हाँ, कुछ कुछ लिखते रहिए, अच्छा जो आपको लगे या अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हैं। वहीं किसी अपने को एक प्यारा सा हग भी दे सकते हैं, प्यारी सी झप्पी पाइए और अपने इस बैलेंस करिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। और किसी स्ट्रेंजर की मदद कीजिए, किसी स्ट्रेंजर की मदद करने से एक छोटी सी जो खुशी मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है और आपको फिट भी रखती है। हाँ भाई, ये एक साइंटिफिक बोला गया है इसको, कि अगर ऐसा करते हैं, एक अंदरूनी खुशी जो आपको मिलती है इसको करके, इस काम को करके, वो आपको थोड़ा सा अच्छा बनाती है, फील गुड फील कराती है और साथ ही साथ आपकी सेहत पे भी इजाफा करती है। इसके अलावा अगर आपके पास पेट है तो उन्हें सहला सकते हैं। देखिए ना, कई बार होता है ना कि हम बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे होते हैं और आपके घर में कोई पेट है तो आप उसको अपने पास में, अपने आगोश में लेकर के या अपने पास बिठा करके उसको टैप करते हैं, उसको पैट करते हैं या सहलाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सुकून सा फील होता है। जिनके पास पेट है वो इस बात को ज़रूर जानते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसा करिए और आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और आंखों से आंखें मिलाकर बात करना बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग आंखें चुरा चुरा के बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन उनका इम्बैलेंस हो रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करिए कि आप आंखों से आंखें मिला करके बात कीजिए। बातें और भी हैं, सुनते रहिए मेरे साथ।

वैसे जिंदा रहने के लिए बहुत सारी चीजें करना हम भूल चुके हैं, जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना, तो वो चीजें अगर अपनी लाइफ में अपना लें तो आप बिल्कुल बिल्कुल अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। हार्मोन तो बहुत दूर की बात है, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने डोपामीन को, फील गुड हैप्पी वाला जो आपका हार्मोन है उसको बढ़ा सकते हैं, अच्छा बैलेंस कर सकते हैं। और वैसे डोपामीन को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने बिस्तर को लगा सकते हैं, ठंडे पानी से नहा सकते हैं, शांत माहौल में बैठ सकते हैं, अपने कामों को करने के लिस्ट बना सकते हैं और खाना खाते समय गैजेट से दूर रहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर गैजेट से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें और बैलेंस अच्छे से हो सकती हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ से जाती हूँ, अगला प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर है, उसे सुनिए और उसके बाद अल्फा जन प्रोग्राम में 4 बजे से मैं आपके साथ होंगी करियर पाथवे के। और आज करियर पाथवे में कौन सा करियर बताने वाली हूँ, सुनते रहिए मेरे साथ 24/7 आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे ठीक 4 बजे।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार अभिनंदन एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। रेडियो डॉक्टर में मैं सुजाता रथ

0: आपकी एंकर और हमारे एक्सपर्ट से आइए मिलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थैल्मिक साइंसेस एम्स। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, तमाम श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब आज का टॉपिक हम अपने सुनने वालों को बताते, हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स, गर्मी के दिनों में अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें। तो डॉक्टर साहब आई एक्सपर्ट हैं, आंखों के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल। तो डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है कि आंखों की सुरक्षा तो हमेशा की जानी चाहिए, किसी मौसम से जुड़ी हुई बात तो ये है नहीं, क्योंकि आंख जो है वो ईश्वर की सबसे, मैं कहूँ कि कीमती नेमत है, उपहार है जो हमें मिला है इस खूबसूरत जहाँ को देखने के लिए। तो डॉक्टर साहब लेकिन खास करके जो आज टॉपिक हमने चुना है कि गर्मियों के मौसम में हम आंखों की सुरक्षा करें, तो इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे, गर्मियों में क्यों ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है डॉक्टर साहब आंखों की?
1: जैसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में सीजन्स चेंज होते हैं, उसी तरह से एक शारीरिक जो है समस्या भी साथ में चलती चली जाती है। जैसे गर्मी आती है तो आप जानते हैं वातावरण का टेम्परेचर बदल जाता है, हवाएं गर्म हो जाती है, और कभी कभी साथ में गर्म लू चलती है, जिसके कारण से शरीर में बीमारी तो होती ही है, आंखों में भी बीमारी हो सकती है। इसमें हम जानते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों को भी जो है तकलीफ हो सकती है, जो लोग घर के अंदर रहते हैं उनको भी तकलीफ हो सकती है, और जो बाहर काम करते हैं, जिन्हें भीड़ वाले एरिया में जाना पड़ सकता है, या जो खेतों में काम करते हैं, उन सभी को कष्ट हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सोचने वाली बात है, जो गर्म हवा होती है उसका इम्पैक्ट जो फेस में या चेहरे में क्या होता है, आंखों में उसका असर क्या होता है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। हम जानते हैं जब गर्म हवा आंखों में हिट करती है तो आंखों में एक पतली सी लेयर होती है जो हमें, जिसे हम टीयर फिल्म कहते हैं, वो करीब करीब 12 से 15 सेकंड तक रहती है आंखों में, तब आपको पलक झपक के टीयर फिल्म दोबारा बनाने की जरूरत पड़ती है। गर्मी में क्या होता है, ये टीयर फिल्म बहुत जल्दी सूख जाता है, जिससे आपको ड्राइनेस हो सकती है, आंख में सूखापन आ सकता है, और जिन लोगों को पहले से ही सूखापन की बीमारी होती है उनको बहुत ज्यादा कष्ट होना शुरू हो जाता है इस मौसम में। और कभी कभी हम जानते हैं कि दिल्ली और जितने भी हमारे जो बहुत ज्यादा जहां गर्मी होती है वहां पर एक बीमारी आ जाती है जिसे हम आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। ये बरसात में ज्यादा होती है लेकिन अभी से इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है, जैसे आप जानते हैं गर्मी में पसीना आता है, आप काम कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसका असर भी आंख में पड़ता है, तो आपकी जो रोशनी होती है, जो नज़र होती है दूर की या पास की, उसमें भी फर्क पड़ सकता है, हो सकता है चश्मे का नंबर आपको चेंज करना पड़ जाए। कुछ बीमारियां होती है जिसका कंट्रोल ठीक से नहीं हो पाता है गर्मियों में, जैसे आप डायबिटीज के मरीज हो या हाइपरटेंशन हो आपको, वो बीमारियां इस मौसम में जो है थोड़ी सी जो है अनकंट्रोल हो जाती है, उसका असर भी आंखों में पड़ सकता है।
0: जी तो सर बहुत सारी आपने बातें बताई कि गर्मियों में खास करके आंखों की सुरक्षा की क्यों ज्यादा आवश्यकता है। चलिए डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें जानेंगे और बहुत सारी सुरक्षा के उपाय भी जानेंगे, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और डॉक्टर साहब आपकी फरमाइश पर जुबिन नौटियाल का गाया हुआ एक आंखों से रिलेटेड गाना ही मुझे मिल गया, तो चलिए सुन लेते हैं।

0: यह इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स, गर्मियों में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक साइंसेस एम्स। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें हमको शुरू में बताएं कि गर्मियों में क्या तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आंखों की, तो क्यों गर्मियों में ज्यादातर सुरक्षा की जरूरत पड़ती है आंखों की, और कैसे देखभाल करें ये भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन फिलहाल कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी पूछिए।
1: जी मैं गौतम कुमार बोल रहा हूँ, और ये गर्मी में हम लोग सिलाई करते हैं तो कैसे बचा जाए, क्या उपाय करना चाहिए?
2: नहीं नहीं गौतम, जब आप सिलाई करते हैं तो हम जानते हैं कि सिलाई एक हो सकता है बंद कमरों में नॉर्मली होती है, वहाँ पर गर्मी रहती है और पसीना आता है
1: जी।
2: जब पसीना ज्यादा आता है तो उससे भी जो है आंखों में दिक्कत आ सकती है और चेहरे में भी जो है दाने हो सकते हैं पसीने के कारण। तो उसमें या तो हवादार कमरा हो या खिड़की हो जिससे कि हवा जो है बाहर निकल जाए, साफ हवा अंदर रहे। यदि आंखों में आपको जलन हो रही है जो कि सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम रहता है ऐसे लोगों के लिए, तो ऐसे में जो है एक सिंपल आर्टिफिशियल टीयर हम बोलते हैं उसको लगा सकते हैं, जैसे टीयर ड्रॉप्स बोलते हैं, उसको दो या तीन बार डालेंगे आंखों में तो आंख साफ हो जाता है। और साथ में करीब करीब दिन में दो या तीन बार हाथों को धो लीजिए और आंखों को भी चेहरे के साथ धोएंगे तो ये दिक्कत कम हो जाएगी पसीने की जो है।
1: और
2: पास के काम करने में दिक्कत आ सकती है, यदि साफ नहीं दिखता तो पास का चश्मा लगा के काम करना चाहिए।
1: ठीक है गौतम सर, नमस्कार सर।
2: ठीक है गौतम जी।
0: सर एक और कॉलर है। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
3: मैं विजय बहल बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
0: हाँ जी
2: नमस्कार, बोलिए पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका।
3: मेरा क्वेश्चन, मेरा पहले मैंने बात किया था डॉक्टर से, मेरे को मैकुलर डिजनरेशन की प्रॉब्लम है।
2: अच्छा,
3: सिंस लास्ट 25 इयर्स।
2: ओके,
3: मैं इस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ।
2: देखो विजय जी, मैकुलर डिजनरेशन एक ऐसी बीमारी है जो एक बार हो जाए तो उसको रिवर्स या वापस नॉर्मल नहीं कर सकते।

0: मुझे रिवर्स नहीं कर मुझे रिवर्स नहीं
1: हाँ,
0: करवाना है।
1: उसमें जो है इलाज संभव है, उसके कुछ जांच हमें करने पड़ेंगे, रेटना का जो है स्कैनिंग हो सकता है या फिर एंजियोग्राफी कर सकते हैं, यदि उसमें कोई खून की नसें ग्रो कर रही है या फिर कोई ब्लड आ रही है, तो आंखों में दो तरह के इलाज हो सकते हैं। जब सूजन होती है तो हम आंखों में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि सूजन कम हो जाती है और नज़र बढ़ जाती है बहुत सारे लोगों की। यदि जो है सूजन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रही तो उसके साथ में लेजर भी कर सकते हैं जिससे कि जो है सूजन एकदम से कम हो जाए। तो ये जानना जरूरी है कि बीमारी किस स्टेज में है, तो मैं चाहूंगा कि एक प्रॉपर आप चेकअप करा लें, गाजियाबाद एम्स के बहुत ही पास में, कभी आकर के चेकअप करा लीजिए जिससे कि हम प्लानिंग कर सकें किस तरह का ट्रीटमेंट आपके लिए पॉसिबल है।
0: ठीक है ठीक है,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच
1: मोस्ट वेलकम।
2: जी मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ।
3: हाँ जी बोलिए।
2: मैडम मेरे जो है आंखों से जो है अब बहुत ही कम चमकने लगा है और आंख में थोड़ा सा ज्यादा सा भी दिखाई देता है।
1: आपकी उम्र कितनी है?
2: 54-55 वर्ष है सर।
1: अच्छा,
2: पहले से बचपन से ही मुझे कम दिखता था और अब जो है अब तो बिल्कुल ना के बराबर है मामला बस।
1: ओके, आप चश्मा लगाते थे?
2: कुछ नहीं लगाते थे।
1: अच्छा, देखो हुसैन जी, 55 साल की उम्र आते आते कुछ बीमारियां जो है धीरे धीरे जो है खराब होती चली जाती हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कम देखने की बीमारी बचपन से ही थी, तो उसमें मुख्यतया जो है एक तो कारण होता है कि आंखों में चश्मे का नंबर रहा हो और उसको आपने उस समय चेक नहीं कराया, या पीछे का या आगे का पुतली या पर्दा खराब हो सकता है जो धीरे धीरे ज्यादा खराब होते चला जाता है, उसमें जो है रोशनी कम हो सकती है। अभी 55 साल की उम्र में आपकी रोशनी ज्यादा कम हो रही, तो साथ में या तो सफेद मोतिया आ रहा होगा या काला मोतिया भी हो सकता है, या फिर आप डायबिटिक होंगे तो पीछे पर्दे में डायबिटीज का असर भी आ सकता है, तो उसकी जांच करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं।
2: सर जांच कराई थी मैंने तो कॉर्निया भी और डिश वगैरह भी सब सही थी।
1: बहुत बढ़िया। हाँ
2: जी,
1: तो इसका मतलब ये है कि जो रेटिना है हो सकता है उसमें दिक्कत आ रही हो, तो एक प्रॉपर चेकअप करा लीजिए अच्छे हॉस्पिटल में। मुरादाबाद में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है आंखों के।
3: सर हमने बहुत सारे कॉलर्स को तो ले लिया, लेकिन हमारे व्हाट्सएप वाले जो लिसनर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए एक दो मैसेजेस ले लेते हैं। सर SSP गुप्ता रांची से इन्होंने लिखा है कि मेरी वाइफ का कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है 6 महीने पहले, तो उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए?
1: हाँ गुप्ता जी, आपका ये सवाल बहुत ही सुंदर और वाजिब है इस आज के प्रोग्राम के समय में। जहाँ तक कैटरेक्ट ऑपरेशन हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, तो हम नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में आदमी को नॉर्मल मानते हैं कि उसके कारण से कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, यदि आपके वाइफ को कोई और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, यदि डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो या फिर सूखेपन की प्रॉब्लम हो जो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कभी कभी बढ़ जाती है, और गर्मियों में बहुत से लोग जो है एयर कंडीशन में बैठते हैं तब भी आपको जो है आंखों में सूखापन हो सकता है, बाहर निकलेंगे तो जरूर मैं चाहूंगा कि एक काला चश्मा या गॉगल्स या लगा लें जिससे कि आंख में रोशनी कम जाएगी और उनको दुविधा कम रहेगी। इसके अलावा ज्यादा कोई प्रिकॉशन नहीं है, नॉर्मल की तरह एक्टिव रहिए और सारा काम करिए।
3: जी सर। सर आपने ड्राई आईज की बात कही तो एक मैसेज आया है मिसेस सुचित्रा रॉय का शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र जो है 67 साल की है ये, और शी इज हैविंग ड्राई आई प्रॉब्लम और आई बॉल्स बिकम्स रेड, प्लीज एडवाइस।
1: ये जो आप कह रहे हैं कि ड्राई आई आपको है और आंखें लाल हो जाती है, तो इसका एक ही संकेत है या एक ही इसका कारण हो सकता है कि आपकी ड्राई आई काफ़ी क्रॉनिक है। इसका मतलब बहुत समय से आपको ड्राई आई की बीमारी हो रही है, इस कारण से आंखें लाल हो जाती है। तो जो भी दवाइयां आप डालते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ सकती है। कभी कभी आंखों में ड्राई आई के साथ साथ में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है जिसमें लाली ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में जाँच करने के बाद थोड़े से लाइट स्टीरॉयड ड्रॉप डालेंगे तो लाली एकदम से कम हो जाएगी। ये डॉक्टर को दिखा करके उसके बाद ही इस दवाई को यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो है, इस एज में और बीमारी भी हो सकती है जिसके कारण ड्राइनेस बढ़ सकती है, जैसे आपको थायराइड की बीमारी हो या आपके जोड़ों में दर्द हो जैसे आर्थराइटिस हो, तो ऐसे लोगों को ड्राई आई ज़्यादा रहती है, तो उसकी भी जाँच करा लें। यदि वो है, यदि उस बीमारी को कंट्रोल करेंगे तो ड्राई आई की समस्या भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। हम जानते हैं कि ड्राई आई किसी को हो जाए तो बिल्कुल रिवर्सल या नॉर्मल लेवल में नहीं आ सकता है, लेकिन जो भी सिम्टम्स है, जो परेशानी है, उसको दवाइयाँ डाल करके या और इलाज करके उसको सुविधाजनक कर सकते हैं हम लोग।
3: तो डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है कि हम आपकी पसंद का एक बहुत ही एवरग्रीन गाना जो है अपने श्रोताओं को सुनवाए। कहिए, सुनवा दो सर।
1: जरूर जरूर।
4: नहीं नहीं,

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: How to protect your eyes in summers? गर्मियों के दिनों में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, हमारा आज का विषय है। रेडियो डॉक्टर में आपकी एंकर हूं मैं सुजाता रथ और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थैल्मिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर साहब, बात चल रही है कि गर्मियों के मौसम में आंखों की सुरक्षा कैसे की जाए, तो चलिए इसी बात पर आते हैं कि गर्मियों के दिनों में हम जब बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, तो क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आंखों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
3: इसमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। एक तो ये ध्यान देना जरूरी है कि आंखों में रोशनी ज़्यादा ना पड़े या फिर गर्मी की हवा ना पड़े, तो इसके लिए गॉगल्स जो है लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कॉमन भाषा में धूप का चश्मा कहते हैं, वो लगाना ज़रूरी है। और साथ साथ में आप जो है हैट या कैप ऊपर से लगाएंगे तो उसके साथ में भी जो है आंखों में रोशनी कम पड़ती है और प्रोटेक्शन हो जाती है। ये जरूरी है।

0: यदि आप कहीं भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये प्रिकॉशन जरूर रखना है कि लोगों को को भी ध्यान रखना कि चोट लग जाए आंखों में, क्योंकि गर्मी में लोगों को जो है डेफिनेटली जो है चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहती है, कि ट्रैवलिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाता है. और यदि लंबे समय के लिए आप बाहर निकलें तो साथ में पानी का बॉटल साथ लेके जाइए, क्योंकि कभी कभी आंखों में कुछ गिर गया या आपको आंखों में जलन हो रही है तो साफ पानी से आंख धोएंगे तो उससे भी आराम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एंटीबायोटिक या आंखों की ड्रॉप्स इमिडिएटली मिल नहीं सकती है. तो पानी जो है बहुत अच्छा एक इलाज हो सकता है ऐसे समय में. दूसरा जो है, यदि आप कोई आंखों में दवाई डालते हैं जैसे काला मोतिया का दवाई हो तो साथ में लेके चलें, जिससे कि आपकी दवाई की टाइमिंग ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है सही टाइम में डालना उसको अति आवश्यक होता है. यदि आपको चश्मा ऐसे ही लगाया जैसे दूर का चश्मा लगाया तो उसको ज़रूर लगाएं, उसके ऊपर से आप जो है धूप के चश्मे का या तो फ्लैप लगा सकते हैं. आजकल मिलते हैं बहुत सारे फ्रेम जिसके ऊपर से जो है धूप के चश्मे का फ्लैप लगा सकते हैं, या फिर जो आपका धूप का चश्मा उसमें भी नंबर का चश्मे का शीशा लग सकता है जिसमें आपको देखने की सुविधा हो सकती है.
1: जी सर. सर व्हाट्सएप मैसेज है, मध्य प्रदेश से आया है ये. मृत्युंजय कुमार, ये शिक्षक हैं गया बिहार से है ये मैसेज सर, कि लिखते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर काम करते समय डस्ट का सामना करना पड़ता है, क्या ये आंखों को नुकसान कर सकती हैं? अगर करती हैं तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और धूप से बचने के लिए आंखों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? तो ये बात तो अभी आपने बताई धूप वाली बात, लेकिन इनकी जो दूसरी बात है बहुत इम्पोर्टेंट है.
0: बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल भी हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े सारे शहरों में अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है. लेकिन हम जानते हैं कि जो चौक यूज़ करते हैं उससे आंखों में एलर्जी या जलन हो सकती है, उसके जो कण है वो फैल जाते हैं ब्लैक बोर्ड जब साफ करते हैं आप या जब लिखते हैं तो आंखों में जा सकते हैं, और लंबे समय तक लगातार यदि गिरते रहें तो आंखों में एलर्जी हो सकती है. उसमें बार बार आंखों में खुजली होना या दर्द होना या फिर पानी आना और लालीपन होना जो है हो सकता है. तो ऐसे में जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक तो आंखों का आप धो सकते हैं साफ पानी से, या फिर आर्टिफिशियल टीयर लगातार डाल सकते हैं. यदि आप जो है को लगता है कि आंखों में चौक चला गया या पाउडर चला गया तो इमीडिएटली कोई भी जो साफ पानी हो, रनिंग वाटर हो, उससे आंख धो लेंगे तो आपकी समस्या दूर हो सकती है. दूसरा ये है कि तो एक चश्मा लगा के आप काम करेंगे तो डायरेक्टली आंखों में नहीं गिरेगा, और कभी कभी जैसे शुरू में कहा था गर्मी के बचाव के साथ साथ में स्कूल में भी जो है आप एक हैट लगाएंगे तो उससे भी जो है चीजें डायरेक्टली आंखों में नहीं गिरेंगी.
1: कॉलर है सर. हेलो.
2: हेलो.
1: हाँ
2: हेलो अनूप.
1: हेलो
2: सर राजीव.
1: हाँ
2: हेलो.
1: हाँ सुनाई दे रही है. अनूप जी बोलिए.
2: सर धूप में ना चकाचौंध सा होता है और आई में ड्राइनेस है. I am 52 years old, diabetic and BP2.
0: हाँ हाँ हाँ, ये सारे बात हम डिस्कस कर चुके हैं अनूप जी, लेकिन आंखों में चकाचौंध होना जो है ड्राइनेस के कारण भी होता है, कभी कभी आपका चश्मे का नंबर सही न हो उससे भी होता है, आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी कभी कभी जो पर्दे में सूजन आ सकती है तो उससे भी चकाचौंध हो सकता है, या फिर करीब करीब शुरुआत हो रही हो मोतियाबिंद की उसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है रोशनी में दिक्कत आती है. तो यदि आपको ये दिक्कत आ रही है तो एक चेकअप जरूर कराइए आप, जिससे कि
2: एक्चुअली क्या कारण है पता चले. जी सर.
0: और दवाइयां जरूर डालिए ड्राइनेस की आप.
2: जी सर.
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू
1: सर. आपने बताया कि धूप में निकलते वक्त हमें सनग्लासेस गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और पानी के छींटे मारने की बात की, तो सर ये सनग्लासेस जो है इसकी क्वालिटी को लेकर बहुत बातें कही जाती है कि अच्छी क्वालिटी की ही होनी चाहिए, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने वाली. पता नहीं ये मार्केटिंग की बातें हैं या क्या है, इस बारे में थोड़ा सा क्लियर हमको बताइए.
0: दो चीजें हैं, दो तरह के सनग्लासेस हो सकते हैं. एक ऐसे सनग्लासेस होते हैं जो यूवी रेज को जो है ब्लॉक करते हैं. इसकी जरूरत वहां पर होती है जहां पर यूवी रेडिएशन ज्यादा होता है, जैसे आप सी शोर में समुद्र के किनारे में जा रहे हो या फिर आप पहाड़ों में जा रहे हो जहां बर्फ पड़ता है, तो वहां पर यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है. तो यूवी ए ब्लॉकिंग जो है स्पेक्टिकल या गॉगल चाहिए होंगे.

0: दूसरा होता है कॉमन जो है धूप से बचाव के लिए, तो उसमें शेडेड लेंस भी चल जाते हैं। नॉर्मली लोग जो है ऐसे कलर लगाते हैं जिससे आपको सूदिंग इफेक्ट आ जाए। तो आप चाहेंगे तो ग्रे कलर के या थोड़े से लाइट ब्लू टिंच वाले गॉगल्स ले लेंगे, तो इसमें पावर नहीं होता है और ये बड़े स्मूथ लेंसेज होते हैं, इसमें कोई पावर नहीं होना चाहिए। कभी कभी लेंसेज ऐसे बन जाते हैं जिसमें उसकी बनावट ऐसी होती है कि उससे लाइट के रेज जो है डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो आपको देखने में दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और साथ में फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि जो हल्का हो, जिससे आपके चेहरे में उसका दबाव नहीं पड़े, कानों के ऊपर दबाव नहीं पड़े, बिकॉज गॉगल्स जो है थोड़े बड़े साइज के होने चाहिए।
1: जी
0: तो
1: जी
0: फ्रेम हल्के रखेंगे तो आपको सुविधा रहेगी।
1: हम तो स्टाइल के लिए पहनते हैं सर।
0: हाँ, स्टाइल के लिए भी जो है फ्रेम भी बन सकती है,
1: जी
0: लेकिन हमेशा लाइट होनी चाहिए जिससे आपके चेहरे में दबाव नहीं पड़े, नहीं तो उसके कारण से भी आंखों में दर्द और सर में दर्द हो सकता है।
1: जी सर, तो स्टाइल से ज्यादा ये आंखों की प्रोटेक्शन के लिए।
0: सही कह रहे
1: हैं सर। हाँ, पानी की मैंने बात की। कई बार हम देखते हैं कि लोग जोर जोर से आंखों में जो है ठंडे पानी की छींटे मारते हैं, तो एक बार एक आंखों के डॉक्टर साहिबा ने मुझे बताया कि कभी भी आंखों में जोर से छींटे नहीं मारनी चाहिए सर।
0: नहीं, आंखों के जब छींटे हम कहते हैं तो वो जो है बंद आंखों में मारने चाहिए। आपके जो आंखों के पलके हैं बंद होने चाहिए, उसके ऊपर जो है पानी डालिए। हम डायरेक्टली आंख में पानी के छींटे कभी नहीं कहते हैं डालो, क्योंकि उससे जो है आंखों में नुकसान हो सकता है। आंखों के जो जो पुतली है बहुत ही नाजुक होते हैं, कभी कभी उन छींटों से ही उसमें जो है जख्म हो सकता है। और पानी आप हमें पता है कभी जो है 100% प्योर और साफ नहीं होता है, तो डायरेक्टली कभी आंखों में छींटे नहीं मारना चाहिए। यदि आंखों के धोना भी है तो बंद आंखों से आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे पानी जो है अंदर चले जाएंगे, वो पानी फिर बाहर अपने आप निकल जाएंगे। तो आंखों में भगवान ने जो पलके बना रखी हैं जो अंदर से अपने आप सफाई कर देती है।
1: तो तरीका जो है सही होना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: सही कह रहा
1: है। एक व्हाट्सएप मैसेज है, ये 69 साल के हैं, आरपी शर्मा जी हैं, लिखते हैं कि आई गॉट माई आईज चेक्ड एट एम्स एंड देयर इज सूडो होल इन द राइट आई। तो दोनों आंखों में इनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है सर। प्लीज टेल, इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर सूडो होल?
0: नहीं शर्मा जी, आपने तो काफ़ी ज्ञान वाली बातें बताई, इसका मतलब कि आपका जांच बहुत अच्छी तरह से हुआ है। सूडो होल में जो है नॉर्मली हम लोग कोई सर्जरी करते नहीं है, कि ऐसे मरीजों की जो नज़र होती है, जो विजन होती है, ठीक ठाक होती है। और जो होल की सर्जरी हम तब करते हैं जब ये होल पूरा कंप्लीट होल हो जाता है या ट्रू होल हो जाता है, या फिर नज़र कम हो रही हो, या पर्दे में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ट्रैक्शन या खिंचाव हो रही हो, तब ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो जैसा आपने बताया, आपने लिखा नहीं कि आपकी नज़र कितनी है, क्योंकि आजकल जो भी सर्जरी हम करते हैं नज़र को साफ करने के लिए करते हैं। यदि आपकी नज़र अच्छी है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, यदि नज़र कम होती जा रही है तो जरूर एक चेक कराइए, जिससे कि पता चल जाए कि होल में कोई प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा, संभव है इसका इलाज।
1: जी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। मुनीश पाल उत्तराखंड से सर लिखते हैं कि मेरी आईज जो है मटमैली सी हैं, पीली सी लगती हैं, तो क्या करूं मैं?
0: तो इसका तो कोई खास इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो जो सफेद पार्ट होता है जिसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें पिगमेंटेशन आ जाती है। वो जो है बचपन में आपको एलर्जी रही हो उससे भी पिगमेंटेशन हो जाता है। कभी कभी आंखों की जो कलर होती है वो आपके हेरिडिटरी होती है, तो इसको जो है साफ नहीं कर सकते हैं, ये आपकी जो है एक पहचान हो जाती है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इससे आपको देखने में या आंखों में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक चेकअप करा लीजिए पर्दे का। कभी कभी क्या होता है कि आपको विटामिन की डिफिशेंसी हो सकती है, जिससे कि आंखों में मटमैलापन आ सकता है, और साथ में पीछे पर्दा भी खराब हो रहा होता है विटामिन, स्पेशली विटामिन ए डिफिशेंसी की। तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई बीमारी है, ये डिसकलरेशन बहुत सारे लोगों को हो जाता है। एक जरूर अपने चश्मे का नंबर चेक कराइए और पुतली का चेकअप करा लीजिए, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है।
1: जी, हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: हाँ बोलिए, नमस्कार, नाम बताइए।
2: मैं मोहम्मद रेहान, वेस्ट बंगाल जिला उत्तर दिनाजपुर से बात कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर को धन्यवाद।
1: हाँ शुक्रिया,
0: थैंक यू। कुछ
2: डॉक्टर साहब, मुझे जानकारी ये चाहिए कि जब मैं छोटा था, 6-7 साल

0: उम्र में मेरी तबीयत खराब हो गई थी।
1: हाँ हाँ।
0: तो डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई की वजह से, दवाई की रिएक्शन की वजह से मेरे आँख खराब हो गया था, दोनों आँख।
1: हाँ हाँ हाँ।
0: तो अब मेरी उम्र लगभग 20 साल है। तो एक आंखों से मैं रोशनी पता करता हूँ, जैसे रात होती है रात पता चलता है, अभी रात है अंधेरा है, और जब दिन आ जाता है तो पता चलता है कि अभी दिन है, उजाला है, और लैब की रोशनी पता चल जाता है। इसमें कोई सोल्यूशन है क्या, कोई उपाय है कि मैं जिस तरह पहले देख रहा था उसे देखता हूँ?
1: आपकी दूसरी आंख कैसी है?
0: एक आंख, दूसरी आंख जो ओपन के बैठ गया उससे कुछ पता नहीं चलता।
1: अच्छा,
0: और एक आंख से रोशनी पता चलता है सिर्फ, उजाला लैब की रोशनी और दिन होता है तो पता चलता है दिन है।
1: अच्छा, ये तो बड़ी खेत की बात है कि आपको दवाई की जो है रिएक्शन हो गई है। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में जो है रिएक्शन हो जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, आंखों के पर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ये हुआ है। तो नॉर्मली जो है इसका इलाज सही टाइम में हो जाए इमिडिएटली तो कभी कभी आंखों का बचाव कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको 14-15 साल हो गए इस अटैक को, तो मुझे लगता है जो आपकी एक आंख जो थोड़ी जिसमें रोशनी दिख रही है उसमें हो सकता है कि जो आगे की पुतली है पूरी खराब हो गई हो, जिसमें रोशनी अंदर नहीं जा रही हो। आजकल हम लोग जो है ऐसे मरीजों का या तो ऊपर की पुतली जो है साफ कर देते हैं, या कभी कभी जो है हम जो है इसमें आर्टिफिशियल आई या प्रोसेसेस डाल देते हैं जिसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो उसका एक चेकअप करना पड़ेगा हमें, पीछे आपका पर्दा और नस सही है तो आगे से हम जो है प्रोस्थेटिक आई लगा सकते हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं।
0: और डॉक्टर साहब, मैं 2-3 मरतबा नेपाल भी गया था, डॉक्टर को दिखाए थे तो डॉक्टर बोलने कि इससे ज्यादा रोशनी नहीं आएगी।
1: नहीं नहीं, इसका इलाज जो है नेपाल वाले हॉस्पिटल में इसका संभव नहीं है। इंडिया में भी 3-4 हॉस्पिटल ही है जहां पर ये जो है आपको जो है आई लग सकते हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं।
0: कौन सा हॉस्पिटल सर, उसका नाम बताइए।
1: दिल्ली में आ सकते हैं, दिल्ली में एम्स का जो आई हॉस्पिटल है, या फिर आपको चेन्नई में जाना पड़ेगा शंकर नेत्रालय में, वहां पर दो जगह अच्छे इलाज हो सकते हैं आपको। यदि पीछे पर नस में जान है तो ये ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं
2: जी। सर, एक और कॉलर है। हेलो
3: हेलो।
2: हाँ जी, पूछिए।
3: मैडम नमस्कार।
2: नमस्कार नमस्कार
3: डॉक्टर साहब। नमस्ते।
1: नमस्ते भैया।
3: डॉक्टर साहब, मैं आरपी पेशेंट हूँ, कुछ हमारा भी है समस्या का समाधान कुछ। चौवन साल
1: आपको पता है कि
3: सर ये है कि सिर्फ 7-8% रोशनी बची है, बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे ले जाते हैं इधर उधर, बड़ी प्रॉब्लम में होंगे, कुछ है समाधान जो मतलब जितना जितनी रोशनी है यही रुक जाए यहीं पर,
1: बट
3: जो दिखाओ क्लियर दिखने लगे ऐसा कुछ है?
1: आपको बताइए कि इसका कोई खास इलाज अभी तक निजात इसका नहीं हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे जो है नस खराब हो जाती है और रोशनी खत्म होने लगती है। तो इतने सालों में आपको इतनी ये बीमारी चल रही है तो कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करना आपको चाहिए था या कर रखा होगा आपने, जिसके द्वारा आप जो है ना आगे की जो है लाइफ बिता सकते हैं। जहां तक मॉडर्न इलाज है वो इंडिया में संभव नहीं है, विदेशों में कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें हम रेटिना ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो इंडिया में अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
2: जी सर, एक व्हाट्सएप मैसेज है और लिखने वाले हैं धर्म भाटिया रोहतक से, मिसेस धर्म भाटिया फ्रॉम रोहतक। इन्होंने लिखा है सर कि इनकी दोनों आंखों में लेंस लगे हुए हैं, दूर और नज़दीक का चश्मा अलग अलग है दोनों का। पूछना चाहती है कि जब ये बाहर निकले धूप में तो अपने नज़र वाला चश्मा पहने या गॉगल्स पहन सकती हैं सर?
1: नहीं नहीं, भाटिया मैडम, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जब आप बाहर निकलते हैं तो दूर का चश्मा लगाइए कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और साथ में पास वाला चश्मा भी अपने पर्स में या जेब में रख लें, जिससे कि सपोज आपको कोई चीज़ पढ़ना या बिल देखना हो या मार्केटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आराम से पास के चश्मे से पास का देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको दूर का चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़रूर साथ में लेके चलिए आप।
2: जी, तो जो बात सर मैं भी पूछना चाहूंगी यहाँ पर, जो लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी वही गाइडलाइंस हैं जो नॉर्मल आंखों वालों के लिए सर?
1: नहीं, उनके लिए तो और भी ज्यादा जो है प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, क्योंकि लेंस जो कॉन्टैक्ट लेंस जो आंख में लगाते हैं, हम जानते हैं एक तरह से ये फॉरेन बॉडी है आंख के ऊपर, तो इसमें जो पुतली के जो जैसे मैंने बताया था एक थिन लेयर बनती है जिसे टीयर फिल्म कहते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर भी बनती है, इसलिए जो है कॉन्टैक्ट लेंस ड्राइनेस ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो उन लोगों को एलर्जी भी ज़्यादा हो सकती है, ड्राइनेस ज़्यादा हो सकती है, तो उन लोगों को और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आँखें ड्राई

0: हो जाए, और कॉन्टैक्ट लेंस जो है प्रिस्क्राइब टाइम होता है उतना ही पहने, ज़्यादा टाइम नहीं पहने, डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस हो तो और भी ज़्यादा है। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में भी आप गॉगल्स लगा सकते हैं जिससे कि आपको सुविधा रहेगी।
1: जी सर, और अब यहाँ पर हम सर एक ब्रेक लेंगे संगीत का, और अब मैं आपके फेवरेट सिंगर जुबिन नौटियाल की आवाज़ में गाना प्ले करने जा रही हूँ सर।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
2: और विषय आज का है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स, गर्मियों के मौसम में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए। तो एक बात जो हम सभी जानना चाहेंगे सर, कि गर्मियों के दिनों में अक्सर लोगों के पास बहुत समय होता है, छुट्टियां होती है बच्चों की भी और बड़े भी, एक तरह से अगर वो स्कूल कॉलेजेस में है तो टीचर्स की छुट्टी होती है, तो ऐसे समय में ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स का इलाज करवाते हैं, उनकी आई सर्जरी करवाते हैं, या जो बच्चे होते हैं उनको भी लेकर वो अगर उनको भी आंखों की सुरक्षा के उपाय के बारे में बताते हैं। तो सर पेरेंट्स की बात करें तो क्या इस दौरान, इस सीजन में जो सर्जरी की बात आती है, तो सर आप क्या सलाह देंगे कि क्या ये सही सीजन है?
3: हाँ हाँ, जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है, ज़्यादातर कैटरेट का ऑपरेशन होता है। हम जानते हैं कि ये जो है 60 साल के ऊपर वाले लोग नॉर्मली होते हैं, यदि उनको कोई और बीमारी नहीं हो, जैसे मैंने कहा था डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, यदि बीमारी ये कंट्रोल में हो तो कैटरेक्ट सर्जरी आराम से संभव है। जैसे कि अब मैंने शुरू में कहा था कि ये मौसम ऐसा है कि अब यदि बाहर नहीं निकलेंगे तो सारे कंफर्ट में रहेंगे घर के अंदर जो है, और बूढ़े लोग जो हैं जिनको ऑपरेशन हो जाता है तो घर में ही रहते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है।

0: क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारियां इस सीजन में चलती रहती हैं। डिहाइड्रेशन, जैसे मैंने कहा था, ओल्ड एज में बहुत शीघ्र हो सकता है। तो जहां भी जाएं, ऐसे जगह में जाएं कि वहां भीड़ कम हो, और साथ में सारी सुविधाएं जो है आप साथ लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे जगह में आपको लंबा वेट करना पड़े, वहां पर पानी और खाने पीने की सुविधा कम हो। तो ये भी हमारे पेरेंट्स के लिए हमें सोच के चलना चाहिए कि ये सुविधा उनको हो। आजकल ऑपरेशन की पद्धतियां इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि ज़्यादा दुविधा होती नहीं है। तो नॉर्मली यस, ऑपरेशन करा लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: दूसरा, आपने कहा था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां इसमें हो
1: हाँ,
0: जाती
1: और
0: हैं।
1: वो घर में बैठे बैठे बहुत हुड़दंग मचाते हैं, बहुत सारे उठा पटक बैठे करते हैं, तो ऐसे में उनकी आंखों की चोट लग सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है
0: हाँ, तो
1: इसमें।
0: इसमें जो है एक दो तरीके से है। एक तो समय का सदुपयोग करना। तो हम जानते हैं कि नॉर्मली पेरेंट्स जो है एनुअल चेकअप जो है समर वेकेशन में ही कराते हैं, तो ये अच्छा टाइम है। लेकिन जैसे आपने सही कहा कि कभी कभी घर में बच्चे बैठे रहते हैं तो आपस में खेलते हैं तो चोट लग सकती है, क्योंकि बाहर गर्मी होती तो बाहर जा नहीं सकते। तो उसकी उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जो है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या खेलने की चीज़ से चोट लग सकती है। दूसरा, बच्चे जो है इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सपोज रहते हैं, या फिर आप टैबलेट्स में रहेंगे या लैपटॉप में या कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में उनकी क्लासेस टीचिंग ये रहती है। तो उसके लिए भी समर वेकेशन में वो ब्रेक में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोग जो है उनकी आंखें जो है ठीक हो जाएं। कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को आंखों में दर्द होना, उनके चश्मे का नंबर चेंज हो जाना, सर में दर्द रहना, ये बड़ा कॉमन सिम्टम इस बीच में हो गया था। तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स जो ये सुरक्षित अपनाएं कि उनके बच्चे
1: जी
0: कंप्यूटर और लैपटॉप से दूर हो जाएं इस टाइम में और पूरा वेकेशन एंजॉय करें।
1: जी सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है व्हाट्सएप मैसेज का। राकेश कुमार सोनी उत्तर प्रदेश से है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से लिखा है इन्होंने सर, कि लिखते हैं, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और पेरिस से एक समाचार मुझे सुनने को मिला है कि ब्लाइंड्स को कोई आर्टिफिशियल माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो क्या ये बात सच है सर?
0: नहीं, ये बात सच है, क्योंकि ऐसे रिसर्च पिछले कई सालों से हो रहे हैं कि कैसे हम ब्लाइंड लोगों को जो है कुछ ऐसे देखने की सुविधा प्रदान कर सकें। इसमें जो है एक कैमरा सिस्टम चिप जो है लग जाता है आंखों में, जिसके द्वारा इमेज जो है ब्रेन में चला जाता है। तो बिल्कुल साफ अभी तक दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके सराउंडिंग 1 या 2 मीटर के डिस्टेंस में आपको जो है इमेजेस पता चल जाते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि क्या आपके सामने है, और आने वाले 10-15 सालों में ये सिस्टम और ही इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे नया ये सिस्टम बनेगा, उसमें इतने सारे रिसर्च हुए हैं, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बड़े सारे लोगों को इसकी सुविधा मिलनी जो है इंडिया में, तो एटलीस्ट दिक्कत आएगी इसके लिए।
1: लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कॉस्ट कम होता
0: डेफिनेटली
1: जाएगा सर।
0: आप बहुत से ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो आपको जो है एक तरह से होलोग्राफिक इमेज
1: जी
0: दिखा सकते हैं,
1: जी
0: आपके ब्रेन में इमेज बन सकती है डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे ऐसे सिस्टम जो है पिकअप करके आपके ब्रेन में ऐसे सिस्टम बन जाती है जिससे कि आपको दिखाई देना संभव
1: जी
0: है फ्यूचर में।
1: हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: सर एक कॉलर हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते बोलिए।
1: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ सुभाष नगर से।
0: रघुविंदर
1: चट्ठा साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: मेरा सवाल ये है कि 2020 में मेरी दोनों आईज का कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ था। बाकी सब तो ठीक है, मेरा चश्मा भी बन गया नजदीक का, लेकिन जब भी मोबाइल यूज करता हूँ या टीवी देखता हूँ तो आंखों से पानी आने शुरू हो जाता है, तो सर कुछ बताएं क्या करूँ?
2: हाँ, ये जो है बहुत ही कॉमन समस्या है सभी लोगों को, आपको ही नहीं, जिन्होंने ऑपरेशन करा रखा उनको ही नहीं, और लोगों को भी जो है पानी आना जो काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जो है दिल्ली के आसपास में जो पोल्यूशन है और जो हीट है उसके कारण से। लेकिन दो तीन चीज़ें हो सकती है, एक तो जो है आपकी जो पलकें हैं उसमें सूजन हो, जिसे हम बीमारी जिसे कहते हैं MGD हो, या फिर थोड़ी सी ड्राइनेस हो, क्योंकि जब भी आप जो है मोबाइल में काम करेंगे तो आपकी पलकें जो है झपकती नहीं है जितनी हम चाहते हैं, तो उससे भी ड्राइनेस बढ़ सकती है, तो वाटरिंग रिफ्लेक्स टियरिंग हो जाती है। तो मैं चाहूँगा जब भी आप मोबाइल में काम कर रहे हो तो हर 15-20 सेकंड में जानबूझ करके पलकें झपकिए, जिससे कि टियर फिल्म स्प्रेड हो जाएगी और आपको जो है पानी आना कम हो जाएगा। यदि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कभी कभी हम पानी का रास्ता चेक करते हैं कहीं ब्लॉक तो नहीं है कहीं पर, तो उसकी भी जो है इलाज हम लोग कर सकते हैं।
0: जी
1: थैंक यू,
2: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। नागपुर से

0: SNL दास जी का व्हाट्सएप मैसेज है। इन्होंने लिखा है कि आई गॉट माई कैटरेक्ट्स ऑपरेटेड ऑन बोथ द आईज विद इम्पोर्टेड लेंस 8 years बैक। आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ। शुड आई नीड पीरियोडिकल चेकअप?
1: देखो, जहाँ तक कैटरेक्ट ऑपरेशन जो लेंस लगता है वो तो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। कभी कभी जो है लेंस के पीछे जिसके ऊपर हम लेंस रखते हैं वो झिल्ली जो है थोड़ी सी हेजी हो सकती है, जो आपके केस में नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जानते हैं ये ऐसा एज ग्रुप है जिसमें कुछ ना कुछ बीमारियाँ हो सकती है। जैसे शुरू में हमने कहा था डायबिटीज़ हो सकता है, उससे पर्दे में खराबी आ सकती है, काला मोतिया डेवलप हो सकता है, या फिर एक कॉलर ने हमें पूछा था मैकुलर डीजनरेशन, ये सब हो सकता है। तो फिर भी साल में एक बार अपने डॉक्टर से आंखों का चेकअप जरूर कराना चाहिए हर आदमी को।
0: जी सर, एक बहुत कम समय रह गया सर। हेलो
2: डॉक्टर साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार भैया,
2: राजेश खन्ना हैप्पी ईश्वर कॉलोनी जलंधर पंजाब से।
0: हाय हैप्पी जी, कम शब्दों में बताइए क्योंकि समय बहुत कम है।
2: कम शब्दों में यही है कि मैं अपने स्पेक्स हटाना चाहता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी, मैंने स्पेक्स लगा ली है, बाकी सब परेशानी ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ, स्पेक्स मुझे अजीब सी लगती है, इसके जो मुझे बर्ड बोलने जो लेंसेज होते हैं जो अंदर से स्पेक्स हट जाए, अंदर जो लगते हैं जो वो कामयाब है या नहीं है, मेरी बात समझ गए होंगे आप।
1: हाँ, जी समझ गए हैप्पी जी। पहले तो मेरा नमस्कार लीजिए आप।
2: नमस्कार,
1: आप नमस्कार हो रही मेरी।
2: थैंक यू सर डॉक्टर।
1: जहाँ तक जो है आजकल जो पास के नंबर की सबको दुविधा रहती है, फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे साधन है जिससे कि जो है इसको भी इस दुविधा को ठीक कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत आंखों का जो लेंस होता है नेचुरल लेंस, उसमें कुछ खराबी आ रही है, उसमें हेजीनेस आ रहा हो, तो पूरा लेंस निकाल के आर्टिफिशियल लेंस लगा सकते हैं, या फिर हम जो है लेंस के बीच में एक स्पेस भी होता है पुतली के पीछे जहाँ पर लेंस फिट कर सकते हैं। तो ये सर्जरी उन्हीं लोगों को हम कहते हैं जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही हो चश्मे के साथ।
2: दिक्कत तो नहीं आ रही, मैं थोड़ी
1: देखो ऐसा हैप्पी जी जो है भगवान ने जो चीज दी है उसे हैप्पी रहना चाहिए, छिड़खानी करेंगे तो ज्यादा नुकसान भी हो सकता है।
0: चलिए सर, इसी बात के साथ वाइंड अप करते हैं और हैप्पी जी को आंसर उनका मिल गया होगा। सर, तो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ टिप्स।
1: मैं ये चाहूंगा कि गर्मी जो है हमारे देश में आती है और उसके साथ में जो है प्रिकॉशन तो लेना जरूरी है, लेकिन साथ में गर्मी में जो चीज़ फायदा करती है उसको भी लेना जरूरी है। जैसे हमारे पता है कि बड़े सारे पिगमेंटेड फ्रूट्स मैंगोज आ जाते हैं मार्केट में, उसको लेंगे तो उससे जो है आपको शरीर में फायदा होगा। धूप में जाएंगे तो जरूर जो है चश्मा या गॉगल्स लगा लीजिए, हैट है तो हैट या कैप पहन लीजिए। और जहाँ तक हमने देखा है जो लोग ओपन गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको अपने सरों को ढकना चाहिए, गॉगल्स लगाना चाहिए, हेलमेट हो तो और भी अच्छी बात है। और साथ में हमेशा एक पानी का पीने का बॉटल साथ में रखें जिससे कि आपकी प्यास तो बुझ सकती है लेकिन आंखों की सफाई भी हो सकती है। और कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, ज़रूर चेकअप कराइए जिससे कि बीमारी ख़राब ना हो जाए।
0: तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल जी। और अब सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल हमारे गेस्ट थे। टॉपिक था हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। केंद्र सरकार ने आवर्जन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ा

चाहते हैं उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पहले यह पंजीकरण 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। हालांकि निर्धारित अवधि के बाद विलंब होने से पंजीकरण की अनुमति केवल आपात परिस्थितियों में ही दी जाएगी। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल मशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री मशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। म्यांमार के राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ओम मिन औलाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेव और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दस्त, दर्द या बिना किसी स्पष्ट कारणों के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है अल्फाजन। और अल्फाजन में आज हम बात करने वाले हैं करियर पाथवे की। और आज हम किस करियर की बात करने वाले हैं? जी हाँ, आज का जो युग है वो डिजिटल युग है और लोग जानकारी को जल्दी से जल्दी खोजना चाहते हैं। एआई टूल्स और सर्च इंजन बहुत ज़्यादा इस पर निर्भरता बढ़ गई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड आज भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की, जहाँ फिजिकल और डिजिटल दोनों फॉर्मेट की ज़रूरत होती है। अल्फाजन में आज हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की। जी हाँ, लाइब्रेरी साइंस की बात करेंगे। और सुनते रहिए मेरे साथ, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ।

जिंदगी की राह तब आसान हो जाती है जब कोई गाइड मिल जाए, और ऐसे में बहुत जरूरी होती है आपकी करियर का सही चुनाव। जी हाँ, आप जब अपने करियर का सही चुनाव करते हैं तो आगे चल करके कोई मुश्किल नहीं होती, हर एक आसानी से आपके रास्ते खुलते जाते हैं और आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छूते जाते हैं। जैसे कि अगर मैंने बताया है लाइब्रेरी साइंस के बारे में, तो इसमें सर्टिफिकेट से लेकर के पीएचडी तक आप लाइब्रेरी साइंस में कर सकते हैं, और इससे जुड़े बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं। और इसे करने के लिए क्या होनी चाहिए आपके अंदर एबिलिटी, और क्या चाहिए आपके अंदर जो आपको इस कोर्स की तरफ मोटिवेट कर सके करने के लिए। जिन्हें किताबों और इन्फॉर्मेशन का बहुत शौक है तो वो कर सकते हैं इस कोर्स को। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट से प्यार हो आपको तो फिर आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और इससे जुड़े प्रोफेशन में केवल बुक्स को मैनेज करने तक ही आपको सीमित नहीं रहना पड़ेगा। डिजिटल युग है तो डेटा और इन्फॉर्मेशन की और साइंटिफिक मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें। तो आप अगर इस

क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको किताबों से भी प्यार होना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें मैनेज करने का भी आपको सलीका आना चाहिए। वैसे मैनेजमेंट कैसे होता है, लाइब्रेरियन क्या काम करते हैं, जी हाँ, आप अगर लाइब्रेरियन बन जाते हैं लाइब्रेरी साइंस करने के बाद तो आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। सुनिए पहले ये गाना।

ताक झांक तो हमारी लगी रहती है जब हम 12th पास आउट कर लेते हैं, और 12th पास आउट करने के बाद हम बहुत कीन हो जाते हैं अपने करियर को सही चुनाव लेने के लिए, और कौन सा चुनाव हमारे लिए सही रहेगा, बस यही हमारी सोच रहती है। लेकिन ये सोच आजकल बहुत जल्दी डेवलप्ड होने लग जाती है। 7th 8th 9th में ही बच्चे सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमें आगे करना क्या है। हालांकि अपनी एबिलिटी और काबिलियत को पहले जांचना चाहिए कि हम आगे क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं, क्या हम उस पर सक्सीड हो पाएंगे, हमारी उतनी मेहनत हम रंग ला पाएगी। जी हाँ, आपकी मेहनत ही है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपको एक सही चुनाव करवा सकती है एक अच्छे करियर की तरफ भी, और साथ ही साथ आने वाले समय में आप कितनी अच्छे से अपने करियर को परस्यू करते हो, कितने अच्छे से आपने कोर्सेज चूज करें, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सिर्फ आपके एक छोटे से डिसीजन पर, और वो है आपके करियर का सही चुनाव। वैसे करियर की बात की जा रही है तो लाइब्रेरी साइंस में करियर बहुत अच्छा है इस वक्त। क्यों? पुस्तकों और जैसे बुक्स की बात की जाए और उनका मैनेजमेंट करने की बात की जाए तो इस वक्त लाइब्रेरियन के तौर पर आपको जरूरत पड़ती है हर जगह पर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो। और यहाँ पर जाके काम आपको क्या करना पड़ता है भाई? आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है बुक्स का, और खास तौर पर जो हमारे जो पाठक हैं, जो हमारे पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सही बुक्स खोजने में आपकी बहुत हेल्प चाहिए होती है एज अ लाइब्रेरियन। जी हाँ, और जब बुक्स की बात की जाती है तो बुक्स को कैसे मैनेज किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन करके, उनका कैटलॉगिंग करके, और उनके स्टॉक की जांच करके, ये सारे काम जो है एज अ लाइब्रेरियन करने पड़ते हैं। कई किताबें नई आई हैं, कौन सी किताबें कहाँ रखी हैं, कैसे रखी हैं, कितनी व्यवस्थित हैं, ये सारी जानकारी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। और जब कैटलॉगिंग की बात आती है तो लाइब्रेरी के जो सभी डेटाबेस हैं उसको रजिस्टर्स में किताबों का डिजिटल या जो रिटन रिकॉर्ड होता है उसे रखना पड़ता है, और कौन सी किताब, कौन से लेखक की किताब, कौन से सब्जेक्ट की किताब कहाँ रखी हुई है, ये सारी जानकारी एक लाइब्रेरियन के पास होती है। अब देखिए, कहने के लिए तो बहुत छोटी सी बात है कि इसका मैनेजमेंट करना, लेकिन आप सोचिए एक लाइब्रेरी छोटी नहीं होती है। जब आप एक लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ पे हजारों किताबें रखी रहती हैं, अनगिनत विषयों से संबंधित वो किताबों को कैसे एक लाइब्रेरियन मैनेज करता है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक लाइब्रेरियन जब ज़रूरी है, देखिए डिजिटल युग में मैंने कहा ना कि आजकल के डिजिटल युग में आप चुटकी बजाते ही सारी चीज़ों को खोज लेते हैं, लेकिन एज अ लाइब्रेरियन अगर आप जाते हो कहीं तो वो एक क्या कहते हैं AI टूल्स या ऐसी चीज़ें आपको हेल्प तो करेगी, लेकिन मैन्युअली भी, यानी कि एक व्यक्तिगत तौर पर भी आपको काम करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि इस करियर में भी एक अच्छा चुनाव होगा आपके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप बुक्स के साथ अपनी जिंदगी को पूरा आबाद रखें, तो आप चूज कर सकते हैं लाइब्रेरी साइंस।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अल्फा जिन प्रोग्राम सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ, और आज करियर पाथवे में बात हो रही है लाइब्रेरी साइंस की। जैसे कि कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी साइंस टॉप करियर में से एक होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे करियर्स हैं। डिजिटल लाइब्रेरियन बन सकते हैं आप, और डिजिटल लाइब्रेरियन करते क्या हैं, क्यूरेट करते हैं। डिजिटलाइज्ड आजकल का टाइम है, तो ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ई जर्नल्स को और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखते हैं डिजिटल फॉर्म में। और एकेडमिक और स्कूल लाइब्रेरियन, ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पर मैनेज कैसे किया जाए रिसोर्सेज को, बुक्स को, और स्टूडेंट्स को रिसर्च में जिससे मदद हो सके, वो करते हैं हमारे एकेडमिक लाइब्रेरियन। और एक होते हैं नॉलेज मैनेजर, ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटाबेस और रिसर्च, और कॉरपोरेट कंपनीज और टेक फर्म्स में ये काम करते हैं। उसके अलावा रिसर्च एनालिस्ट होते हैं।

हैं जो कि स्किल्स उनके अंदर होती हैं इस तरीके के, जो एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा ऑफ और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। तो ये सारे जो हैं करियर्स होते हैं अगर आप लाइब्रेरी साइंस से कोई भी कोर्स करते हैं। उसके अलावा क्वालिफिकेशन और डिग्रीज, जैसे मैंने बताया कि इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स से ले करके और पीएचडी कोर्सेज तक होते हैं। तो आपको बताते चलें, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, बैचलरेट कोर्सेज भी होते हैं, तो आपको बताएंगे इसके बारे में। पहले आप सुनिए ये गीत।

लाइब्रेरी साइंस के बारे में बातें कर रहे थे हम। और लाइब्रेरी साइंस में जैसे मैंने बताया बहुत सारे कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं और पीएचडी तक इसमें होती है। तो सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने से 1 साल तक होता है, 10वीं के बाद या 12वीं के बाद भी आप इसे कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं और इसमें 1 से लगभग वर्ष लगता है, 1 साल का वर्ष समय लगता है। और 12वीं के बाद जो स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर डिग्री होती है, इसमें 1 साल से ज़्यादा समय लगता है। और किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करने के बाद इस कोर्स को कर सकते हैं। मास्टर डिग्री की बात कहें तो इसमें लगभग 2 साल के लगभग समय लग सकता है। और इसके बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए या किसी हायर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी की बात कहें तो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर प्रोफेसर बनने या रिसर्चर बनने के लिए भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज हैं, आप इसे कर सकते हैं। और कहाँ से कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। सुनते रहिए हमारे साथ, आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम है एल्फोजन। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ।

जी हाँ, मैं और आप मिलकर बन रहे हैं यहाँ पर करियर पाथवे का एक और पाथवे। और ये पाथवे कहाँ के लिए है, ये पाथवे बना रहे हैं हम लाइब्रेरी साइंस में। और लाइब्रेरी साइंस की बातें तो मैंने बता दी आपको कि ये कोर्स होते हैं और ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशंस आप कर सकते हैं इसे। लेकिन कहाँ से कर सकते हैं आप इन्हें? आप कर सकते हैं, ये सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं और CUET के थ्रू भी आप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, CUET के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो। अभी जो हमारे 12th पास आउट हैं या फिर हम ये कह सकते हैं 10th पास आउट हैं, वो अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो आप इसका भी एक कोर्स कर सकते हैं अपने आने वाले लाइफ को एक सिक्योर भविष्य देने के लिए। और बिल्कुल और भी चीज़ें हैं बताने के लिए आपको। सुनते रहिए मेरे साथ अल्फा जेन।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु
1: हाय
0: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर। हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
5: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
4: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
6: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
7: ठीक है,
6: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
5: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
4: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
8: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
4: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
5: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
4: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
5: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
4: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
5: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
4: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
5: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
9: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी।

0: यानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ और प्रोग्राम है अल्फा जेन और बात हो रही है करियर पाथवे और लाइब्रेरी साइंस के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं, कोर्सेज के बारे में बता दिया, कहाँ से करना है ये बता दिया और जब इस कोर्स को कर लेते हैं आप तो कहाँ कहाँ आपकी जॉब एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं ये बताते हैं आपको। सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी में आप काम कर सकते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में काम कर सकते हैं, स्कूल और कॉलेज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर आप काम कर सकते हैं, इसके अलावा लॉ फर्म और म्यूज़िक और मीडिया हाउस में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस अगर आपने की हुई है और बहुत सारे अनुभव के साथ आप आने वाले समय में एक अच्छी हैंडसम सैलरी इंक्रीज करवा सकते हैं अपनी। उसके बाद जब स्किल्स की बात की है हमने तो स्किल्स में जैसे मैंने बताया आपको कि आपको बुक्स को पढ़ने और उनको मैनेज करने का आपको आना चाहिए। जी हाँ, बुक्स को पढ़ने का अगर आपका रुचि है आपकी और साथ ही साथ उनको कैसे मैनेज करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, ये ज़रूरी स्किल होती है इसमें। इसके अलावा क्योंकि डिजिटल युग है तो कंप्यूटर और डिजिटल डेटाबेस की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, डेटा बेसिस को कैसे संभालना है, किस तरह से इसको मैनेज करना है ये भी होना चाहिए। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर जगह है और पेशेंस के साथ आप इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं।

भारत में इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए इग्नू और विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और जब सरकारी नौकरियों के लिए समय समय पर कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC के थ्रू और UPSC, स्टेट PCS और विश्वविद्यालयों द्वारा निकाली गई जाने वाली जो वैकेंसीज होती हैं उस पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक अच्छा करियर आपके लिए लाइब्रेरी साइंस में है।

कहते हैं कि मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है और जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। तो अपने आप को केंद्रित कीजिए और फोकस कीजिए, कौन सा करियर आपको चुनना है। अच्छा चुनाव, अच्छे करियर की चुनाव के साथ ही आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं लेती हूँ अभी आपसे विदा, फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर मिलूंगी आपसे आकाशवाणी रेनबो पर। अगला प्रोग्राम सिटी लाइट्स लेकर आ रही हैं गजब की गीतांजलि, जुड़े रहिएगा उनके साथ। फिर मिलेंगे आपसे किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा माशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन-जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिल नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने

का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ऑल राइट जी, अंदाज से आगाज समझ आ जाता है। आप जानते हैं कौन है आपके साथ, ओनली ऑन सिटी लाइट्स। जी बिल्कुल, आपका अपना, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन। बहुत ही खूबसूरत दिन लग रहा है मुझे, इसलिए दिन तो सारे खूबसूरत होने चाहिए, लेकिन ख़ासकर जब आपके साथ चाहिए एक घंटा मैं स्पेंड करती हूँ ना, ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन खूबसूरत दिन ही कोई नहीं है। आई जस्ट होप यू आर विशिंग ऑल्सो द सेम। मौसम का हालचाल, आपका हालचाल सब जानेंगे, उससे पहले थोड़ा सा जो वार्म अप होता है हम कर लेते हैं। अगर आपको लगता है आपको किसी को बुलाना है, बताना है, सिटी लाइट्स ज्वाइन करवाना है, तो करवा लीजिए। आ गए हैं बिल्कुल हम अपने मैजिकल पिटारे के साथ, ओनली ऑन सिटी लाइट्स। सुनो ना।

0: हाफिज।
1: माशाल्लाह कहने का दिल तो करता अगर वाकई वेदर ऐसा होता, लेकिन क्या करें, नहीं है। कोई बात नहीं, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। हमारे पास सारे मौसम है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, ह्यूमिडिटी है, जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। समझती हूँ कुछ चीज़ें आप नहीं मांगते हैं तब भी मिल जाती है, लेकिन ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉट लाइक ऑलवेज रोजी। तो अभी का जो हाल है, वाकई थोड़ी एक्सेसिव हीट लग रही होगी आपको आज, लेकिन अच्छी बात यह है अगर आप देखेंगे थोड़े दिनों से ना शाम को थोड़ी सी, मैं ठंडी हवा तो नहीं कहूँगी, नहीं तो सब मुझे कहने लगे कहाँ ठंडी कहाँ ठंडी, मतलब नॉर्मल, उतनी लू जैसी हवा नहीं है, एक बहुत ही डिसेंट सॉर्ट ऑफ आपको हवा लगती है। नीचे उतरते हो तो एकदम घुटन नहीं होती। 36 डिग्री टेम्परेचर है आज अभी इस वक्त, और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोच समझ के कर रहे हैं, तो इतनी गर्मी आपको लगेगी नहीं। तो ध्यान रखें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, डू नॉट हैव एनीथिंग एक्सेसिवली सॉल्टी और फ्राइड, यही कर सकते हो। बाकी गर्मी का जो ट्रीटमेंट है ना, वो क्या है बताइए। गर्मी का ट्रीटमेंट सिर्फ बचाव है, सिर्फ बचाव और कुछ नहीं है। बिलीव यू मी, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: अगर एफएम रेनबो क्लियरली बोल सकता ना, मतलब अपने आप से, तो जरूर एक चीज बोलता, वो कौन है जिसने मुझे मुड़ कर नहीं सुना। कई चीजें इतनी सिंबॉलिक होती है ना, तो आकाशवाणी एक्चुअली बहुत ही सिंबॉलिक है। और आपने भी देखा है 90 साल आकाशवाणी के इतने खूबसूरती से सेलिब्रेट हो रहे हैं, कितने सेलिब्रिटीज़ अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके करियर्स आकाशवाणी के थ्रू बने हैं, हम भी उन्हीं में से एक हैं। बट आकाशवाणी से एक जो कनेक्शन है ना, वो आप सबका नहीं, जितने भी लोग चाहे वो विदेशों में भी सुन रहे हैं, बहुत ही स्पेशल है। सो थैंक यू सो मच, ये इतना सारा प्यार एकदम से इसलिए मुझे आ जाता है, वैसे तो हमेशा ही रहता है लेकिन बोलना ज़रूरी मैं समझती हूँ, क्योंकि आप इतने मैसेजेस भेज देते हैं इंस्टेंटली कि पूछिए मत, ये जानते हुए भी कि सैटेलाइट्स मैसेज बेस्ड शो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना पूरा प्यार देते हैं। और ये मैं रीइटरेट करना चाहती हूँ फैक्ट कि आपके सारे मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ, फॉर श्योर पढ़ती हूँ, ठीक है ना। बाकी देखिए, मौसम का हाल तो इनेविटेबल है, हम सभी डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन जो सड़कों का हाल है ना, वो बताना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ सड़कों पे चलता रहता है, कभी कुछ काम चलता रहता है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कभी कोई प्रोटेस्ट है, तो इसलिए बताना पड़ता है। और अभी के लिए एक जो ट्रैफिक एडवाइजरी आप सुन लीजिए, अगर आप आते हैं गुड़गांव से या फिर आप दिल्ली से छतरपुर की तरफ जा रहे हैं या छतरपुर से आ रहे हैं ऑन SSN मार्ग स्पेशली, तो आप प्लीज़ बी केयरफुल, वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिल सकता है आज, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हो रहा है, तो जो नियर बाय पॉइंट है ना छतरपुर का, वो एरिया अफेक्टेड रहेगा ड्यू टू द ऑनगोइंग पब्लिक प्रोटेस्ट। तो इसमें अब सावधानी क्या आपको बरतनी है, वही कि आपको अवॉइड करने पड़ेंगे कुछ एरिया, स्पेशली छतरपुर मंदिर मार्ग, SSN मार्ग से आप जानते होंगे, वो जो नियर वाई पॉइंट बनता है ना मंदिर के सामने, हाँ समझ गए आप, ड्यूरिंग द पीक कंजेशन आ, तो खासकर आप वहाँ पे ना जाएं। और जो ना वो मंदिर, मैं कैसे समझाऊँ को, मंदिर के बैक साइड में रोड है, उसको एक ऑल्टरनेट रूट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, जो बंद रोड है ना गोदायपुर की तरफ, वहाँ से, और अपनी जर्नी को प्लीज़

0: एडवांस में प्लान करें आप, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप टाइम टू टाइम चलते हैं तब आपको ऐसे कोई जाम मिल जाते हैं या फिर आपको कंजेशन मिलती है तो बहुत गुस्सा आता है, और ये जो गुस्सा है इसको संभालने के लिए प्लीज़ बी अहेड ऑफ टाइम, टाइम लेके हाथ में चलें। और ख़ासकर अगर आप गाड़ी से जाते हैं ना, मेक श्योर कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके जाना ही चाहिए। अगर आपका कोई 2 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे का ब्रेक लेके चले आराम से, बिलीव यू मी, आपको इतना ज़्यादा सूदिंग लगेगा ना, आपको लगेगा ये चीज़ हमने पहले क्यों नहीं की, हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी ये। सो मेक श्योर कि जब आप कहीं के लिए भी अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, टाइम हाथ में लेके निकलें, ठीक है?
1: गोकुल की राधा चली ओ चली ओ चली, गोकुल की राधा चली ओ चली चली चली, गोकुल की।

नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 जून 2026 को आकाशवाणी के 9 दशकों की यात्रा पूरी होने जा रही है। इसी अवसर पर हम इस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ावों को आपके साथ साझा करेंगे, तो जुड़ जाइए हमारे साथ स्मृतियों के इस सफर की विशेष श्रृंखला आकाशवाणी एट 90 में मेरे यानी निशा भारद्वाज के साथ। January 10, 1993 को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहली बार फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दशकों से चली आ रही एक तरफा प्रसारण व्यवस्था को बदलते हुए श्रोताओं को केवल एक निष्क्रिय सुनने वाला नहीं रहने दिया गया, बल्कि उन्हें प्रसारण का एक जीवंत हिस्सा बनने का अवसर मिला। इसके माध्यम से स्वास्थ्य, तकनीक

एक शिक्षा और सरकारी नीतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर श्रोता सीधे सवाल पूछने लगे, जिससे सूचना का आदान प्रदान और भी सटीक हो गया। ये सेवा विशेष रूप से इंटरैक्टिव और युवा केंद्रित प्रसारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। इस कदम ने रेडियो को अधिक पारदर्शी, संवादात्मक और सहभागी माध्यम में बदल दिया। तो श्रोताओं, रेडियो की इस यात्रा के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी 90 में। फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए निशा भारद्वाज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: की वाणी आकाशवाणी
1: जी, हम सब की वाणी आकाशवाणी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वही हूँ आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी, ओनली ऑन स्टेशन ओवर द नेशन। बहुत सारी बातें नेशन के साथ मिलकर हम करते ही रहते हैं, लेकिन मौसम का हाल बता दिया आपको। अगर छतरपुर की तरफ से जा रहे हैं तो कैसे आपको अपने आप को बचाते हुए निकलना है, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, जस्ट बिकॉज ट्रैफिक हो सकता है, वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक बात मैं और सबसे पूछना चाहती हूँ, आप जानते हैं कि हम दो चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं, एक तो यूथ के मेंटल एंड फिज़िकल वेलबींग पे, और दूसरा ख़ासकर अगर उनकी कुछ समर वेकेशंस होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हमें लगता है कि अगर वो इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें तो वाकई दे कुड यूटिलाइज देयर हॉलीडेज़। तो वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके अगर घर में जो बच्चे हैं आजकल समर वेकेशंस उनकी शुरू हो चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है, मतलब आर दे रियली यूटिलाइजिंग देयर वेकेशंस, या आपको कुछ लगता है कि छुट्टी के अलावा और कुछ भी हो सकता है? अगर जब भी हम लोग कहते हैं ना वेकेशंस हैं, तो खाली छुट्टी है तो मतलब छुट्टी है, हर चीज़ से छुट्टी है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें खाना है, पीना है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना है, दिस इज़ व्हाट इज़ वेकेशन ऑल अबाउट। या फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे उनमें से हैं जो कहते हैं कि ये समर वेकेशन आई है, वी हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव नाउ, जो हम नॉर्मली स्कूल डेज में नहीं कर सकते, अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है हम कि कुछ ना कुछ हम ऐसा ख़ास करें जो हम यूटिलाइज़ कर सकें अपनी समर वेकेशंस को। ये आपको देखना है कि आपके बच्चे किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो पहली वाली कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं, तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, पहली वाली मतलब जिनको सिर्फ रेस्ट करना है। तो आप ना दो चीज़ें करना, एक तो आप उनको ये बोलना है कि चलिए पहला जो हफ्ता है ना वो जो करना चाहते हैं कर ले, जैसे घर में खाली वो टीवी देखना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, जस्ट मैं उसको वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करूँगी, कहूँगी, मुझे लगता है लेट्स जस्ट यूज़ अ टर्म कि वो टाइम को डिफरेंटली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको करने दीजिए। आफ्टर दैट आप उनको ना कुछ ऐसी चीज़, ऐसा आइडिया दें जिससे वो इंस्पायर हों टू डू समथिंग, टू लर्न समथिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे समर कैंप्स आजकल ऑर्गेनाइज होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारे जो समर कैंप्स हैं दे आर चार्जिंग मनी, बहुत सारे ऐसे समर कैंप्स हैं जो कि फ्री के आपको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिखाते हैं, बताते हैं, और ख़ासकर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं ना, आपके आसपास कोई भी गवर्नमेंट स्कूल होगा, आप उनको अप्रोच करेंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ उनके पास कोई ना कोई प्रोग्राम होता है जहाँ पर वो आके जो बच्चे फ्री में इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनको इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाते हैं, उनको ड्रामेटिक्स बताई जाती हैं, सिंगिंग ट्रेनिंग दी जाती है। आप अपने बच्चों को इनक्रेज कर सकते हैं कि वहाँ जाके दे शुड इनफैक्ट पार्टिसिपेट, घर में कुछ तो टाइम निकाल के बाहर जाए ना। और दूसरा, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया है समर कैंप फॉर स्टूडेंट्स, उसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आपको सुनते रहना पड़ेगा सिटी लाइट्स। जी बिल्कुल, मैं वही हूँ आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा खास आए जिसको आप इंजॉय करें।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित

0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
1: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
2: ठीक है,
1: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कितना प्यारा लगता है ना सुनने में. इंडीड दिस इज अपनी आकाशवाणी. हु एल्स कैन से दैट. हम सब मिलके जितनी बार भी कहें ना अपनी आकाशवाणी, ऐसा लगता है कि पता ही नहीं एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट आकाशवाणी, है ना. लेकिन अभी मैं आपको एक बहुत ही अलग संसार में लेके जाना चाहती हूँ. और उनके लिए मैं खासकर कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया ना कोई भी समर कैंप, तो मुझे लगता है कुछ तो आप ना बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं. और ख़ासकर जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना जहाँ पे आपको ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करना, आपको सिर्फ जाना है और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ ज़रूर जाया कीजिए. हाँ, जैसे मैं बता रही थी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं, बहुत ही मनोरंजक कैंप्स हैं ये, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पर ऑलरेडी होके आए हैं उन्होंने बहुत अच्छे इसके अपडेट्स दिए हैं. क्योंकि ये स्टार्ट तो हो गया था 18 मई से और ये 5 जून तक चलेगा. तो 2 बैच इसके ऑलरेडी हो चुके हैं. आज से एक और बैच स्टार्ट हुआ है 1 जून से, तो वो चलेगा 5 जून तक. तो इसमें पता है इतना इंटरेस्टिंग है, 6th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए कैंप है ये. और आपको जानकर खुशी होगी कि सुबह 9 से 11 बजे तक रहता है और इसमें जो सिखाते हैं ना वो आपको, और उसमें बाद उसके बाद उसकी प्रतियोगिताएँ होती हैं, बहुत सारे इनाम मिलते हैं. इट्स नॉट ओनली द कैंप फॉर लर्निंग, आपको बहुत सारा फन होगा इस कैंप में. तो इसमें कैसे आप अपनी सड़क सुरक्षा कर सकते हैं, आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं, और सड़क सुरक्षा पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रशिक्षण जो आप नहीं जान पाते वो भी मिलते हैं आपको. नुक्कड़ नाटक देखने को मिलेंगे, करने को भी मिलेंगे इनफैक्ट आपको. साइबर सुरक्षा जो कि इतना इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है उसके बारे में बताया जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, CPR के बारे में. तो आप मतलब ये जानिए कि जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको एक स्मूद इंटरेक्शन या फिर स्मूद ऑपरेशन के लिए चाहिए होती है ना, वो सब हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से ज़रूर जाना चाहिए, लास्ट लेग बचा है, आप जाके ट्राई कर सकते हैं. अगर आप पंजाबी बाग रहते हैं, रोशनारा बाग रहते हैं, बाल भवन के आसपास रहते हैं, हाई कोर्ट बटला सीनियर के आसपास रहते हैं और सो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आसपास रहते हैं, तो आप ज़रूर जाकर वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर. मुझे लगा आज ही आपको इससे थोड़ा डिटेल में बताऊं. मैं कितनी मदर्स को सुन रही हूं कि जब से गर्मियों की छुट्टियां हुई परेशान हो गए हूं, बच्चे कुछ करते नहीं है खाने के अलावा और टीवी देखने के अलावा, गेम्स खेलने के अलावा. गो आउट, डू समथिंग, हैव फन प्लीज़.

आओ जी ठोला जी, देखिए कितने ही आप मॉडर्न गाने सुन लें लेकिन जहाँ पर ऐसी बीट होती है ना उसका मुकाबला ही कोई नहीं होता। ऐसा लगता है कि इसको सुनते ही रहो, आप सुनते ही रहो, आप सुनते ही रहो। और ज्योति नूरा की तो आवाज़ आपको पता ही है, हालांकि बहुत ये दोनों सिस्टर्स पहले इकट्ठा गाती थी, अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं गाती हैं। देखिए कुछ नाम ऐसे होते हैं जब भी हम सुनते हैं ना तो अगर उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत प्लेजेंट नहीं है वो भी दिमाग में आती है। अरिजीत के गाने जब भी सुनते हैं, अभी चलाया था हमने पहले, तो मुझे हमेशा लगता है ओ माई गॉड, बिकॉज जब से अरिजीत ने कहा है कि बॉलीवुड में वो नहीं गाएंगे तब से ऐसा लगता है ना कि इट्स गोइंग टू बी सो एम्प्टी आफ्टर अ वाइल। के अभी तो चले बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो अरिजीत के ऑलरेडी उन्होंने गाए हुए हैं, पड़े हुए हैं बैंक्स में, म्यूजिक डायरेक्टर के पास, म्यूजिक बैंक्स में, है ना। अगर किसी को टर्मिनोलॉजी नहीं पता तो बता देती हूँ। तो फिर उनके लिए तो स्टिल इट्स ओके, वो रिलीज़ करते रहेंगे, टाइम निकल जाएगा। तब क्या होगा जब बिल्कुल ही वो म्यूज़िक बैंक्स भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अरिजीत कॉन्सर्ट करते रहेंगे, वो एक गुड न्यूज़ है। लेकिन फिर भी मूवी के जितने भी गाने आते हैं ना वो बहुत ही रिपीटेडली लोग सुन सकते हैं, कभी भी सुन सकते हैं। सो ये एक लॉस वाली बात है, ऐसा फील होता है अंदर से। खैर आपको हम किसी भी चीज़ का लॉस कभी भी फील नहीं होने देना चाहते, बिकॉज़ क्या होता है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में बिजी हम रहते हैं, हमारे दिमाग से स्किप करती रहती हैं। और कुछ चीज़ों के लिए तो जब भी मेरा शो होता है स्पेशली, मैं आपको स्पेशली आपकी बहुत ही फाइन असिस्टेंट बन के बता ही देती हूँ। यानी कि अगर किसी का बर्थडे है आज तो प्लीज़ मेक श्योर, आज क्या तारीख है, आज है नंबर 2 का दिन। तो जितने भी नंबर 2s हैं, यानी कि आज 2 तारीख है, जून है, जिनके बर्थडेज हैं आज, उनको अच्छे से याद करके विश कर दीजिए। अगर मिस कर दिया, एनिवर्सरीज हैं उनको भी विश कर दीजिए। और हमारे पास तो आती हैं बहुत सारे रिक्वेस्ट बर्थडे एनिवर्सरी की विश करने के लिए। तो भाई जितने भी वर्ल्ड वाइड लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरीज हैं, आकाशवाणी फैमिली की तरफ से उनको ढेरों ढेरों शुभकामनाएँ एंड ऑल द लव एंड ब्लेसिंग्स, नॉट ओनली फॉर दिस लाइफ, फॉर whatever you want to do in life and future lives also. Eternity तक हम आपको विश दे देते हैं। सो जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम टुडे एंड ऑलवेज। मुझे पता है ये बातें आप कहते हैं ग्रेट टाइम ऑलवेज नहीं हो सकते, नहीं होते हैं, बट एटीट्यूड ग्रेट रख सकते हैं हम अपना।

कोशिश यही करनी चाहिए, बाकी तो ठीक है, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ नॉट सो गुड भी देती है. लेट्स जस्ट टेक एवरीथिंग इनटू आवर स्ट्राइड एंड राइट नाउ, मुझे पता है जी पता है, क्या जानना चाहते हैं आप? देखिए हालचाल सबके बहुत अच्छे हैं. ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि आपके आसपास आप सीपी में ट्रैफिक है, ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है. अभी मैं स्टूडियो में हूँ, ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि जब हम बाहर निकलेंगे स्टूडियो से, सड़क पे उतरेंगे, तो पता चलेगा कि कितना ट्रैफिक है. हालांकि कुछ चीज़ें ना बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होना चाहिए, वो ये होती हैं कि अगर आप शाम को बाहर निकल रहे हैं ट्रैफिक आवर्स में, वर्किंग डे में, तो भाई ट्रैफिक मिलेगा आपको. सो मेक श्योर दैट यू मेक योर अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली. और प्लीज़ मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, बार बार कहती हूँ, लगातार कहती हूँ, अननेसेसरीली अगर आपको गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है ना, मत लेके जाइए, यूज़ मेट्रो प्लीज़, मोस्ट कन्वीनियंट है. मुझे पता है सीट मिलती है नहीं मिलती, वो एक क्वेश्चन मार्क रहता ही है, स्पेशली जब आप जहाँ से मेट्रो बन के चलती है वहाँ से नहीं बैठते. लेकिन आप टाइम कितना बचाते हैं अपना, और टाइमली पहुँच सकते हैं, सड़क पे भीड़ कम करते हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपका जो कंट्रीब्यूशन है, दैट रियली मीन्स अ लॉट. ट्राई करना, जस्ट गिव इट अ ट्राई, अगर पॉसिबल है करके थोड़ी कोशिश कीजिए, यू विल रियलाइज दैट यू आर एट ईज आफ्टर अ वाइल, ट्रस्ट मी.

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी वाणी बहुत दूर तक जा चुकी है और बड़ा अच्छा लगता है। नहीं आपने सुना, कल भी नंबर वन, आज भी बॉस हैं। बिल्कुल देखिए, बॉसमैनशिप तो कैसे साबित होती है ना, बॉसमैनशिप साबित होती है जब आप किसी का भला चाहते हैं, जब आप किसी को ग्रो करने में मदद करते हैं, जब आप ऐसी कुछ कोशिशें करते हैं जिससे कि ना केवल आपकी बल्कि आपके सामने वालों की, आपके जानने वालों की, आपके देश की, सबकी लाइफ में चेंज आए। सो दैट्स व्हाई आकाशवाणी इज द बॉस इंडीड। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गर्ल सबकी गीतांजलि सोनी के साथ ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन। अभी देर से ज्वाइन किया है कोई बात नहीं है, आवाज़ सुन ली, अंदाज सुन लिया, दिन बन गया हम सबका एक दूसरे का मिल के बात कर रहे हैं अच्छा सुनो, एक और तुम्हें ना बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सारी बातें इंटरेस्टिंग है लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। थोड़ी देर पहले मैंने बातें करते करते सबको बोला कि फोकस खाने में रहते, तो बड़े एकदम मैसेजेस आए कि अरे गर्मियाँ हैं तो खाएंगे नहीं और बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी छुट्टियों पर। तो मैं आपको ना, मुझे लगा थोड़ा सा डिटेल में बता ही देती हूँ। अभी खाने से हमारा तात्पर्य क्या है, नॉर्मल खाने की तो हम बात नहीं करते ना, खाने से तात्पर्य हम सोचते हैं चटपटी अमेजिंग चीज़ें छुट्टियों में खानी है। तो आपको जान के हैरानी भी होगी कि जो हम बातें करते हैं ना, फ्राइज चीज़ें खाने की, समोसे खाने की, पैटीज खाने की, ऐसे जितने भी टेम्पटिंग से स्नैक्स खाने की, ये ऑयल में तले जाते हैं, हम सभी जानते हैं। तो क्या होता है ना, थोड़े से डाइजेस्ट करने में स्लो होते हैं, इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। बच्चों का तो मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा होता है, लेकिन अगर आप डेली डेली सेम चीज़ें खाते हैं ना, तो वो आपको स्लगिश, ब्लोटेड ऐसी फीलिंग देते हैं कि जैसे आलस आ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा, और ये जो आपकी बॉडी में जितना भी हीट कंटेंट है इसको बढ़ा देते हैं। तो वैसी गर्मी में जो आपका पाचन शक्ति है वो थोड़ा सा धीरे काम करती है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। मैं हार्मफुल कहते हुए डरती हूँ क्योंकि सब गुस्सा करने लगते हैं मुझे कि क्या खाएंगे। देखिए वंस इन अ वाइल तो ठीक है, खा सकते हैं, एवरी सिंगल डे ये प्रॉमिस नहीं होना चाहिए कि शाम है, शाम हुई नहीं, बाहर गए नहीं, बस रेडियो पे चाउमीन खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, खाओ लेकिन मॉडरेट। अभी क्या है, दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ही पसंद है, बस फ्रिज में खोले, जूस निकाले, टेट्रा पैक पी रहे हैं, ठंडा है ना, आफ्टर ऑल गर्मी है,

तो मैं आपको ये बता दूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं मेरी पर्सनल बातें नहीं है, मैं पूरा प्रॉपर रिसर्च वर्क करती हूँ। और जो मैक्स हॉस्पिटल है उनका एक हेल्थ केयर जर्नल आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि ये जो चीज़ें हैं जिनको लोग हेल्थ ही मानते हैं ना, ये प्रैक्टिकली बहुत ही हीटी होती है। उन्होंने टर्म यूज़ किया था, क्यों होती है ना, जितने भी मैंगोज़ होते हैं, लीचीज़ होती हैं, जैक फ्रूट्स होते हैं, ये नेचुरली बहुत हाई शुगर होते हैं, तो ऑफन इसको हम लोग गर्म फल कहते हैं। मतलब तो इनको जितना आप कहते हैं, तब पहले कहते नहीं थे कि आम ज़्यादा खाओ, तो उसके साथ कच्ची लस्सी पीना ज़रूरी होता है, नहीं तो फुंसी फोड़ियाँ हो जाती हैं। यू रिमेंबर, ऐसे हमारे बड़े कहते थे कि कच्ची लस्सी साथ में पी लो ताकि गर्म ना करें। तो ये हालांकि हमें सोच के लगता है बड़ा हेल्थी है, हर रोज़ खाओ, जितने मर्जी खाओ, लेकिन बेसिकली ये गर्म तासीर होती है इनकी। तो इसीलिए जितने भी ये शुगर फिल्ड रेडीमेड टेट्रा पैक वाले होते हैं ना, उनको तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के पिया करो। इससे अच्छा मम्मी से कह के घर में शिकंजी है, खुद ही बना लो, कितनी देर लगती है, कम चीनी वाली है ना, वो पी लो। तो बेसिकली जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इवन अगर आप कोकोनट वाटर भी दिन के पी रहे हो ना, वो भी आपको गर्मी करते हैं, ये भी सोच समझ के पीना चाहिए। अब करें क्या ना, अब ये पूछने वाली बात है, तो हाई फाइबर मील उस ऑप्ट करो घर में। मुझे पता है रोटी सब्जी किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन मुझे पता है मदर्स बहुत ही क्रिएटिव हैं आजकल, तो वो कुछ ना कुछ अच्छा आपको बना के खिलाएंगी। कुकम्बर ज़्यादा खाओ, सैलड्स खाओ, लेटस खाओ, सिट्रस फ्रूट होते हैं ना वो खाओ, जितने भी प्रोसेस शुगर हैं, फ्राइड स्नैक्स हैं, प्लीज़ इसको जितना भी कट कर सकते हो ना। तो बेसिकली ये चीज़ें कंक्लूजन में ये निकाल के देना चाहती हूँ आपको, कि जो हमें अपने दिमाग में लगता है ना कि बस ये खा के तो हमारी ज़िंदगी बन गई, और एटलीस्ट ऐसा खा के हमें लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हमने अच्छा किया है। बिल्कुल उस टाइम के लिए अच्छा किया, बट लॉन्ग टर्म के लिए ना कुछ नुकसान हो सकता है। सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल द किडोज, ऑल द यंगस्टर्स, जो बाहर निकालते पहली नज़र उनकी जाती है कि हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जूसेस पीने हैं, और दूसरी और फाइनल नज़र जाती है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा चटपटा खाना है, अदरवाइज़ उसके बिना दिन नहीं बनेगा। कुछ अपने आप क्रिएटिवली हेल्थी खाओ, और गर्मी में जितनी भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इससे बच जाओगे।

जी बिल्कुल, अपने मूड को इसी तरीके से भयंकरली इंटरेस्टिंग खुशनुमा रखेगा। मुक्ति सैनी आ गई है स्टूडियो में, वो वाकई आज बहुत ही भयंकर मूड से स्टूडियो में घुसी हैं। कुछ तो खास वो आपसे पूछने और बताने वाली हैं अपने मैसेजेस के जरिए, बट फिलहाल के लिए आपको अपनी गजब की गीतांजलि को देनी होगी इजाजत। जल्द आपसे मुलाकात होगी, खुश रहिए और अपने आसपास वालों को खुश रखने की कोशिश कीजिए, एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑन द रोड्स। जल्द मिलते हैं आपसे, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते

0: वे राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: शाम हो चुकी है और इस शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए आ गई हूँ मैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी अर्जु दोस्त मुक्ति सैनी। प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स लेकर आ चुकी हूँ और मसाले का तड़का तो लग ही चुका है। कहीं पर डिनर बन चुका होगा, कहीं पर चाय की चुस्कियों की तैयारी हो रही होगी, कहीं स्नैक्स बन रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। कोई ना कोई तड़का तो आपकी लाइफ में जरूर होगा, चाहे वो जैम का तड़का हो या फिर घर जल्दी पहुंचने का हो या घर से फिर किसी पार्टी में जाना है या फिर अपनों से मिलना है, किसी दोस्त से मिलना है, खाना बनाना है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी होगी। तो वही सब उधेड़बुन दिमाग में चल रही है, तो चलिए वो चलाते रहिए क्योंकि यहाँ भी बहुत कुछ खास चलने वाला है आपके लिए, जिस पर हम आज करेंगे कुछ खास चर्चा। किस बारे में होगी वो बात बता देती हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आज मैं लेकर आई हूँ आज की शाम के लिए। तो भाई शाम को जो भी सॉन्ग सुनेंगे ना, कुछ तो एहसास होता है, बताइएगा क्या एहसास हुआ। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको एक दिन के लिए टाइम मशीन मिल जाए तो किस वक्त में आप वापस जाना चाहेंगे। अगर ऐसा हो कि भाई आपको कोई टाइम मशीन दे दी जाए और आपको कहे कि आप एक ही किसी पल में वापस जा सकते हैं, एक ही किसी समय में आप वापस जा सकते हैं, तो वो कौन सा समय होगा, कौन सा टाइम होगा और वो क्यों होगा समय कि उसमें आप वापस जाना चाहते हैं, बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कहां पर आपको भेजने अपने मैसेजेस, जो हमारे साथ नए श्रोतागण जुड़ रहे हैं, 9868107070 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बार फिर दोहरा देती हूं कि अगर आपको टाइम मशीन मिले कि आप पहले किसी वक्त में वापस जा सकते हैं तो वो वक्त कौन सा होगा जिसमें आप वापस जाना चाहेंगे और क्यों। नंबर 9868107070 आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर पहुंचा सकते हैं अपनी बात, और इस सॉन्ग के बाद आपके व्हाट्सएप मैसेजेस होंगे हमारे साथ।

वाकई में ये सॉन्ग सुनकर कहीं कहीं दिल जो है वो धड़कने लगा ना, और सोचने पर मजबूर हो गया भाई वो कौन से समय होगा, वो कौन सा टाइम होगा जिसमें हम फिर से वापस जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिमाग में तो इंस्टेंट आ गया होगा कि हम उस समय में जाना चाहते हैं। अक्सर हम सोचते रहते हैं ना कि वो दिन कितने अच्छे थे, वो पल कितने अच्छे थे, दिमाग में ये सब चीज़ें घूमती रहती हैं। तो चलिए वही आपसे जानना चाहते हैं कि आप किन पलों में वापस जाना चाहते हैं। मोहम्मद सरफराज आलम का ये जो कि हट दर्शना बाजार अररिया बिहार से ये मैसेज आया, वो लिखते हैं कि अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं अपने बचपन के दिनों में जाना चाहूँगा, उस दौर में जब ना मोबाइल था ना इंटरनेट की भाग दौड़, शाम होते ही दोस्तों के साथ खेलना, रेडियो सुनना, दादा नानी के साथ कहानियां सुनना और परिवार के साथ बैठकर हंसना गुनगुनाना ही सबसे बड़ा मनोरंजन था। मैं उन अनमोल पलों को फिर से जीना चाहूंगा क्योंकि वही जिंदगी के सबसे सच्चे और बेफिक्र दिन थे। भाई ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही है। मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि साथ में बैठ के एक से बातें हो जाती थी। अगर मेरे पास टाइम मशीन हो तो मैं अपने बचपन में जाना चाहूंगा, बिकॉज उससे अच्छा टाइम शायद ही किसी का होगा, बिना फोन बिना इंटरनेट के बिंदास लाइफ एंजॉय की। राकेश वोरा का मैसेज आया है ये बुराड़ी एनक्लेव से। अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो वापस अपने बचपन में जाना पसंद करूंगा क्योंकि बचपन हर गम से बेगाना होता है। हीरामणि वर्मा का छत्तीसगढ़ से ये मैसेज आया, भाई बचपन में ही सब जाना चाहते हैं। अगर मेरे पास ऐसा समय कभी आया तो मैं यही कोशिश करूंगा कि सुबह के 4 बजे मैं अतीत में लौटना चाहूंगा। मैं जो देखना चाहता हूं कि सुबह के 4 बजे मैं पृथ्वी पर पहली सूरज की जो किरण आती है उसे पृथ्वी पर मनवाने में कितना प्रभाव पड़ता है। क्या आप कहना चाहते हैं? शायद आपने थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा है तो वो आप और बता दें। सोनू का बिजनौर से वैसे ये मैसेज आया है, अगर टाइम मशीन मिले तो पहले बचपन के दौर में काल्पनिक जाना चाहूंगा क्योंकि बुढ़ापे और बचपन की उम्र में क्या समानता और क्या भिन्नता होती है। हाँ देखा है, जिद्दी बुढ़ापे और बचपन की उम्र में होते हैं बहुत सारे किस्से। अनिल शर्मा का सरिता विहार से ये मैसेज हम तक पहुंचा है और ये आया है कि मैं बाल्यकाल नर्सरी केजी में वापस जाना चाहता हूँ टाइम मशीन मिल जाए तो। दिनेश कुमार का तुलसीपुर नेपाल से हमको ये मैसेज आया है, देखते हैं कुछ अलग से भी हमको आता है या नहीं। आई वॉन्ट टू गो इन द पास्ट व्हेन आई वॉज 6th standard बिकॉज दैट टाइम इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। दैट टाइम आई हैव मल्टीपल फ्रेंड्स एंड नो टेंशन ऑफ एनीथिंग एक्सपेक्ट वन स्कूल। हाँ स्कूल की टेंशन होती थी लेकिन वो दिन सबसे बेहतर सबसे खास होते थे। यह है कि बस हम तो इसी पल में जीना चाहते हैं, काश वक्त यहीं रुक जाए। ये मैसेज हमें आया है, किसका है? विनायक का मैसेज है दिल्ली से। चलिए कुछ लोग ऐसे हैं कि इस वक्त को भी इंजॉय कर रहे हैं तो चलिए अच्छी बात है। लेकिन अभी अभी अगर हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं 102.6 के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर आप जुड़ रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए न्यूज़ ऑन AIR ऐप पे जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको बस बताना है, ये व्हाट्सएप तो आप अक्सर यूज़ करते रहते हैं, हमेशा हाथ में रहते हैं, हर किसी के स्टेटस मैसेजेस देखते ही रहते हैं, 9868107070 पर आप बता सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम मशीन हो और आपको एक बार वापस जाने का मौका मिले किसी उन पलों में, उन यादों में, तो वो कौन से पल, कौन सी यादें होंगी जिनमें आप वापस लौटना चाहेंगे और क्यों, बताइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल बहुत से बेहतरीन गीत कर रहे हैं आपका इंतजार। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी।

मुझे पता है अभी भी आप बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन दिनों की याद आ जाती है जब बहुत ही परेशान होते हैं, दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा होता और बहुत सारी टेंशन जब चलती है। तो हमारे पास पंकज का मैसेज है महाराष्ट्र से, वो लिखते हैं कि बचपन में वापस जाना चाहूंगा क्योंकि बचपन के दिनों में वापस जाकर अपने बचपन के दोस्त मिल जाएंगे और उनके साथ पहले जैसे खेल खेलेंगे और बिछड़े हुए दोस्तों से फिर मुलाकात हो जाएगी। और ये मैसेज हमारे पास आ गया है, किसका है किसका है किसका?

किसका है, नाम तो कहाँ है। गुन्नौर से आदिल कंवर तस्दीक का मैसेज आया है, अगर मुझको टाइम मशीन मिलती है तो मैं अपने बचपन में जाना चाहूँगा। उस बचपन में आज़ादी थी, ना फिक्र थी ना और था, सिर्फ खेलना खाना और मौज मस्ती करना। वो बचपन कितना सुहाना था, जहाँ फिर मुझको जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बस ख्वाहिश ही है ये। और ये है कि आज के टॉपिक पर कहना चाहूँगी, अगर मेरे पास टाइम मशीन मिल जाए तो अपने बचपन में जाना चाहिए, जब सर पे जिम्मेदारी नहीं होती थी। बहुत याद आती है वो पल। अंशी का मेरठ हस्तिनापुर से मैसेज आया है, लोग बचपन में जाना चाह रहे हैं लेकिन अब जो समय चल रहा है उसी को इंजॉय करो, नहीं तो आने वाले समय इस समय को याद करोगे। राजस्थान से निम्बाराम का मैसेज हमारे पास आया है। भाई कोई बात नहीं, कोई अगर याद कर भी रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन हाँ जो भी है जाना चाहते हैं तो जाना चाहते हैं। कार्तिक का मैसेज आया है हमारे पास, बिहार से मैसेज है, यदि मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं उस समय दौर से लौटना चाहता जब खेतों पर सरसों सोना बिखेरती थी, आम मंजीरियों की सुगंध हवाओं में घुलती थी, चांदनी रातें गांव की पगडंडियों पर चुपचाप उतर आती थी। मैं उस समय को देखना चाहता हूं जहां प्रकृति जीवन का सबसे मधुर संगीत थी, रिश्तों में आत्मीयता की ऊष्मा थी और सादगी ही जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य थी। शायद उस युग की मिट्टी में वह अपनापन था जिसकी सुगंध आज भी स्मृतियों में बसी हुई है। कार्तिक कुसुम यादव का ये मैसेज हम तक पहुँचा। भाई बहुत ही सुंदर बात आपने लिखी है, बहुत ही प्यारी बात आपने लिखी है। गाज़ियाबाद से पूजा कॉलोनी से कपिल यादव का मैसेज है, वो लिखते हैं कि मैं अपने भांजे गुलशन के साथ ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ और मुझे अगर टाइम मशीन इस्तेमाल करने का मौका मिले तो मैं अपने बचपन में जाना चाहूँगा। बचपन में बहुत मज़ा आता था और हाँ मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ, अपने ब्लाइंड दोस्तों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। ये बात तो है। और ये है कि पास्ट में जाना चाहूँगा, शालू का शादीपुर से ये मैसेज आया है, बल्कि लेकिन जाना कौन से पल में जाएंगे वो भी तो आप हमें बता दीजिए। मैं एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, यदि मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं आज से लगभग 600 साल पहले भूतकाल में जाना चाहूँगा। इसका कारण ये है कि मैं आज से 5 जन्म पहले एक उच्च कोटि का योगी था और मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी थी मुझे और आज मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं उस समय में वापस जाना चाहूँगा। मेरठ कैंट से कविता और दिग्दर्शन का ये मैसेज हम तक पहुँच जाए। तो भाई देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी पुराने समय में लोग जाना चाहते हैं। अगर आप हमें अभी अभी सुन रहे हैं, हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, तो बहुत ही खास इंटरेस्टिंग टॉपिक एक हम लेकर आए हैं, ये कि अगर आपको टाइम मशीन मिले और आप किसी भी एक समय में वापस लौटना चाहते हैं तो वो कौन सा समय होगा और क्यों होगा, बताइए। प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, और बातों और गीतों का सिलसिला तो खास आपके लिए चलता रहेगा। 9868107070 नंबर में बार बार दोहरा रही हूँ, फिर आप मैसेज भेजें और ये कहें कि भाई आपने हमारा मैसेज नहीं लिया, तो फिर ये शिकायतें यही ख़त्म हो जाएंगी।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात,

0: रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं आपके मैसेजेस के साथ जो पहुंच रहे हैं हम तक, और हम जानना चाहते हैं आपसे ये कि अगर आपको मौका मिले, टाइम मशीन आपको मिल जाए, तो आप किस समय में वापस जाना चाहेंगे और क्यों। ये सुदर्शन, अनीता और सिमरन का मैसेज हमें पास आया है सोनीपत से, और वो लिखते हैं कि बचपन जिंदगी का सुनहरा समय होता है, हम तो उस सुनहरे समय में ही जाना चाहेंगे। बचपन और भोलापन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने, और सबसे ज्यादा तादाद भाई बचपन के दिनों की ही यहाँ पे दिखाई दे रही है। राकेश ठाकुर का मैसेज है मोहन गार्डन उत्तम नगर से, और वो लिखते हैं कि मैं उस वक्त को भी एंजॉय कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी रिसोर्सफुल और लग्जरी लाइफ जी रहा हूं। भाई बहुत बढ़िया बात है। मैं टाइम मशीन से ये कहूंगा कि मुझे स्टूडेंट लाइफ में ले जाए, अपने दोस्तों से स्कूल छूटने के बाद ही मस्ती जो है वो सब भूल गया हूँ, सब याद आता है, कैंटीन में गपशप करना, उनसे बातें करना। रवि जोशी का मेरठ से हमको ये मैसेज आया है। मैं कृष्ण कुमार साहू 52 ईयर्स का हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से। टाइम मशीन मिले अभी के अभी तो आपके प्यारे कलेक्शंस वाले सॉन्ग को फिर से रिपीट सुनना चाहूँगा। वही शुक्रिया शुक्रिया, और आप बने रहिए, एक से बढ़कर एक सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर हमेशा आप सभी लोगों के लिए रहते हैं। बचपन में वापस जाना चाहूँगा, शाली ने शादीपुर से हमको ये मैसेज किया है। मशीन के माध्यम से मुझे वापस जाना पड़े तो मैं अपनी शादी से पूर्व समय में जाना चाहूँगा, जहाँ मैं अपने होने वाली वाइफ को डेट किया करता था, वो आज भी मुझे बड़ी याद दिलाती है। राजेश कुमार का ये मेरठ से मैसेज आया, भाई क्या बात है, ये उन सुनहरे पलों को फिर से जीना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने यहाँ लिखी है। सनी का मैसेज आया है कि मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं स्कूल लाइफ में जाना चाहूँगा। बचपन में बेर और कच्चे आम तोड़ के कच्चे आम में नमक के साथ खाते थे, और पहले के जो गेम में मज़ा आता था वो आज कहाँ है, वो सब कुछ अलग था। कंचे खेलना और साथ ही बरगद के पेड़ की टहनियों में झूला झूलना बहुत ही मज़ा आता था। भाई पुराने दिन लौट आए तो कितना मज़ा आएगा ना, सब ये यादें बन चुकी हैं, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुनहरी यादें हमारे लिए बन चुकी हैं। एक बहुत ही लंबा सा मैसेज हम तक पहुंचा है, तो थोड़ा सा आप अगर बताएंगे। मम्मी पापा का स्कूल, पापा की उंगली पकड़ कर पूरी दुनिया जीती थी, मम्मी की डांट में पूरी तालीम थी, सच दुनिया घूम ली पर पापा का कंधा सबसे ऊंचा लगा, बड़े होकर सब कुछ पा लिया बस उस बचपन को खो दिया। रघुनाथपुरा जिले से श्रीगंगानगर राजस्थान से ये मैसेज आया है। हेमलता, हीना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी, लालगिरी गोस्वामी का मैसेज हम तक पहुंचा है। तो भाई आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाते रहिए कि अगर आपको टाइम मशीन मिले और किसी एक समय में आपको वापस जाना हो तो वो समय कौन सा होगा। टाइम मशीन मिले तो मैं मासूमियत वाले बचपन में जीना चाहूँगा, वो पल जिसने लोगों की असलियत से बेखबर थे और सब साथ थे, ना कोई टेंशन ना कोई मतभेद, बस एक खट्टी मीठी सुखी परिवार हुआ करता था। चलिए भाई याद आ गए, वैसे अगर ना भी जा पाए लेकिन उन पलों को जो याद कर लेना, जी लिया है ना इस समय, वो सबसे अच्छा है, सबसे खास है। प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में मैं हूँ आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी।

भाई हौले हौले कुछ भी हो जाता है, वो टाइम मशीन आपको मिले या ना मिले, लेकिन हौले हौले उसको सोचने से ही कितनी खुशी हो रही है इस बात का भी अंदाज़ा हम और आप मिलकर लगा सकते हैं। अगर अवसर मिला तो मैं लौटना चाहूँगा जब पढ़ाई करने में मैं डिवीज़न नहीं ला पाया था। भीरू लाल का मध्य प्रदेश से हमको ये मैसेज आया है। तो चलिए कुछ खट्टी मीठी यादों में तो वापस जाना चाहते हैं। टाइम मशीन में सन 2002 में जाना चाहूँगा, क्योंकि तब मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो जाने के कारण दूसरे शहर जाना पड़ा था। उसके बाद घर में बहुत सारी समस्याएं आई थी। मैं उस समय में जाकर उस बुरे अनुभव को मिटाना चाहूंगा और अपने ही शहर में मम्मी पापा भाई बहन के साथ फिर से खुश रहना चाहूंगा। परवीन चौहान का खरगोन मध्य प्रदेश से हमको ये मैसेज आया है। मैडम अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं अपनी यंग एज यानी कि 20s में वापस जाना चाहूंगा। वो कॉलेज लाइफ के सुनहरे पल आज भी यादों में बसे हुए हैं। बसंत तोमर का मेरठ से ये मैसेज आया। ये हुई ना कुछ अलग सी बात। भुवनेश का मैसेज है अशोक विहार दिल्ली से, और वो लिखते हैं कि आई वुड लाइक टू से दैट इफ आई गेट द टाइम मशीन आई वुड लाइक टू गो बैक टू दैट टाइम व्हेन ऑन माय बर्थडे आई वेंट टू वॉच द लाइव क्रिकेट मैच ऑफ टीम इंडिया इन द स्टेडियम। आई वांट टू सी माय फेवरेट प्लेयर्स और साथ ही उनके साथ उन्होंने सेल्फी भी ली थी। भाई बहुत ही बढ़िया बात है। आज दौड़कर किसी तरह ट्रेन में चढ़ पाया हूँ और ये सवाल जो है मैं वो सुन नहीं पाया हूँ, तो हम आपको बता देंगे कि आज का सवाल क्या है। अगर मुझे टाइम मशीन मिले तो मैं उन लम्हों को जीने चाहूँगा जब मैंने मोहब्बत के रंग पहली बार किसी की आँखों में देखे थे, जब खिले खिले फूलों में उसका मुस्कुराता चेहरा नज़र आता था, गुनगुनाती हवा उसकी उड़ती हुई जुल्फों का एहसास कराती थी, रातों का चमकता चाँद उसकी खूबसूरती का एहसास कराता था, और बागों में बोलती कोयल उसकी मखमली आवाज का एहसास कराती थी। काश वो लम्हे फिर से जी जा सकते। शमशुल कमर राही का ये बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज हम तक पहुंचा, और बहुत ही प्यारी शायरी आपने लिखी है यहाँ पे। शाइस्ता खान गुलफाम खान का मैसेज हम तक पहुंचा है। मैं मैसेज कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं है, तो भाई मैसेज क्या कर रहे हैं जो हमने पूछा है वो भी तो बताइए हमको। और ये है कि प्लेलिस्ट अच्छी है, सुकून दे रही है, बस यूँ ही चलते रहें, ये सॉन्ग यही चाहते हैं। राजेश भल्ला का कंकड़खेड़ा मेड़ से हमको ये मैसेज आया है। और है आप बताइए ना क्या क्या

चाहते हैं भाई, मैसेज तो आप भेज रहे हैं लेकिन मैसेज में कहना क्या चाहते हैं वो भी हमें बताइए। अभी ट्यून क्या है, क्या चल रहा है और मैं नहीं सुन पाया हूँ, तो चलिए अभी बता देते हैं आपको थोड़ी देर में। अगर मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो अपने सभी बचपन के दोस्तों से मिलना चाहूँगा। KS प्रजापति, हैदरपुर दिल्ली से ये मैसेज आया है। तो चलिए हम आपसे बता देते हैं, जो भी नए श्रोतागण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगभग कुछ समय जो हमारे पास है मैं आपको बता देती हूँ। हमने पूछा है, ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए और आप फिर किसी पलों में वापस जाना चाहते हैं, कुछ लम्हों में वापस जाना चाहते हैं, तो वो कौन सा समय होगा जिसमें आप वापस जाना चाहते हैं और क्यों? इतनी सी बात है जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9868107070 पर।

और ये हम तक मैसेज आया है मोहम्मद फुरकान का। वो लिखती हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं वापस अपने बर्थ प्लेस ही जाना चाहूँगा। पूरा बचपन लड़कपन मैंने वहीं पर गुजारा है और मैं वहीं पर अपने दोस्तों के साथ रहना चाहता हूँ। वहाँ की याद मुझे बहुत ही ज़्यादा आती है। ये मैसेज हम तक पहुँचा है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। अगर हमें टाइम मशीन मिल जाए तो हम अपने बचपन के उन दिनों में जीना चाहेंगे जो कभी नहीं भूले जा सकते, क्योंकि बचपन हर गम से बेगाना होता है। चलिए, सही बात है। और ये मैसेज है, ये कुछ हमसे गाने सुनना चाहते हैं। तो भाई, गाने तो हम प्ले कर रहे हैं, क्या आपको ये सॉन्ग्स पसंद नहीं आ रहे जो आप खास रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा रहे हैं? फिलहाल ये प्रोग्राम है मैसेज का, कि आप अगर हमें कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें मैसेज भेज सकते हैं और उन सुनहरी यादों को हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। भाई, मुझे भी समय मिला तो मैं जाना चाहूँगी उन सुनहरी यादों में। स्कूल डेज तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं कॉलेज डेज में जाना चाहूँगी, जहाँ पर ढेर सारी मस्ती होती थी, पढ़ाई के अलावा सब होता था। खूब बंक मार के मूवीज देखते थे और वो जो समय था ना, खूब खाने पीने जाते थे, खूब मस्ती करते थे और कोई भी टेंशन उस समय भी नहीं थी कि भाई आगे करियर के बारे में सोचें या कुछ और करना है, वो सब चीज़ें नहीं होती थी। तो वो पल सबसे ज़्यादा अच्छे और सबसे ज़्यादा खास होते थे। यदि हमें कोई ऐसा अवसर मिले तो अपने बचपन के दिनों में लौटना चाहेंगे, जहाँ फिर से माता पिता का साथ हो और साथ ही अपनी हर बात को मनवाने की जिद करना, क्योंकि माता पिता के समय में ही ऐसा होता है। अपनी छोटी छोटी बातों के लिए जिद करके एक कोने में रोट कर बैठ जाना और अंत में किसी तरह से भी अपनी बात को मनवा लेना। काश ऐसा हो पाता। ये मैसेज हम तक पहुंचा है अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक का, मधु नायक का मैसेज हम तक पहुंचा है। भाई, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। वही ना, ये सिर्फ यादें रह जाती हैं, लेकिन अगर अभी ये सोच के ही कोई ना कोई ऐसा एहसास होगा कि वाकई में वो पल फिर से आ जाए, फिर से जी ले उन यादों को, तो मजा ही आ जाए।

ये दिल तो आपका लगे या ना लगे ये तो पता नहीं, लेकिन ये दिल आपसे चाहता बहुत कुछ है। मैं आपको बता देती हूँ, उज्जैन से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। गांव से मैं अपने एक दोस्त की बारात में टाइम मशीन के द्वारा वापस जाना चाहूंगा ताकि मैं उन पलों को फिर से इंजॉय कर सकूं। भाई बहुत ही खास दोस्त है कि अगर आपको टाइम मशीन मिले तो आप उसकी शादी में वापस जाना चाहेंगे, उस बारात के मजे आप फिर से लेना चाहेंगे। तो यही हमारा प्रोग्राम था मैसेज मसाला मिक्स, जिसमें आपने भेजे ढेर सारे मैसेज और प्यारी प्यारी हमारी बातें हुई। शाम बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खुशनुमा बन चुकी है। तो फिर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आगे आने वाले प्रोग्रामों की रूपरेखा क्या रहेगी। आप सुनेंगे यू आस्क्ड फॉर इट लिपिका के साथ आज 7 बजे, और 8 बजे सुनेंगे आप म्यूजिक मस्ती मुक्ति के साथ, और उसके बाद 9 बजे का समय रहेगा आपकी याद आती रही प्रियंका त्रिपाठी के साथ। मैं मिलती हूँ 8 बजे, तब तक के लिए सॉन्ग आप इंजॉय कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातीले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं

में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: अरे तुम काका बताई भैया हमरा हाल का है।
2: बता दे।
1: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार कि हम कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान में जान।

0: प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती की शुरुआत हो चुकी है एकदम मस्त भरे सॉन्ग के साथ में। तो आप भी तैयार हैं म्यूजिक मस्ती के लिए, क्योंकि मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, जो बिल्कुल तैयार है म्यूजिक मस्ती के लिए। अपने पिटारे अपनी प्लेलिस्ट को बिल्कुल तैयार करके खास आपके लिए लेकर आई हूं कि आप कहीं भी ये ना सोचे कि कुछ मिस रह गया, कुछ ऐसा होता तो बेहतर होता, कुछ ये वाले सॉन्ग्स होते तो बेहतर रहता। एक भी सॉन्ग आज आप गेस नहीं कर पाएंगे कौन से मूड के किस तरह के ट्रैक आज आपके लिए आने वाले ना, जबरदस्त एक से बढ़कर एक सॉन्ग आने वाले। जैसे दिल्ली का मौसम बदलता रहता है ना, वैसे यहाँ पर जब आप सुनेंगे ये प्लेलिस्ट तो आप कहेंगे भाई सब कुछ बदल रहा है और कुछ चेंजेस अच्छे के लिए होते हैं। तो चलिए ये बदलाव की शुरुआत यहीं से करते हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो से, और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए। तो कौन से सॉन्ग्स की है तैयारी, कौन सा सॉन्ग आप सुनना चाहते हैं, बस आपकी आवाज हम तक पहुंच गई है, क्योंकि दिल से दिल तक हम पहुंचते हैं सीधा आप तक, म्यूजिकली योर्स।
1: बेलिसिमो
2: आ,

देखिए, दिल चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पर हम गौर नहीं कर रहे, हमें कुछ और चीज पे गौर करना है। और शायद आप मेरा इशारा बिल्कुल समझ गए, हमें इस पर ध्यान देना है कि क्या कुछ लूज हो रहा है हम में से। जी हाँ, अपनों को लूज करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ वेट लूज करने की बात। मुझे पता है कहीं ना कहीं जब ऐसी बातें होती है ना, थोड़ा सा ड्रामेटिक होने की कोशिश करते हैं, इमोशनल होने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर वो किस्सा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको ना इमोशनल होना है, ड्रामेटिक होना है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी अच्छी हेल्थ पर। अगर अच्छी हेल्थ पे फोकस कर लिया तो समझिए कि आपने सब कुछ कर लिया अपने साथ में। तो ये वो सॉन्ग्स हैं जहां पर आप पुराने दिनों को याद करते हुए, ओल्ड मेमोरीज को याद करते हुए, ओल्ड इज गोल्ड वाले सॉन्ग आपके लिए प्ले हो रहे हैं यहां पर, जिस पर आप थिरक सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं, एक लंबी वॉक पर निकल सकते हैं और अपने ही ख्यालों में गुम हो सकते हैं। तो बेहतर होगा आपके लिए क्या, साथ ही साथ वॉक के द्वारा आप एकदम फिट हो जाएंगे और माइंड भी आपका रिफ्रेश हो जाएगा। बस यही तो चाहते हैं, यही तो कोशिश होती है हमारी और आपकी कि हम आपसे कुछ, आप हमसे कहें या ना कहें, लेकिन ये दिल का जो कनेक्शन है ना, वो टूटता ही नहीं है, वो सिर्फ पक्के वाला जुड़ गया है। और ये जो रिश्ता है वो साथ में बना रहेगा आपके साथ में, क्योंकि म्यूजिक मस्ती मुक्ति रहेगी आपके साथ में 9 बजे तक। तो कैसे मिस होगी ये मस्ती, बिल्कुल भी नहीं होने वाली। बस आप ट्यून इन कर लीजिए और एक से बढ़कर एक सॉन्ग आपके लिए आते रहेंगे। बैक टू बैक सॉन्ग्स का सिलसिला भी यहां पे जारी रहने वाला है। कुछ थोड़ी सी तैयारी मैंने की है, थोड़ी सी तैयारी आप कर लीजिए। बस अगर घर पहुंच चुके हैं या फिर रेस्ट आपने कर लिया है, खा पी लिया है, तो भी कोई बात नहीं है। और अगर खाया पिया नहीं है, थोड़ा लेट खाते हैं, तो वॉक पर निकल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो घर में चल लीजिए, पार्किंग में चल लीजिए, छत पे चल लीजिए, बाहर रोड पे चल लीजिए। इतना टाइम ना सबके पास होता है, नहीं है तो थोड़ा सा निकाल के देखिए, कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है कि बस क्या कहा जाए।

0: आपसे बहुत बहुत बहुत प्यार करते हैं और हमने भी अपनी पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दी है, आपके लिए समर्पित कर दी है और ये खास कोशिश सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। अगर आपको म्यूजिक मस्ती की मस्ती के साथ मज़ा आ रहा है ना, तो बस देखिए अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बस यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं आपके पास।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

पैदल चल रहे हैं, पैदल चलने वाला साथ में चाहिए, ठीक है ना? ये गाड़ी का जो अपने चक्कर लगा लिया ना, ये बिल्कुल क्रॉस हो जाना चाहिए। देखिए, अगर आप पैदल चलेंगे, आपका साथी भी पैदल चलेगा, तो दोनों की हेल्थ कितनी फिट रहेगी। देखिए कितने काम की बात कही है ना मैंने आपसे। देखिए, आप मुझे मारने बिल्कुल मत आ जाइएगा। वैसे इस बात में कोई दो राय भी नहीं है कि अगर आप पैदल चल रहे हैं, आपका साथी भी पैदल चलने में आपके साथ बहुत खुश होता है, उसे भी लंबी वॉक पर जाना पसंद है, तो फिर ये मैच एकदम परफेक्ट है। बाकी चीज़ों से मैच हटाइए, ये देखिए आपके साथ पैदल लंबी वॉक पर और एक्सरसाइज में कौन आपका साथ बटा सकता है, इससे बेहतर कुछ नहीं है। हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ज्ञानवर्धक बातों का सिलसिला एक बार मुक्ति के साथ हो ही जाता है। फिलहाल वो तड़का यहाँ पर लग चुका है। तो आप भी चाहते हैं कुछ थिरकना, कुछ और अपने मूड को चेंज करना, तो फिर कहीं और क्यों जाना है। 102.6 को ट्यून इन कीजिए और थोड़ा सा वॉल्यूम जो है ना वो अप कर लीजिए। फिर आपका कहीं जाने का नहीं करेगा, कुछ सोचने का मन नहीं करेगा, दिमाग में इतने अच्छे ख्याल आएंगे, इतनी अच्छी चीजें आएंगी, इतने अच्छे विचार आएंगे ना कि आपको लगेगा बस सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। तो सुनना ही तो है, बस आपको कोई काम करना ही नहीं है, ना ही आपको अपनी सॉन्ग लिस्ट प्ले लिस्ट निकालनी है, उसको शफल करना है कि ये सॉन्ग प्ले करूं ये सॉन्ग प्ले करूं, ना जी ना, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती के साथ हर रोज ठीक 8 बजे जुड़ जाना है। फिलहाल आज मैं हूं आपके साथ, आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, और बेस्ट से बेस्ट सॉन्ग्स का सिलसिला यहाँ पर जारी रखूंगी खास आपके लिए।

0: म्यूजिक मस्ती में म्यूजिक की मस्ती हो चुकी है मुझे लगता है। नहीं नहीं नहीं, अभी एक सॉन्ग बाकी है आपके लिए। ऐसे कैसे एंडिंग तो बढ़िया होनी बनती है, अगर एंडिंग अच्छी नहीं है तो फिर लगता है ना कि कुछ अधूरा सा है। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी अधूरा नहीं होता है, आकाशवाणी रेनबो पूरा का पूरा सीधा आप तक पहुँचता है 102.6 के माध्यम से, और हम और आप भी आपके साथ और आप हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल मुक्ति कहेगी आपसे इतना ही कि मेरे जाने का वक्त हो चला है, और 9 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम आपकी याद आती रही प्रियंका त्रिपाठी के साथ। और उसके बाद
1: मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अभी ना जाओ छोड़ कर।
0: मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊंगी प्रियंका, मैं बिल्कुल साथ में बनी रहूंगी आपके, और लगातार घर जाते जाते आपको सुनूंगी, क्योंकि आपकी याद आती रही प्रोग्राम कैसे मिस किया जा सकता है। बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, प्रियंका के साथ बने रहना है। और उसके बाद आप सुनेंगे म्यूजिक मिक्स 10 बजे लिपिका दास के साथ, और फिर 11 बजे हम सभी का फेवरेट रंगे महफिल प्रियंका त्रिपाठी रहेंगी आपके साथ। तो मुक्ति कहेगी बस इतना ही, मैं चलती हूँ, क्योंकि ये बेहतरीन प्रोग्राम भी तो हम और आपको मिलकर सुनने हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्यार की इज्जत कीजिए, आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी।

0: नमस्कार। कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

और ख्वाबों को हकीकत बनाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है, और लेकिन जब आपकी एक तरीके से विल पावर आपके साथ होती है ना, तो हर मुश्किल आसान होने लगती है। इसलिए ख्वाहिशें कीजिए, ख्वाब देखिए और उनको सच करने के लिए पुरजोर कोशिश कीजिए। प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफ एम रेनबो पर। और आज के प्रोग्राम में ना मुझे थोड़ी सी आपकी भी हेल्प चाहिए। हेल्प ये चाहिए कि शेयर कीजिए ना मेरे साथ कि आपके पास क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको किसी की याद दिलाती हो, कोई भी हो, मतलब वो आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो कोई भी दोस्त हो सकता है, आपकी ज़िंदगी का कोई भी एक ऐसा शख्स जो आपके लिए बहुत ख़ास हो, और उसकी दी हुई कोई चीज़ आपके पास हो जिसे जब भी आप देखते हो या जब भी वो आपकी आंखों के सामने आ जाती हो तो आपको उस शख्स की याद आ जाती हो। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि उस शख्स से मिले हुए एक वक्त हो गया हो, तब यादों की कद्र ज़्यादा होती है ना। आप सोचिए और कहाँ पर शेयर करना है आप जानते ही हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोगों के पास है 9868107070। शेयर कीजिए और तब तक मैं आपके लिए प्ले करती हूँ बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग फ्रॉम द मूवी रज़ा।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी आप प्रोग्राम चल रहा है आपकी आवाज़ आती रही, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। सौरभ बनीजा का मैसेज हमारे पास गाजियाबाद से, वेलकम बैक। वैसे हम कहीं गए नहीं थे जनाब, यहीं पर थे। इसके अलावा एक और मैसेज है हमारे पास, ये है सरफराज आलम साहब का। कहते हैं प्रियंका जी, हमारी ज़िंदगी में भी एक शख्स थी जिनकी याददाश्त भी आती है, काफ़ी सारे तोहफों से जुड़ी हुई है। चांदी की कलम है, चाबी की रिंग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जब भी उनको देखते हैं तो यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल वो उनकी ज़िंदगी में नहीं है। और उन्होंने आलम साहब को शायरी की राह दिखा दी है। चलिए, गई भी तो कुछ खूबसूरत ही देकर गई हैं आपको। संभाल कर रखिएगा इसे। और यहाँ एक और मैसेज है हमारे पास, ये है अच्छा चलिए, वैसे मैंने यहाँ पर पूछा है जनाब कि कोई ऐसी मेमोरी है आपकी, या फिर आपके पास कोई ऐसी शय हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको किसी ख़ास की याद दिलाती हो, आपकी किसी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई ख़ास शख्स, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, शेयर कीजिए हमारे साथ। और इसके अलावा एक और बड़ा प्यारा सा मैसेज है, जौनपुर उत्तर प्रदेश से है ये, सोनू वर्मा जी का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। फिलहाल ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए, तब तक और मैसेजेस आते हैं फिर लेंगे उनको। फिलहाल ये सॉन्ग आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी हाँ, प्रोग्राम आपका अपना, आपकी आजादी रही। और ये कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान साहब का मैसेज हमारे पास, फजी फराज फरहीन फरहान फारिया थायरा, इन सभी का मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और यहाँ शिकायत है सरफराज आलम साहब की, जी शहर का नाम भी लीजिए तो लीजिए जी, जो कि हाट दर्शना बाजार हरे बिहार से खुश। और इसके अलावा एक और मैसेज है हमारे पास, ये है पंकज हैं अमरावती महाराष्ट्र, और आपकी याद आती रही। अच्छा, सॉन्ग आपका बड़ा फेवरेट है ये, ओके। अरे बाप रे बाप, पूरे पूरे गानों की लिस्ट लगाई हुई है आपने, थैंक यू। नेहा का भी मैसेज है हमारे पास, और जो नेहा है वो कहती हैं कि इनके पास इनकी एक फ्रेंड का दिया हुआ एक तोहफा है, एक फ़ोटो फ्रेम है, जब ये 12th क्लास में थी तब इनकी फ्रेंड ने इनको गिफ्ट किया था, और वो फ्रेंड इनसे बहुत दूर हैं, और जो स्कूल टाइम से ही उनके साथ थी उनकी फ्रेंड, लेकिन अब उनके साथ नहीं है वो। और जब भी वो फ़ोटो फ्रेम देखती हैं, वो दिया हुआ उनका गिफ्ट, क्योंकि उसमें इन्हीं दोनों सहेलियों की जो फ़ोटो है वो लगी हुई है, पिक्चर लगी हुई है, तो उन्हें बहुत याद आती है। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल नेहा, उम्मीद है कि आपकी जो फ्रेंड है वो जहाँ भी होंगी ठीक होंगी।

और ये एक और सॉन्ग है हमारे पास आप सभी लोगों के लिए। और इस खूबसूरत गाने की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ ये है कि बड़ी ही खूबसूरत फिल्म से है। ये फिल्म है साजन, कुमार शानू की आवाज़ है इसमें। एंजॉय दिस वन।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

जी हाँ, प्रोग्राम आपका रंगे महफिल, लेकिन अब बस थोड़ी ही देर के लिए हम साथ हैं, क्योंकि 10 बजे जो अगला प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा और फिर हमारी मुलाकात होगी 11 बजे, यानी कि रंगे महफिल में। लेकिन अभी वहाँ तक का सफ़र ज़रा लंबा है और उससे पहले ही ये एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है मेरे पास आप सभी लोगों के लिए। एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर।

और अब वक्त हो चुका है आपसे बाय कहने का, लेकिन अकेला नहीं छोड़ूंगी आपको। कुमार शानू की आवाज़ को एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, हालांकि 90s की फिल्म नहीं है, 90s का भी सॉन्ग नहीं है, लेकिन जिसमें टच है ना जी, वो 90s का ही है। सो एंजॉय दिस वन फ्रॉम द मूवी दम लगा के आयशा, आयुष्मान खुराना, ये सिनेमा दिस मूवी भूमि। एंजॉय दिस सॉन्ग और मिलते हैं 11 बजे। ख्याल रखिएगा अपना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थी के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए

0: स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: We categorically reject
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: Desist from making any comment on them.
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपुकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम ट्रू मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म विब्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्ष से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा है कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 38 रन से जीता, वहीं दूसरा मैच इंग्लैंड ने 26 रन से जीतकर श्रृंखला को 1-1 से बराबर कर दिया था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4

दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रोग्राम चल रहा है रंगी महफिल। मैं हूं आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं। उम्र बीत जाती है,

बशीर बद्र साहब एक ऐसी शख्सियत जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका नाम उनकी लिखी नज़में, गज़लें, अल्फाज हमेशा हमारे बीच रहेंगे। उनके लिखे हुए कुछ अल्फाज थे जो बेहद खूबसूरत भी हैं और कहीं ना कहीं ज़िंदगी की हकीकत भी। वो लिखते हैं कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा तो सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों से भरा बिस्तर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। पत्थर पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मूंग हूँ, उसने कभी छूकर नहीं देखा।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो। मोहसिन नकवी साहब की कुछ लाइनें हैं। कितनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम रहते हो, इतने खाइफ क्यों रहते हो, हराहट से डर जाते हो। तेज हवा ने मुझसे पूछा, रेत पे आकर क्या लिखते हो। काश कोई हमसे भी पूछे, रात गए तक आखिर क्यों जगते हो। कुछ ऐसी ही अल्फाजों के साथ, या फिर कहिए कि कुछ मिलते जुलते जज्बात, रुदाली फिल्म की ये जो लता मंगेशकर की आवाज में है लाइनें, बेहद खूबसूरत हैं। आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विदेश विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कल मैक्सिको के विदेश मंत्री रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज को विदेश मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी है। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमति भी व्यक्त की है। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात 11 बजे शुरू हुआ। 3 मैचों की श्रृंखला फिलहाल एक एक की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार। सभी की ज़िंदगी इसी तरह से बढ़िया चले, अच्छी चले और पॉजिटिव नोट के साथ चले, जैसा कि इस गाने में भी आपने सुना कि किसी न किसी तरह की सकारात्मकताएं, पॉजिटिविटीज़ हम अपनी ज़िंदगी में तलाश रहे हैं। कहीं मिलती है तो एक अच्छी खासी कीमत के साथ, लेकिन बताओ उस कीमत से भी बेहतर है कि आप अपना एक संयमित भाव रखें, अपने मनोभाव बड़े बैलेंस्ड रखें, संतुलित रखें, पेशेंस को कभी ना जाने दें अपने हाथ से। और उसके बाद जो भी आपको नाप तोल करने के लिए मिलता है, कोई भी किस्सा, घटना, कुछ भी जो जीवन में अगले पल होने वाला है, उसको बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ, सब्र के साथ जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ जो आपको फैसले लेने होंगे ना, चाहे आपकी पेशेवर जीवन की बात हो यहाँ पर या आपके व्यक्तिगत जीवन की बात हो, कहीं ना कहीं हमें रहना बिल्कुल सार्थक पड़ता है। हमें बिल्कुल सकारात्मक और पॉजिटिव नोट के साथ आगे चलना है। हमें बड़ा धीरे धीरे सही कदम रखने हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। तो कोई दुर्घटना हो जाए और बाद में आपको पछताना पड़े,

0: बेहतर है कि हर कदम फूंक फूंक कर रखें और ज़िंदगी को बड़ी खुशहाली के साथ, बड़े संयम के साथ, बड़े धीरज के साथ जीने की कोशिश करें। देखिए बहुत सारे सवालों के जवाब आपको कैसे मिलते चले जाएंगे। सदमा फिल्म का एक गाना था सुरेश वाडेकर साहब की आवाज़ में, और यहीं से आगाज़ किया हमने उस प्रोग्राम का जिसे आप और हम कहते हैं जीरो आवर शो, क्योंकि रात्रि के 12:12 हुए हैं, अगला दिन शुरू हो चुका है और अगले दिन का ये शो होता है सबसे पहला शो कहाँ, आकाशवाणी रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर। इसके अलावा आप हमें ढूंढ सकते हैं, हमें तलाश सकते हैं और हमारे हर शो का और इस शो का आनंद ले सकते हैं न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। देश और दुनिया से जुड़ने के लिए, देश और दुनिया के और करीब रहने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि इसी ऐप से आप दुनिया में कहीं भी हों आप हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। फिलहाल मैं हूं रजत, जीरो आवर शो लेके आज का, और इस प्रोग्राम को भली भांति हमने शुरू कर दिया, एक खूबसूरत आगाज़ देने की कोशिश की, अब इसे एक अच्छे खासे अंजाम तक एक बढ़िया रफ्तार के साथ चलायमान रखने की कोशिश करते हुए आपको रहना हमारे साथ। और अगर आप सुन रहे हैं आप रेडियो सेट तो ऑन कर लीजिए, ट्यून कर लीजिए, आ जाइए हमारे साथ। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो 9868107070 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, इससे आप हमें छू सकते हैं, हमें महसूस कर सकते हैं और हम भी आपको महसूस कर सकते हैं, आपकी भावनाएं जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आखिर हमारे दोस्तों की मोहब्बत ने आज कौन से परवान चढ़े, कितनी और ऊंची होती गई आपकी और हमारे ताल्लुकातों की ये फहरिस्त। ये हमें देखने टटोलने की ज़रूरत पड़ती नहीं, आपके मैसेजेस, आपकी शिद्दत, आपका प्रेम हमें सब कुछ समझा देता है। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जीरो आवर शो में, मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2000

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: वॉच फॉर फ्री।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि वे तेलंगाना अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के सूरत में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सूरत में बरदौली कस्बे के पास महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की 2 बसों की टक्कर के कारण हुआ। इस दुर्घटना में 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में हुए सड़क हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने 181 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने वाली इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

90 का दशक बड़ा रूमानी भरा, बहुत ही खूबसूरत, एक अलग किस्म की शिद्दत लिए, यौवन लिए हमने देखा है। फिल्मों की अगर बात करें, और यही बात अगर हम अपनी निजी जिंदगी पर भी लागू करें, मैं तो उस

0: तो देखिए कॉलेज में था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, साउथ दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ा हूँ, और बहुत याद आते हैं वो दिन। लेकिन उन्हें याद दिलाने का एक कारण और होता है, क्योंकि उन दिनों का जो फिल्म म्यूज़िक था ना, वो अपने आप में एक लैंडमार्क था, एक अचीवमेंट था अपने आप में। 90 का दशक बड़ा सुनहरा माना जाता है अब, क्योंकि सुहानी रात शुरू हो चुका है, 1:13 है। इस घंटे में हम बात ही 90 के दशक की करते हैं ज़्यादातर। तो वो स्कूल कॉलेज के दिन, उसके बाद हिंदी फिल्मों का ऐसा दौर जिसे एक अलग ही दर्जा मिला हुआ है पुराने 50, 60, 70, 80 वाले दशक के अलावा। वो तो एक सुनहरा दौर है ही, लेकिन 90 का एक अलग दर्जा है, इसके एक अलग बात है, क्योंकि हमने सब अपनी युवावस्था हम सब ने वहाँ देखी है, ज़्यादातर लोगों ने। मेरे जैसे बहुत होंगे जो हमारे लिसनर्स होंगे, और काफ़ी लोग हैं, हमारे एक श्रोता मित्र हैं राजकुमार साहब, वो तो उन दिनों, आजकल वो तिरुचिरापल्ली में हैं अपने गृहनगर में, लेकिन उस वक्त वो दिल्ली में ही होते थे। कई बार उन्होंने अपने कॉलेज से जुड़े हुए, एफएम रेनबो से जुड़े हुए अपने तजुर्बे हमारे साथ साझा किए हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कॉलेज के दौरान खूब बढ़िया फिल्में आती थी, उस ज़माने की म्यूजिकल हिट फिल्में आती थी। तो वो हमारी कॉलेज लाइफ और एफएम के दिन और उन गानों के दिन सब आपस में मिक्सचर हो जाता था, मिश्रित हो जाते थे, और इनका जो सम्मिलन था वो आज भी याद किया जाता है हमारे ज़रिए, आपके ज़रिए। हम कंपेयर करने लगते हैं उन दिनों के साथ, आज के म्यूज़िक को उन दिनों के म्यूज़िक के साथ, तो फिर हम यही पाते हैं कि हमारा दौर कहीं ज़्यादा बेहतर था। और उसी दौर को याद करते हुए, उसी दौर को एक ट्रिब्यूट करते हुए, हमारा ये जो शो है ना, सुहानी रात, ये आपके लिए कुछ ऐसे ही नगमे आपको पेश नज़र करता है, जिन्हें सुनकर आप आंखें नम भी कर लेते होंगे और यादों में कहीं खो जाते होंगे। तो चलते हैं उस कारवां पर, चलते हैं उस खूबसूरत सफ़र पर जिसे हम कह रहे हैं सुहानी रात। और सुहानी रात के इस सुहाने सफ़र में मैं हूं आपका दोस्त रजत, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं, आप कहीं भी हों, दुनिया के हर हिस्से, हर कोने से आप सुन सकते हैं हमारे कार्यक्रम। और अभी की बात करें तो सुहानी रात, आप सभी का स्वागत मेरे यानी रजत के साथ।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: कोयल सी तेरी बोली,
6: हाय
5: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो, अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियाज काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध

है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान को 25-23, 21-16 से हरा कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें इंडोनेशिया के अल्बी फरहान ने सीधे गेमों में 21-19, 21-16 से हराया। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रॉयलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए और प्रोग्राम में जुड़े थे हमारे साथ पिछले शोज़ में भी, और अभी भी मैसेजेस आने आप लोगों के शुरू हो चुके हैं। समय हुआ है 2:13, लगभग 1/4 सफ़र जो हम तय कर चुके हैं इस रात का सुबह तक पहुंचने के लिए वो पूरा हम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी सफ़र बाकी है। बहुत से गाने, बहुत सी फरमाइशें, बहुत से दिलों के

0: अरमान अभी इस दस्तरखान पर आने बाकी हैं, जिनका हम नाम रखते हैं अलग अलग शोज़ में। फ़िलहाल इस शो का अगर हम जिक्र करें तो इसका नाम है भुलाए ना बने। ऐसे गीत जो इतिहास बन चुके हैं, लेकिन इतिहास में दर्ज भी हो चुके हैं, अपना एक ख़ास मकाम बना चुके हैं, अपनी जगह बना चुके हैं आपके जहन में भी, हमारे जहन में और दिल में भी। और यही वो सफ़र होते हैं एक्चुअली, जहां आपका और हमारा स्वाद मिलता है और हम एक साथ लय में लय मिलाकर चलते हैं, कदम ताल मिलाकर चलते हैं। और इन रात के शोज़ का जो तासुरात है वो दिन में भी देखने को मिलता है, जब हमारे जो साथी हैं वो हमारे साथ बेतरतीब जुड़ते हैं। आप सभी का स्वागत इस शो में भी और हमारे तमाम शोज़ में भी, जो आप आकाशवाणी रेनबो 102.6 की फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं, साथ ही साथ आप जुड़ते हैं हमारे साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। मैं बता दूं, इज़राइल से धर्मेंद्र भाई जुड़े थे, एक और हमारे श्रोता जुड़े थे, एक गीत की फरमाइश की थी उन्होंने, जो एक्चुअली 1983 में आई फिल्म से था। तो अभी हम उस फरमाइश पर नहीं गए हैं और कोशिश करेंगे इस फरमाइश को आज सुबह से पहले पहले हम उन तक पहुंचा दें, वादा भी हमने उनसे किया है। एक राजकुमार साहब का मैंने जिक्र किया था, वो तो लगभग लगभग हर शो में जुड़ते हैं। उन्होंने बताया था कि उनके भाई हैं, उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, कुछ परेशानियां हो गई हैं। तो राजकुमार भाई, हमारी तहे दिल दुआएं हैं आपके साथ, आपके भाई साहब के साथ और पूरे परिवार के साथ भी, कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर करें और ओवरकम करें और जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर आपके साथ बैठकर हमारे शोज़ उन्हें किसी भी वक्त सुन सकते हैं। आप ये शो तो यहीं इसी दौरान आप सुन सकते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे तो आप ज़रूर सुनवाइएगा हमारा शो उन्हें, उम्मीद करते हैं कि वो ज़रूर सुनेंगे। इसके अलावा अफशा खानम जी का मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे गीत हैं रजत जी और हमारे शोज़ में अक्सर जुड़ती हैं ये आवाज़ें, जुड़ते हैं इनके मैसेजेस जिनके मैंने नाम लिए, और यही प्यार, यही स्नेह, यही मोहब्बत आपका जुड़ता रहे हमारे साथ, मिलता रहे हमें बेतहाशा और स्वागत हम करते रहे और करते रहेंगे। आप जुड़े हैं फिलहाल कार्यक्रम भुलाए ना बने से मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप सभी का तहे दिल स्वागत एक बार फिर से।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
10: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में से पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और प्राथमिकता के आधार पर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगस्त्यमलाई के संरक्षित क्षेत्रों के अतिक्रमण मद्रास उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद कई दशकों से जारी हैं और लगातार बढ़ता गया है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत में 15 दिन बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट नामक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग के लिए उपक्रम, पूंजी कोष और अम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इनक्यूबेशन मिशन के तहत प्राप्त सहायता में से सफल उद्यमियों और नवोन्वेषकों की प्रेरणादायी कहानियां हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिक्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत

इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए थे, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंदों में 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान को 25-23 21-16 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 3:09 और कुछ सेकंड्स और वक्त है उस प्रोग्राम का जिसे हम कहते हैं मिडनाइट मेलोडीज, मध्य रात्रि में सुने जाने वाले। मद्दम मद्दम तो नहीं कहूँगा, ऑर्केस्ट्रा के साथ होंगे, लेकिन खूबसूरत गाने होंगे। इस गाने को जो भी आपने सुना मैंने प्यार किया फिल्म से, इससे आपको आने वाले इस कार्यक्रम के मुस्तकबिल की थोड़ी सी बानगी मिल गई होगी, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की खूबसूरती हम नज़ाकत के साथ, शफाक के साथ आपके लिए लेकर आए हैं और पिरो कर आए हैं। वो सुंदर सुंदर गीत जिनमें 80 भी है, 90 भी है, कुछ 2000 के आसपास के गाने भी होंगे, कुछ मौका लगा तो उससे भी पहले का। लेकिन आपके इस एक घंटे को हम बहुत ही मदमस्त बना देने वाले हैं, ये वादा मैं ज़रूर करूँगा आपसे, और उम्मीद करूँगा कि आप इस शो के ज़रिए हमें याद रखें, आकाशवाणी रेनबो को याद रखें और इस ख़ास घंटे को याद रखें जिसके अभी 51 मिनट अभी जाने बाकी हैं, क्योंकि अभी तो ये शुरू ही हुआ है। 3:10 और फिर से कुछ सेकंड्स अब की बता देता हूँ कि अब हो रहे हैं 3:10 और 40 सेकंड, और ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए हम चल रहे हैं प्रोग्राम की तरफ वापस, जहाँ से हम आए थे। और आपको जो वादा किया मैंने अभी अभी, इस पूरे घंटे में आपको सुनवाऊँगा वो गीत कि आप अगर नहीं सोए हैं तो सो भी नहीं पाएंगे, आपको जागने का पूरा लुत्फ उठाने का पूरा पूरा मौका देंगे इस पूरे घंटे में। मैं हूँ रजत, प्रोग्राम है मिडनाइट मेलोडीज, मेरे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, 102.6 पर, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। नहीं डाउनलोड किए तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि फिर गाड़ी छूट जाएगी। खैर, हम गाड़ी नहीं छूटने देंगे, आपको पूरा वक्त देंगे और आप सुनते हैं और सुनते रहिए, जुड़िए अगर हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो, वरना गानों का लुत्फ उठाइए मेरे यानी रजत के साथ मिडनाइट मेलोडीज में।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर

0: 12 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: मगर वो सांस नहीं लेता।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है। आकाश

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को शामिल नहीं किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट नामक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्गों के लिए उपक्रम पूंजी कोष और आम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इंक्यूबेशन मिशन के तहत प्राप्त सहायता से सफल उद्यमियों और नवोन्वेषकों की प्रेरणादायी कहानियां हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रॉड्रिक्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि डेलसी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं के नाम रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल हमारी ही बात कह दी इस खूबसूरत गाने ने जिसे रफ़ी साहब ने गाया था फिल्म हंसते ज़ख्म से। ये पहला गीत हमने चुना आज अपने प्रोग्राम में और प्रोग्राम का नाम है सारे गामा। एक खूबसूरत और एक अजीम शुरुआत के बाद अब कदम रुकेंगे नहीं, और क्योंकि जैसे जैसे कदम चलते जाएंगे वैसे वैसे हम पहुंचते जाएंगे कैलेंडर में कुछ घंटे पहले दाखिल हुए इस दिन के सूरज के आगोश में आने में। तो दिनचर्या इससे पहले कि शुरू हो क्यों ना खूबसूरत गानों का, खूबसूरत संदेशों का आनंद लिया जाए। प्रोग्राम सारे गामा में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हम उपलब्ध हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इस वक्त, आपका

हमसफ़र रजत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए इस खूबसूरत बेला में जहाँ घड़ी ने बजा दी है सुबह के 4:15 और बड़ी तेज़ी से सुइयाँ अब आगे बढ़ रही हैं और बस सूर्य देवता के निकलने का इंतज़ार भारी है, लेकिन तब तक हम भी गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे और उसके बाद तरोताजगी के साथ अगले दिन की तरफ बढ़ेंगे, दिन का शुभारंभ करेंगे, दिन का स्वागत करेंगे। इसी वादे के साथ सारे गामा प्रस्तुत है आप सभी के लिए, पेश नज़र हैं खूबसूरत गाने जो खास तौर से लाया हूं मैं आप सभी के लिए।

0: सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: सात दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
1: अच्छा दादा।
0: हाँ तो बच्चों,

अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं।

मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी, उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

0: एक आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को लूटते हो, लाओ लाओ मेरे पैसे वापस करो। दुकानदार ने कहा,
1: हुजूर गुस्ताखी माफ, पैसे लेना मेरा काम है, पैसे देना मेरा काम नहीं, मैं तो नौकर हूं।
0: उस आदमी ने पूछा, कहां है दुकान का मालिक? नौकर ने कहा,
1: हुजूर वो

0: कमल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के

0: भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियाँ प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष के किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद मामलों को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। ये व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश आज 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने श्री खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। उद्घाटन सत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार में आज से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर चुका है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भक्ति संगीत पर आधारित हमारी दैनिक और नियमित प्रस्तुति आराधना में आप सभी का स्वागत है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपने किया वो इस वक्त ट्यून, और इसके अलावा आप हमें सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, भक्ति पूर्ण स्वागत भक्ति संगीत पर आधारित हमारे इस कार्यक्रम में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, 102.6 पर। समय हुआ है 5:12। आप सभी का स्वागत इस कार्यक्रम में।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाशवाणी, आकाशवाणी।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।